FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 जुलाई सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है, थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य

0: प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जीआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रुपए का अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमी कंडक्टर मिशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेंगी और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाएंगे। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नायडू ने अगले वर्ष 1 जनवरी से इस योजना के अनिवार्य चरण से पहले सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन अकाउंटिंग और आपूर्ति श्रृंखला विकास के लिए देश की कार्य योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53,71,00,000 रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक से 3.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

संसार में अनेक प्रकार की सेवा हो सकती है, परंतु सबसे बड़ी सेवा मनुष्य को बुरे कर्मों से बचाकर उसे अच्छे मार्ग पर अग्रसर करना है। किसी मनुष्य को रोटी या वस्त्र देना इतना कठिन नहीं है जितना कि उसे पाप के दंड से बचाने के लिए आत्मनिष्ठ करना। जल पिलाकर किसी की तृष्णा को तृप्त करना एक अच्छी सेवा है, परंतु आत्मा की प्रभु प्राप्ति की तृष्णा तृप्त करना एक सर्वोच्च सेवा है। किसी मनुष्य को कुछ धन देकर उसके हालात को सुधारा जा सकता है, परंतु उसे अविनाशी धन देने और योग के आनंद का सौभाग्य प्राप्त कराने की सेवा कोई बिरला ही कर सकता है। इसलिए हर मानव को प्रभु भक्ति में लीन होकर परमार्थ के कार्य करने चाहिए। चिंतन के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

यदि हम कर्म करते हैं तो अपने कर्म के प्रति भक्ति का भाव होना परम आवश्यक है, तभी वो कर्म सार्थक हो सकता है।

प्रभु को पाने के लिए प्रभु के गीत गाइए, प्रभु के नाम से सेवा कीजिए और प्रभु के सेवकों के सेवक बन जाइए।

ये थी वंदना कार्यक्रम की अंतिम भक्ति रचना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

गंगा तट पर श्री राम तथा सीता को रात्रि विश्राम के लिए धरती पर सोते देख निषाद राज को बहुत दुख हुआ। उनके आहत मन को सांत्वना देने के उद्देश्य से रात भर लक्ष्मण ज्ञान वैराग्य की मीमांसा करते हुए भक्ति का उपदेश देते रहे। इस प्रकार श्री राम के गुणों की प्रशंसा करते हुए सवेरा हुआ। स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री राम ने बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। ये देख सुमंत्र की आंखों में आंसू उमड़ आए। महाराज दशरथ ने

उन्हें ये कहकर श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ भेजा था कि वन दिखाकर गंगा स्नान करा वो उन्हें साथ अयोध्या लौटा लाए। श्री राम को महाराज का यह संदेश सुनाकर सुमंत्र बालकों की भांति रो पड़े। राम ने अपने चरणों में गिरे सुमंत्र को उठाकर उन्हें धीरज बनाते हुए कहा, हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों का अध्ययन मनन किया है। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म पालन का अवसर सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश होगा। प्रतिष्ठावान व्यक्ति के लिए अपयश तो करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाला होता है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7:10 पर सुबह सुहानी कार्यक्रम में आज विशेष के अलावा मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, आज की खबर और मौसम पर जानकारी साझा की जाएगी। 7:40 पर आप सुनेंगे हिमाचली गीतों और लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। गाने सुहाने ये कार्यक्रम सुनिएगा 8:30 पर। सुबह 9:00 आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि। आज का विषय है दोस्ती की अहमियत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां आप सुनेंगे 10:00। 10:30 पर कार्यक्रम पहाड़ों के सुर प्रसारित।

0: किया जाएगा। महक पंजाब दी पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम होगा 11:05 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा 11:30 पर। दोपहर 12:00 सुनिएगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए। दोपहर 12:30 पर महिलाओं के कार्यक्रम सुनो सखी में आज सुनिएगा स्थानीय बोली में मिंजरा। दिन में 3:05 पर सामयिक चर्चा आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले की जाएगी। दोपहर 1:10 से लेकर शाम 5:00 तक हमारे केंद्र से रिले किए जाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम। भजन आपको सुनवाएंगे शाम 5:10 पर। शाम 5:25 पर सुनिएगा कार्यक्रम युवा मंच। आज सुनिए रोजगार समाचार और विज्ञान जगत से जुड़ी बातें। सुरमई सांझ ये कार्यक्रम होगा शाम 6:06 पर। शाम 6:30 पर मौजा गराएं दिया कार्यक्रम में सुनिएगा भारतीय मूल का पशुपालन विषय पर जानकारी। खेती बाड़ी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 7:10 पर। रात 8:00 संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम सबरस। देशगान आपको सुनवाएंगे रात 8:30 पर। रात 9:15 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिए अभिनेता रणवीर सिंह द्वारा अभिनीत फिल्मों से चुनिंदा गीत। रंगे गजल ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर। रात 10:00 मॉनसून सत्र 2026 के दौरान राज्यसभा और लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रातः 9:20 पर सुबह 11:00 दोपहर 3:00 शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और सभा के अंत में 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। ये थी आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवासरे इत्युक्ते अगस्त मासस्य द्वितीय दिनांके मादक मुक्त युव विकसित भारत संकल्पाभियानस्य शुभारंभो विधास्यति। वस्तुतस्तु एतत् मादक पदार्थान् विरुध्य शत सप्ताहात्मकः राष्ट्रव्यापी जनसहभागितान्दोलनं वर्तते। एतस्य अभियानस्य नेतृत्वं माई भारत मञ्चः करिष्यति, यश्च यूनां नेतृत्वक्षमतायाः अथ च सामाजिक सहभागितायाः संवर्धनाय कार्यं करोति। अस्य पदक्षेपस्य उद्देश्यं जागरूकतायाः, सामाजिक सहभागितायाः, सतत जनसहयोगस्य च माध्यमेन यूनां संघटनं कृत्वा मादक मुक्त भारतस्य निर्माणम् इत्यस्ति। लोकसभायां लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकः 26th 2000 पारितः।

0: अस्योद्देश्यं तावत् परीक्षा प्रकरणेषु वञ्चनायाः निरोधाय कठोरदण्डविधानं सहैव द्रुतगति न्यायालयानां स्थापनम् इत्यस्ति। अनेन लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमे 24-अधिक-2000 संशोधनं विधीयते। अस्मिन् विधेयके दशवर्षात्मकः कारावासः, 10 कोटि रूप्यकाणां दण्डः, सहैव सिद्धापराधिनां सम्पत्तेः अधिग्रहणम् इत्यादीनि प्रावधानानि सन्ति। विधेयकानुसारं प्रत्येकं राज्यम् अथ च केन्द्रशासितप्रदेशः दैनन्दिनवादश्रवणाय विशेषद्रुतगतिन्यायालयानां स्थापनं करिष्यति। चर्चायाः उत्तरं प्रददन् कार्मिक राज्यमंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंहः न्यगादीत् यत् नियमस्य सुदृढीकरणाय सहैव पत्रगोप्यता भंग प्रकरणेषु शीघ्र न्यायार्थम् एतत् संशोधनम् आनीतम्।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: राज्यसभायां 26-अधिक-2000 राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयकं पारितम्। एतत् विधेयकं राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियमे 171 संशोधनं करोति। अस्य विधेयकस्योद्देश्यं वन्दे मातरम् इत्यस्मै राष्ट्रगीताय अपि राष्ट्रगानेन समं वैधानिक सुरक्षा प्रदानम् इत्यस्ति। एतादृशेषु अपराधेषु त्रिवर्षात्मकः कारावासः, द्रव्यदण्डः उत वा उभयमपि भवितुमर्हतः। उत्तरप्रदानकाले गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः प्रावोचत् यत् एतत् संशोधनं भारतस्य आत्मने राष्ट्रियचेतनायै, सांस्कृतिकन्यासाय सहैव स्वतन्त्रतासङ्ग्रामस्य आदर्शेभ्यश्च सामूहिकप्रतिबद्धतां दर्शयति।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: ओडिशा राज्ये अतिवृष्ट्या उच्छ्वसित नदीभिश्च विकट जलौघस्थितिः दुरापद्यते। अस्मात् धेतोः 4 जनाः मृत्युमुपगताः, सहैव 4,00,000+ जनाः प्रभाविताः अभवन्। श्रावणमासस्य वार्षिकी कावड़यात्रा अद्यारभ्य प्रवर्तते। अस्यां यात्रायां भक्ताः गंगाजलमानेतुम् उत्तराखण्डस्य हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री इत्यादिषु तीर्थस्थलेषु गच्छन्ति। अस्याः विशालयात्रायाः सुव्यवस्थायै उत्तराखण्ड उत्तरप्रदेश सर्वकाराभ्यां व्यापकप्रबन्धाः प्रकल्पिताः इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और अपराधियों की संपत्ति जब्त किए जाने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा

0: ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमों को और सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जीआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने कहा कि देश को उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मेड इन इंडिया उत्पाद गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करें। श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रुपये का अनुसंधान विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमीकंडक्टर मिशन शामिल हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। ये योजना अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद करता है। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री नायडू ने बताया कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी का पवित्र जल लेने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। The Lok Sabha has passed the Anti-Paper Leak Bill, proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases.
2: The earlier bill and the amendment are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone.

सुबह सुहानी। आप हमारा ये कार्यक्रम 103.4 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। आज की सुहानी सुबह के साथ आज के दिन को खास बना

समय सबसे बड़ा गुरु है, जो सिखाता हम सबको है पर किसी के लिए रुकता नहीं है। तो कल के भरोसे मत बैठिए, जो करना है उसकी शुरुआत आज और अभी से ही कीजिए।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। आज 30 जुलाई है। 30 जुलाई के इतिहास की बात करें तो 2012 का 30 जुलाई का दिन सबको याद होगा, जब अचानक रात 2:30 बजे बिजली चली गई थी। बिजली जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर एक साथ पूरे उत्तर भारत के 7 राज्यों की बिजली चली जाए तो ये ज़रूर बड़ी बात है। दरअसल 30 जुलाई 2012 को उत्तरी ग्रिड में खराबी के कारण दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में एक साथ बिजली गुल होने से 36 करोड़ से भी अधिक लोग प्रभावित हुए थे। इस कारण कई ट्रेनों को बीच रास्ते में रोकना पड़ा था। मेट्रो न चलने से दिल्ली की रफ्तार जैसे रुक सी गई थी। बिजली पर निर्भरता का असर पहली बार इतने बड़े पैमाने पर महसूस किया गया था।

इतिहास के पन्नों को और पलटते हैं और 1886 की बात करें तो 1886 में भारत की पहली महिला विधायक, अग्रणी चिकित्सक, शल्य चिकित्सक और महिला अधिकार कार्यकर्ता पद्म भूषण प्राप्तकर्ता डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1909 में राइट बंधुओं ने सेना के लिए पहला विमान आज ही के दिन बनाया था। 1957 में भारतीय निर्यात व्यापार को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई थी। 1935 में महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। जानकारियां और भी साझा करेंगे इस गीत के बाद।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 62,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, 1 अगस्त से गाड़ियों के दाम 30,000 तक बढ़ रहे हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
0: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ।

0: पाइए 1,05,000 रूपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी कीजिए, 1 अगस्त से गाड़ियों के दाम 30,000 तक बढ़ रहे हैं। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: श्रोताओं, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर साल 30 जुलाई को मानव तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसे साल 2013 से हर साल मनाया जा रहा है। जबरन बाल श्रम, यौन शोषण, अवैध अंग व्यापार जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र का ब्लू हार्ट कैंपेन इस लड़ाई का वैश्विक प्रतीक है। और भारत की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव व्यापार और जबरन श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। साथ ही आपात स्थिति में सहायता के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1098 जो कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है और 112 ये भी उपलब्ध है। तो किसी आपात संकट में या आपात स्थिति में अगर कोई फंस जाता है तो इस नंबर का उपयोग कर सकते हैं। अगली जानकारी इस गीत के बाद।

श्रोताओं, दोस्ती प्रेम का एक ऐसा बंधन है जिसे हम स्वयं चुनते हैं और जीवन पर्यंत निभाते भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 में घोषित किया था और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य देशों, संस्कृतियों और लोगों के बीच शांति और भाईचारा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे विश्व स्तर पर लोगों को जोड़ने के लिए अपनाया है और भारत की बात करें तो भारत और कई देश मित्रता दिवस अगस्त महीने के पहले रविवार को मनाते हैं। सच्चे दोस्त किस्मत से मिलते हैं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। अब आज की खबर पर एक नजर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शिव मंदिर, बैजनाथ और महाकाल मंदिर में 30 जुलाई से डिजिटल पूजा सेवा शुरू होगी। श्रद्धालु श्री मंदिर ऐप के माध्यम से दोनों मंदिरों के दर्शन के साथ अपने नाम से पूजा भी करवा सकेंगे। पुजारी नाम उच्चारण के साथ करवाएंगे पूजा और श्रद्धालुओं को प्रसाद भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस सुविधा से देश विदेश के श्रद्धालु पूरे वर्ष घर बैठे पूजा कर सकेंगे। किन्नौर के उपमंडल पूह में पड़ने वाले शिपकी ला के रास्ते से जाने वाले भारतीय व्यापारी चीन में 72 घंटे तक कारोबार कर सकेंगे। 1 अगस्त को 15 व्यापारियों को तिब्बत भेजने की तैयारी। बागवानी एवं राजस्व मंत्री करेंगे कारोबारी सत्र का शुभारंभ। केवल भारतीय व्यापारी ही पार करेंगे सीमा, चीन के कारोबारी नहीं आ सकेंगे भारत। किन्नौर कैलाश यात्रा 30 जुलाई से शुरू हो रही है। इसके लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इस यात्रा के लिए प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं के लिए चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है और स्थानीय मार्गदर्शकों के निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है। कांगड़ा जिले में LPG उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलेंडर बुकिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब उपभोक्ता कंपनी के अधिकृत व्हाट्सएप नंबर 7588888824 पर मैसेज लिखकर या मोबाइल ऐप के जरिए तुरंत गैस सिलेंडर की बुकिंग करवा सकते हैं। मिस्ड कॉल या IVRS सेवा से बुकिंग पर करना होगा 1 दिन का इंतज़ार। पर्यटन नगरी मनाली के धुमसू क्षेत्र में प्रदेश का पहला 235 फीट ऊंचा टावर बंजी जंपिंग तैयार हो गया है। हिमाचल प्रदेश में 30 जुलाई के दिन हिमाचल प्रदेश में 30 जुलाई के दिन कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने भूस्खलन, जल भराव और तेज हवाओं को चेतावनी देते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। 3 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है और कल सुबह सुहानी कार्यक्रम में होंगी और जानकारियां, तो जुड़े रहिए FM धर्मशाला के संग और चलते चलते सुनिए ये गीत है।

0: सुबह सुहानी।
1: सुबह के 7:40 हुए हैं। FM धर्मशाला पर लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम शुभ प्रयाग।

शुभ प्रयाग कार्यक्रम में आप सुना करते हैं हिमाचली गीत और लोकगीत। आगाज हम कर रहे हैं धीरज शर्मा के गाए हुए इस लोक भजन के साथ है।

संयुक्त परिवार की महत्ता को बताता हुआ ये है कार्यक्रम का अगला लोकगीत। गायक कलाकार हैं वर्षा कटोच।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 7:55 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं देशगान।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले की जाएगी।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
6: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
5: गृह मंत्री अमित शाह ने ये विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपने संदेश में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस विधेयक से परीक्षा में होने वाली धांधली से निपटने के लिए सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
7: अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई। शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
5: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवारी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और ये सीट छोड़ने के बाद कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
8: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी 164 मतदान केंद्रों के 422 बूथों पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जहां कुल 3,79,616 मतदाता सभी उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि मुख्य मुकाबला

0: भाजपा के नीरज कुमार, जन स्वराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव में एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है, वहीं जन स्वराज भी इस चुनाव में जीत के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। सविता पारेख का आकाशवाणी समाचार पटना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से पैदा अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अमेरिका में 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए चाकू हमले के मामले में एक व्यक्ति को संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दर्शकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समेत सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फी थिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए हैं जब ईरान ने सप्ताह के शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: वो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे।
3: कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादुगावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर

0: उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर संसद में पारित और प्रस्तुत विधेयकों की चर्चा सुर्खियों में है। अमर उजाला ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, परीक्षा में गड़बड़ी पर 10 साल तक जेल, विधेयक लोकसभा में पास। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, लोकसभा राज्यसभा में एक एक बिल पास, जन्म मृत्यु पंजीकरण में संशोधन बिल पेश। लोकसत्ता ने लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर शीर्षक दिया है, गृहमंत्री पर राहुल की टिप्पणी से लोकसभा में जमकर हंगामा। दैनिक ट्रिब्यून ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के चित्र सहित उनकी उपलब्धियों को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है, जबकि पंजाब केसरी ने शेयर बाजार में आई तेजी को मुख्य पृष्ठ पर दिया है। राजस्थान पत्रिका ने सड़क सुरक्षा को लेकर संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है सिर्फ तेज रफ्तार नहीं हमें सुरक्षित सड़कें भी चाहिए। लेख में कहा गया है कि आधुनिक राष्ट्र की असली परीक्षा ये नहीं कि उसकी सड़कें लोगों को कितनी तेजी से गंतव्य तक पहुंचाती हैं, परीक्षा ये है कि क्या उन सड़कों पर निकलने वाला हर व्यक्ति जीवित अपने घर लौट सकता है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा है इतिहास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। लोकसभा पासेस एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल विथ स्ट्रिक्टर पनिशमेंट ऑफ अप टू 10 इयर्स इन जेल। पोलिंग बिगिंस फॉर बाय इलेक्शंस टू 3 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन बिहार, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। Bihar government decides to reopen closed sugar mills at Rayam in Darbhanga and Sakri in Madhubani. India's merchandise exports rise 15% despite Red Sea crisis and global turmoil. Annual Kanwad Yatra for Shravana month to begin today. And para-athlete Dilip Kavit wins gold while Mohammed Basil bags silver in men's 100-meter race at Commonwealth Games. The Lok Sabha has passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases.
3: The earlier bill and the amendment are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
2: Polling has begun for by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Voting is taking place for Bankipur constituency in Bihar, Manjalpur in Gujarat and Datia in Madhya Pradesh. In Bihar, voting is underway for the by-election to the Bankipur Assembly constituency in Patna. Our correspondent reports that voters have been arriving at polling stations since early morning to cast their votes.
4: Polling is

महबूब का लिखा हुआ गीत अब पेश कर रहे हैं। अदनान सामी का संगीत निर्देशन है, आवाजें हैं आशा भोसले की और फिल्म का नाम है ये रास्ते हैं प्यार के।

0: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 62,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, 1 अगस्त से गाड़ियों के दाम 30,000 तक बढ़ रहे हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।
1: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
0: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ।
1: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
0: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
1: जल्दी कीजिए, 1 अगस्त से गाड़ियों के दाम 30,000 तक बढ़ रहे हैं। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: गाने सुहाने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवा रहे हैं सूर्या फिल्म का गीत। अलका याग्निक ने इसे गाया है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, संतोष आनंद के बोल।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
4: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जाँच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जाँच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जाँच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
5: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जाँच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।

इला अरुण, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में ये था लम्हे फिल्म का गीत। गीत की धुन बनाई थी शिव हरि ने। गाने सुहाने कार्यक्रम का आखिरी गीत पेश कर रहे हैं राजा फिल्म से। इस गीत को हमने चुना है, समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत, गायक कलाकार हैं अलका याग्निक और उदित नारायण।

राजा फिल्म के इसी गीत के साथ आज का गाने सुहाने कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि। सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी एक लंबा सफर है और इस सफर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें ऐसे हम सफर भी मिलते हैं जिन्हें हम खुद चुनते हैं और जिन्हें हम कहते हैं दोस्त। कभी हंसाना, कभी बेवजह रूठना और फिर एक कप चाय पर सब कुछ भूल जाना, दोस्ती का रंग जिंदगी को जीने लायक बनाता है। तो आज अपने दिल के दरवाजे खोल दीजिए दोस्तों के लिए, उनको याद करने के लिए। आज बात होगी यारी की, दोस्ती की। जी हाँ, दोस्ती की अहमियत की। 01892224391 इस पर कॉल कीजिए और जुड़ जाइए लाइव फोन इन प्रोग्राम गीतांजलि के साथ। और मैं हूँ जी आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त संगीता। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की शुभकामनाएं और मुझे अपना मित्र मानने वाले सभी दोस्तों को भी अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: बिल्कुल जी, सच्चे दोस्त जो हैं वो किस्मत से मिलते हैं। और पहले कॉलर फोन लाइन पर आ चुके हैं, बात करते हैं उनसे। हेलो।
1: हेलो संगीता जी, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, बताइए अपने बारे में, अपना परिचय दीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं।
1: मैं बोल रहा हूँ जी, पंजाब के जिला होशियारपुर, तहसील मुकेरिया के गांव महतापुर से महेंद्र सिंह राणा
0: जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: देखिए, दोस्त जो है जिंदगी में कभी कभी कोई खास ही मिलते हैं
0: जी। बिल्कुल,
1: सबसे बहुत बढ़िया रिश्ता जो है ऊपर है वो है दोस्ती का। क्योंकि अच्छा जो दोस्त होता है वो ना किसी लालच के, ना लोभ के, ना किसी कारण दोस्ती करता है। और हमेशा दोस्त वो बनाओ जिसको किसी चीज का कोई लालच ना हो। और दोस्ती को कभी भी परखना या आजमाना नहीं चाहिए। और देखो, भाई से भी ऊपर होता है जो दोस्त है, आड़े काम में आपके, आड़े वक्त में आपके काम आता है
0: जी। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बातें आपने दोस्त की जो खासियत है वो बता दी। पर आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा, सबसे प्यारा दोस्त कौन है?
1: देखिए, दोस्त तो बहुत मिलते हैं
0: जी, सच्चा सच्चा जो दोस्त है उसका ही नाम लीजिए ना आप जी। बिल्कुल,
1: सच्चा तो मेरा भगवान ही दोस्त है।
0: वैसे रेडियो भी आपका सच्चा मित्र है जिसके साथ आप दिन रात बातें करते हैं।
1: रेडियो में तो बाद में आता हूँ ना, लेकिन आपने पहले बोल दिया। देखिए, दोस्त तो कई मिलते रहते थे, लेकिन उनको जब देखा उनका हालत ये, तो लालच के लिए हम किसी वजह से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। और उसको परखना मैं तो चाहता नहीं था, लेकिन जब पता चला कि ये दोस्त काम आने वाले नहीं है, तो मैंने दोस्ती सभी तोड़ दी। तो इसलिए दोस्त को जो होता है ना, उसको अजमाना भी नहीं चाहिए और देख लेना चाहिए कि ये दोस्त है किसी कारण बस हमारे से दोस्ती का निभा रहा है, या हमारे किसी आड़े वक्त में काम भी आने वाला है
0: जी। इसका मतलब तो सच्चा दोस्त आपका भगवान है, और अभी जिंदगी में कोई सच्चा दोस्त नहीं है।
1: देखिए, दोस्त बनाने को क्या है?
0: नहीं नहीं, सिर्फ सच्चे दोस्त की बात कर रहे हैं हम जी।
1: तो मैं कह रहा हूँ सच्चा दोस्त कभी किस्मत वाले को कभी कभी मिलता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सच्चे दोस्त की बहुत

0: सारी खासियतें आपने बता दी, कॉल किया बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप भी इनकी तरह हमें फ़ोन मिला सकते हैं 01892224391, इस नंबर पर कॉल कीजिए और जुड़ जाइए लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम गीतांजलि के साथ। हेलो हेलो हेलो जी, फ़ोन लाइन पर ये श्रोता आए हैं लेकिन बात नहीं हो पा रही है। FM 103.4 MHz के साथ साथ इस कार्यक्रम को आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, नमस्ते जी।
1: गुड मॉर्निंग, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका
1: जी। मेरे बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड हैं
0: जी,
1: उसमें एक आप भी हो।
0: थैंक यू, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। वही हम कह रहे थे कि रेडियो आपका सच्चा मित्र है
1: जी, बिल्कुल जी। और आपने आकाशवाणी से जुड़ के जो हमें दोस्त मिले हैं ना नए नए, उनसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती है, और हमारे जो स्कूल वाले फ्रेंड है ना वो भी मिलते हैं, उनसे भी बातें होती है और उनसे भी मिलनसार होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है
0: जी। बहुत बढ़िया। और सबसे जो पुरानी दोस्ती है वो कौन से दोस्त के साथ है
1: जी? सबसे पुरानी दोस्ती तो है हमारे दो तीन दोस्त हमारे गांव के ही है
0: जी,
1: उनके साथ में ही है, और नए नए दोस्त भी हमारे बन चुके हैं काफी, और काफी दोस्त और भी बनाने हैं हमें
0: जी। बहुत बढ़िया, और ऐसे ही दोस्त आप बनाते रहें, और कॉल किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। थैंक यू सो मच।

0: हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रही हैं?
1: मैं सिमरन बलौर से बोल रही हूँ।
0: सिमरन जी कहाँ से बात कर रही हैं?
1: बलौर से,
0: बड़ोल।
1: हाँ जी
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है सिमरन जी आपका इस कार्यक्रम में। और अभी आप गीत सुन रही थी ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो आपकी कोई ख़ास सहेली है जिसके साथ आप की बहुत ही गहरी दोस्ती है?
1: नहीं है।
0: फिर फ़ोन करके आप क्या बताएंगी हमें कि आपका सच्चा मित्र कौन है?
1: मैम भगवान ही है।
0: भगवान ही है? ऐसा क्यों? आप स्कूल जाती हैं?
1: यस मैम।
0: हाँ, तो स्कूल में कोई ऐसी फ्रेंड नहीं है?
1: नो मैम, अभी नहीं है।
0: अभी नहीं है? अभी जाना शुरू किया है नए स्कूल में?
1: यस मैम।
0: अच्छा, तो चलिए आप अपनी नई सहेली बनाइए जिनसे आप ढेर सारी बातें कर सकें। और देखिए ना, सुख दुख में जो है हमारे साथ, जो है माता पिता के अलावा जो रहता है साथ में, वो दोस्त ही होता है जी। तो हम उम्मीद करेंगे आप अच्छी सी सहेली बनाएंगे और फिर हमें कॉल करके ज़रूर बताएंगे उसके बारे में कि कौन है वो। कॉल किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्रोताओं, जब हम इस दुनिया में कदम रखते हैं तो बहुत सारे रिश्ते अपने आप जुड़ जाते हैं, जैसे कि माता पिता का रिश्ता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, और भी कई रिश्ते। लेकिन एक रिश्ता है जो खून का रिश्ता तो नहीं, मगर मन का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं जी?
2: मैं राकेश गुप्ता गाड़ी से बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: जी, स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद मैडम जी। मैं सबसे पहले दो लाइन दोस्तों के लिए अर्ज कर रहा हूँ।
0: बिल्कुल जी, इरशाद जी।
2: लोग कहते हैं दोस्ती बर्बाद कर देती है, पर मैं कहता हूँ यदि दोस्ती अच्छी है तो दुनिया याद करती है।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो कौन सा है वो दोस्त जिसे आप याद करते रहते हैं?
2: मैडम जी, हमारी तो दोस्ती पिछले 50 वर्षों से दोस्ती है, वो आज भी दोस्ती कायम है मैडम जी।
0: बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात कही आपने जी।
2: जी, मतलब कि हमारे स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, ऑफिस टाइम में लव अगर ना, वही दोस्त है आज तक, वही दोस्त। और अब हमने फोरम ग्रुप भी बनाए ना, तो उसमें वही दोस्ती है हमारी मैडम जी, वही कायम है हमारी दोस्ती।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी।
2: और उसके बाद तो हमारे दोस्ती जब आकाशवाणी परिवार से हुई, धर्मशाला से, 94-95 से, तो हम आकाशवाणी धर्मशाला से जुड़े हुए, तो ये दोस्ती हमारे आकाशवाणी परिवार से हो गई मैडम जी।
0: जी, वो तो बहुत बढ़िया हुआ। और दोस्तों के नाम तो लेना चाहेंगे जिनकी दोस्ती 50 सालों से अभी तक है?
2: मैडम ये हमारे रेश गुप्ता जी, मैं रेश गुप्ता हूँ, रेश गुप्ता जी, मुनेश गुप्ता जी, और इतनी अच्छी एक वर्षों से मैडम जी रिटायर हुए ना, हमारे आईएएस ऑफिसर रिटायर हुए, सेशन जज भी रिटायर हुए, किसी ने रिटायर हुए, हमारी दोस्ती अपने सर्कल में सारे वो है मैडम जी, हम जुड़े हुए सारे
0: जी जी,
2: और हम रोज मिलते हैं उनके साथ मैडम जी।
0: जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि दोस्ती देखिए कितनी पुरानी होती है, स्कूल के समय से आपकी दोस्ती है, कॉलेज में, और उसके बाद जब आपकी जॉब लग गई, नौकरी लगी, तब तक वो सारे दोस्त जो हैं आपके साथ बने हुए हैं जी।
2: दोस्तों की तो शादी में गए गए, उनके बच्चों की शादी भी होने पड़ेगी।
0: चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी जी।
2: तो हम तो ये चाहते हैं कि दोस्ती जो है ना कायम रखो, और सच्ची दोस्ती रखो, और मतलब की निस्वार्थ भाव से दोस्ती रखो मैडम जी, तब दोस्ती उम्र भर चलती है
0: जी। बिल्कुल, निस्वार्थ भाव से अगर दोस्ती हो तो उम्र भर चलती रहती है जी। आपने बहुत अच्छी बातें कही जी।
2: एक से और अर्ज कर देता हूँ मैडम जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी।
2: रात भी अपनों से मिलती है, मुस्कुराहट भी अपनों से मिलती है।
0: बिल्कुल जी, मुस्कुराहट भी अपनों से ही मिलती है जी। गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कॉल किया इस कार्यक्रम में और अपने दोस्तों के बारे में, सच्ची दोस्ती के बारे में आपने हमें बताया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। जी, आप भी इनकी तरह अपने मन की बात, अपने दोस्तों की बात हम संग साझा कर सकते हैं, लेकिन प्रादेशिक समाचारों के बाद। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, 9:20 होने को है, थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के

शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे और उसके बाद हम फिर से हाजिर होंगे लाइव फोन इन गीतांजलि के साथ। तो कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारी सेवा शर्त अधिनियम किया रद्द। प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को मिलेंगे वरिष्ठता व वित्तीय लाभ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, भारत में क्षय रोग के मामलों में आई 21% की कमी, इलाज की कवरेज दर 92% तक पहुंची। राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होंगी नई इलेक्ट्रिक बसें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सोलन जिला के क्यारी घाट से करेंगे शुभारंभ। केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत हमीरपुर जिला की 20,800 महिलाओं का किया जा रहा है कौशल विकास, आर्थिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर। और पवित्र किन्नर कैलाश यात्रा आज से शुरू, पहले दिन आज सुबह 90 यात्रियों का जत्था किया गया रवाना। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश उच्च न्यायालय के कर्मचारी सेवा शर्तें अधिनियम को रद्द किए जाने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश भर्ती व सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें अधिनियम 2024 को रद्द कर दिया था, जिसे सरकार ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि वे हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देना चाहते। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को इस आदेश को लागू करने के लिए 4 महीने का समय दिया है। इस आदेश के मुताबिक सरकार को अपने सभी अनुबंध कर्मचारियों को पहली नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता और सभी वित्तीय लाभ देने होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत में टीबी के मामलों में 21% की कमी आई है, जो वैश्विक स्तर की तुलना में लगभग 2 गुना है। उन्होंने बताया कि देश में टीबी मरीजों के इलाजों की कवरेज दर 92% तक पहुंच गई है। नड्डा ने नई दिल्ली में संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सांसदों के साथ बैठक की और टीबी उन्मूलन अभियान में सांसदों से जन आंदोलन का नेतृत्व करने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री ने सांसदों से समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, टीबी की जल्द पहचान और जिला स्तर पर निगरानी को मजबूत करने का आह्वान किया, ताकि वर्ष 2030 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सके। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। इस विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने जैसे कड़े दंड के प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। इसमें यह भी प्रावधान है कि अपराधों की जाँच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक में संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने व त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई

0: मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में नई इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम सोलन जिला के क्यारी घाट में किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री परिवहन निगम के हिम बस प्लस स्मार्ट ट्रेवल कार्ड का शुभारंभ भी करेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत हमीरपुर जिला में 20,800 महिलाओं को शामिल कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विभिन्न विभागों के सहयोग से इन महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई के अलावा विभिन्न विधाओं में कुशल बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने ये योजना वर्ष 2023 में शुरू की थी और इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
2: जिले की 20,800 महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना का विस्तार किया जा रहा है। योजना के तहत महिलाओं को उनकी रुचि और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे स्वयं का रोजगार शुरू कर अपनी आय बढ़ा सकें। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विभिन्न विभागों के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें सिलाई कढ़ाई, डेयरी, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन, अगरबत्ती निर्माण, मसाला पैकिंग, हस्तशिल्प समेत अन्य गतिविधियों का प्रशिक्षण शामिल होगा। योजना का उद्देश्य महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय कम से कम 1,00,000 रुपए तक पहुंचाना है। प्रशिक्षण के बाद पात्र महिलाओं को 1 से 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण पर उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें वे अपना कारोबार शुरू या विस्तारित कर सके। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने शिमला शहर की सील बंद और प्रतिबंधित सड़कों पर वाहन पास के शुल्क में कटौती कर दी है। इससे शहर में निजी वाहन चलाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार शिमला की सील बंद सड़कों पर निजी वाहनों के लिए सालाना पास शुल्क 15,000 रुपये से घटाकर 8,000 रुपये किया गया है। इसके अलावा प्रतिबंधित सड़कों के लिए वार्षिक शुल्क 5,000 रुपये से घटाकर 3,000 रुपये किया गया है। इसके अलावा वाहन मालिकों को अब 6 महीने की अवधि का पास लेने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। ग्रीन पंचायत योजना के तहत प्रदेश की 100 ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। कांगड़ा जिला की गुब्बर पंचायत में भी सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है जो जल्द ही बिजली उत्पादन शुरू करेगा। इस संयंत्र से हर वर्ष 8,00,000 यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन होगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
3: प्रदेश सरकार की ग्रीन पंचायत योजना ग्रामीण विकास और हरित ऊर्जा का नया मॉडल बनकर उभर रही है। कांगड़ा जिले के लंज क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुब्बर प्रगोड़ में 500 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है जो जल्द बिजली उत्पादन शुरू करेगा। इस परियोजना से हर वर्ष करीब 8,00,000 यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन होगा। बिजली बिक्री से होने वाली आय का बड़ा हिस्सा पंचायत के विकास कार्यों जबकि एक हिस्सा अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। इससे गाँव को स्थायी आय का स्रोत मिलेगा और सामाजिक विकास को भी नई गति मिलेगी। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते कार्बन उत्सर्जन की चुनौतियों के बीच ये परियोजना केवल हरित ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है बल्कि गाँव को आत्मनिर्भर बनाने का एक अभिन्न मॉडल भी प्रस्तुत करती है। विश्व बैंक के सहयोग से संचालित इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रदेश की 100 ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट क्षमता के ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रत्येक परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 8,00,000 यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
1: पवित्र किन्नर कैलाश यात्रा आज से शुरू हो गई है। आज सुबह किन्नौर जिला के तांगलिंग से करीब 90 यात्रियों का जत्था रवाना किया गया। जिला प्रशासन ने आज से 10 अगस्त तक ही यात्रा आयोजित करने का निर्णय लिया है। यात्रा समिति के अध्यक्ष व SDM कल्पा प्रवीण भारद्वाज ने बताया कि प्रतिदिन 375 श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति दी जाएगी। इनमें से 125 ऑफलाइन, 175 ऑनलाइन और 75 श्रद्धालुओं को ऑन अराइवल श्रेणी के माध्यम से भेजा जाएगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
4: आस्था, श्रद्धा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर किन्नर कैलाश यात्रा 2026 आज से विधिवत शुरू हो गई है। यह पवित्र यात्रा 30 जुलाई से 10 अगस्त 2026 तक आयोजित की जाएगी। जिला प्रशासन और यात्रा समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। यात्रा समिति के अध्यक्ष एवं SDM कल्पा प्रवीण कुमार भारद्वाज ने बताया

0: उनकी टीम की सिफारिशों के आधार पर यात्रा का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा किसी भी श्रद्धालु को गंदगी फैलाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने सभी यात्रियों से केवल अधिकृत पंजीकरण के माध्यम से ही यात्रा करने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी के लिए मैं किन्नौर से सुमेश नेगी।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादू गावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल मोरसिंगानकत ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया है। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। हिमाचल दस्तक के शब्द हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के वरिष्ठता लाभों से जुड़े मामलों पर लगाई मुहर। इसी खबर को अमर उजाला ने सुर्खी दी है, हिमाचल के हजारों कर्मियों को सुप्रीम राहत, अनुबंध सेवाकाल का मिलेगा वरिष्ठतम लाभ। दिव्य हिमाचल लिखता है, 21 अगस्त से 3 सितंबर तक विधानसभा का मॉनसून सत्र संभव। मौसम से जुड़ी खबर को पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है, भूस्खलन व बारिश से 100 सड़कें बंद, 4 अगस्त तक खराब रहेगा मौसम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारी सेवा शर्त अधिनियम किया रद्द, प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को मिलेंगे वरिष्ठता व वित्तीय लाभ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, भारत में क्षय रोग के मामलों में आई 21% की कमी, इलाज की कवरेज दर 92% तक पहुंची। राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होंगी नई इलेक्ट्रिक बसें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सोलन जिला के क्यारी घाट से करेंगे शुभारंभ। केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत हमीरपुर जिला की 20,800 महिलाओं का किया जा रहा है कौशल विकास। आर्थिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर और पवित्र किन्नर कैलाश यात्रा आज से शुरू, पहले दिन आज सुबह 90 यात्रियों का जत्था किया गया रवाना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
3: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
2: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
3: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
2: जानकारी लें, अधिकार जाने।
3: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है लाइव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि में। और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं दोस्ती की, दोस्तों की अहमियत की। 01892224391 इस नंबर पर कॉल करके आज आप बात कर सकते हैं। हेलो।
5: हेलो,
4: गुड मॉर्निंग जी।
5: गुड मॉर्निंग मैम
4: जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
5: मैं रैत गांव से बोल रहा हूँ
4: जी।
5: फ्लोरिया
4: जी, रैत गांव से कौन बोल रहे हैं?
5: पंकज बोल रहा हूँ जी।
4: जी पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
5: थैंक यू मैम
4: जी। देखिए आजकल फेसबुक ऑनलाइन जो है उनका दौर है ना। फेसबुक पे हमारे फ्रेंड होते हैं, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, है ना। तो आपके हिसाब से अच्छा दोस्त कौन होता है?
5: मैम दोस्त की बात करें तो एक्चुअली मैंने देखा कि एक एज होती है दोस्ती की ना, जैसे हम स्कूल डेज में होते हैं या फिर हम कॉलेज जाते हैं, फिर हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो उस टाइम की दोस्ती जो होती है ना वो मैं सोचता हूँ कि फॉर एवर होती है। फिर बाद में हम जब कहीं जॉब में चले जाते हैं तो फिर थोड़ा प्रोफेशनल सा रिश्ता हो जाता है। दोस्त तो अभी भी जैसे हम बनाते हैं होते हैं, कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आपकी सिंक्रोनाइजेशन अच्छी होती है, थॉट मैच करते हैं ना, तो फिर तो वो चलता है। लेकिन क्या होता है कि फिर हमारा जब प्रोफेशन होता है तो उसमें बदलते रहते हैं स्टेशन, तो दोस्त भी बदलते हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि दोस्ती उन्हीं से रखें जिनके साथ आपकी वो फ्रिक्वेंसी मैच करे।
4: जी
5: बार होता है ना कि जैसे हम सिग्नल, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं ना, तो कि एक सिग्नल चाहिए, तो अगर मेरे थॉट प्रोसेस को मेरा दूसरा व्यक्ति समझ रहा है तो वो दोस्ती हो जाती है, मीन्स वो करनी नहीं पड़ती।

0: ऑटोमेटिकली हो जाता है ऐसा
1: जी,
0: मेरे को तो यही लगता है। और जहां तक आपके प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक, ये भी अच्छा है, आप जुड़ते हैं फिर कभी मिलते हैं तो हम पूछते हैं कि हमने आपको वहां देखा था, हम आपको मतलब जो आपकी एक्टिविटीज उनको देखते रहते हैं। तो मैं तो दोनों तरफ एक्टिव बोलूंगा, एक्टिव रहो, वैसे भी दोस्त बनाओ और अपने फेसबुक पे भी अपने आप को थोड़ा वो अप टू डेट रखो।
1: जी बिल्कुल, वो तो सही बात है। लेकिन अगर आपको रात के 2 बजे अगर मदद की जरूरत है तो कितने लोग आप सोचते हैं ऐसा कि आपकी कॉल उठा लेंगे और आपकी मदद के लिए आ जाएंगे?
0: हाँ जी हाँ, ऐसा मैडम होता है। मैं मतलब अपनी बात करूँ तो मेरे ज्यादा नहीं, पर एक तो फ्रेंड्स ऐसे हैं कि मैं उनको कॉल करूंगा तो वो आ जरूर जाएंगे और हम मतलब एक दूसरे की हेल्प के लिए रहते हैं तैयार। चलो दुख में नहीं सुख में भी, मतलब अगर मेरा दिल किया है कि मैं कहीं चाय पीना चाहता हूँ और वो पी भी चुका है तो भी बोलेगा हाँ हाँ चलो चलते हैं पीते हैं
1: जी।
0: तो मतलब
1: बिल्कुल
0: होता
1: यही होती सच्ची दोस्ती।
0: हाँ, ओवर ईटिंग भी हम कर लेते हैं फ्रेंड्स के चक्कर में कि हाँ कि हमारा दिल नहीं है पर तूने खाना है तो चल मैं भी तेरे साथ खाता हूँ, है ना। बाकी तो मैडम आजकल लाइफ बड़ी मटेरियलिस्टिक है ना, तो आपको यूज करने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, पर आप यू हैव टू बी अवेयर्ड, आपको अवेयर रहना है कि मतलब कहीं आपको कोई यूज तो नहीं कर रहा, और वो होगा तो फिर जल्दी पता चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए आपको कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है।
1: जी आप किसी बात से कि बिजी लाइफस्टाइल है तो इसके बीच में दोस्ती को कैसे हम बरकरार रख सकते हैं?
0: मैम इसके लिए सिंपल है, आप ना वीकेंड्स पे या महीने में एक बार या कहीं महीने में मतलब नहीं हो पाया तो 2 महीने में एक बार मिलो जरूर। मतलब कई बार क्या था ना कि आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड वाली बात हो जाती है, तो दोस्ती मतलब पास रखो, जैसे अपने आपके पास हो। बहुत दूर की दोस्ती होती है तो चलो फोन कॉल पे हम एक दूसरे से हाल जान लेते हैं
1: जी।
0: लेकिन जो एक होता है ना मैडम कि मिलना, जैसे आप कहीं फिजिकली एक दूसरे से मिल रहे हैं, कहीं बैठ रहे हैं, उसकी सुन रहे हैं, कुछ अपनी सुना रहे हैं, तो मैं उसको ज्यादा प्रेफर देता हूँ। तो मैं अपने फ्रेंड को जो है उसको बुला लेता हूँ कि चल यार कहीं बैठते हैं, चाय पीते हैं, कुछ ऐसा है ना, तो अपनी अपनी फिर बातें होती हैं, इधर उधर की टाइम का पता नहीं चलता है। जी
1: जी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा लगा पंकज जी आपसे बात करके, और आपने कॉल किया बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ही कुछ प्यारा सा गीत भी हम प्ले करने वाले हैं।
0: बिल्कुल जी, ठीक है, मेरे दोस्त के लिए डेडिकेटेड,
1: बिल्कुल
0: दोस्तों के लिए डेडिकेटेड
1: जी, बिल्कुल सभी दोस्तों के लिए, हमारे सभी दोस्तों के लिए डेडिकेटेड है जी,
0: और जो हमारे वैसे हैं वो भी है ना
1: जी।
0: थैंक यू।

0: सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो
1: जी, नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन और कहां से बोल रहे हैं जी?
1: शाहपुर के जुलाड़ गांव से ओंकार सिंह ठाकुर
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैम।

0: मैं अभी सुन रहा था
1: जी।
0: दोस्ती दे,
1: हाँ
0: उसके ऊपर आपका प्रोग्राम चलाओ। मैं जी ये पूरा दिन ही चलता है आपका जो भी FM का प्रोग्राम है मेरे को। अब मैं सर्विस से रिटायर हूँ, ये 4-5 साल हो गए जी। सारे प्रोग्राम मैं 8 बजे तक सुनता हूँ,
1: रात के 8 बजे तक सुनते रहते हैं।
0: रात को 8 बजे तक। मैम जी मैं थोड़ा सा अस्वस्थ हूँ तो बस इसी में दिल लगा के अपना मन फैलाता हूँ जी।
1: वैसे हमारे यहाँ से जो प्रोग्राम है वो रात के 11:10 तक चलते
0: हाँ
1: हैं
0: चलता है जी, रात को
1: जी।
0: बहुत बड़े अच्छा प्रोग्राम चलता है, फिल्मी गाने आते हैं, वो आता है बड़ा अच्छा आता है। तो
1: जी
0: दोस्ती
1: तो
0: के ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश
1: हाँ हाँ बिल्कुल बोलिए
0: डालने जा रहा
1: जी।
0: हूँ जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो दोस्त तो मिलते हैं, बहुत ज्यादा मिलते हैं जी, लेकिन जब दोस्त जो है वो अपना मतलब साधने लग पड़ते हैं और जो मतलब के सेल्फिशनेस दिखाने शुरू कर देते हैं तो आदमी जो अपने आप को पीछे हटा लेता है जी। तो
1: जी।
0: मैं
1: यहाँ
0: अब
1: पर
0: देखो
1: सुनिए, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपका पक्का दोस्त जो है उसके
0: जी, मैं
1: साथ
0: वही
1: आपकी
0: बताने जी,
1: पहली मुलाकात कैसे हुई, कब हुई, उसके बारे
0: मैं
1: में
0: वही
1: बताइए
0: बताने
1: जी।
0: जा रहा था जी।
1: जी
0: दोस्त
1: बिल्कुल
0: तो मेरे थे बहुत ज्यादा थे ऑफिस में। मैं धर्मशाला में ही जी 35-37 साल नौकरी करी है वन विभाग में जी, धर्मशाला में 37 साल ही धर्मशाला में रहा हूँ जी। मैं
1: जी जी बहुत
0: तो
1: बढ़िया
0: अभी
1: जी
0: अभी हाल ही मैं 2023 में रिटायर हुआ हूँ जी, पर मैं
1: जी
0: अस्वस्थ चला हूँ जी अभी थोड़ा। तो ऐसा कि मतलब के जब मैं अस्वस्थ हो गया जी तो उसके बाद तो दोस्त भी आना जाना छोड़ दिया उन्होंने, मेरे को मेरा हाल चाल पूछने छोड़ दिया, मेरे पास आना जाना छोड़ दिया, सब कुछ सब सभी छोड़ गए जी। बच्चे भी अपने अपने सर्विस में निकल गए, सभी अपने अपने कामों में निकल गए। लेकिन मेरी जी मेरा तो यही मानना जी, सच्चा दोस्त जो है ना जी वो आपकी धर्म पत्नी है जी।
1: बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने।
0: यही
1: धर्म
0: जो है
1: पत्नी जो है
0: वो
1: वो सच्ची दोस्त है, आपकी संगी
0: सच्ची
1: है,
0: धर्म
1: साथी है
0: पत्नी
1: जी,
0: ही
1: सुख
0: सच्ची
1: दुख
0: दोस्त
1: में।
0: है वो, लाइफ में मतलब कि आपको मरते दम तक वो सच्ची दोस्ती निभाएगी जी। क्योंकि सभी छोड़ जाते हैं जी, धर्म पत्नी नहीं छोड़ती है, क्योंकि मैं 7 साल तो सभी छोड़ गए हैं, मेरी धर्म पत्नी मेरी रात दिन सेवा में लगी रहती है।
1: चलिए
0: तो
1: बहुत
0: मेरा तो
1: बढ़िया,
0: मानना
1: बहुत
0: ये
1: अच्छा
0: है जी
1: लगा आपसे बात
0: कि
1: करके कि आपकी धर्म पत्नी आपकी पूरी ईमानदारी से सेवा करती है,
0: बिल्कुल
1: और
0: जी बिल्कुल जी,
1: बिल्कुल
0: मैं तो
1: वो आपकी
0: मानता हूँ जी
1: सच्ची
0: धर्म
1: दोस्त
0: पत्नी।
1: है, सच्ची हमसफर है, और ये बात बिल्कुल ही सच है, 16 आने सच बात है ये। और देखिए जिंदगी में सुख दुख तो आते रहते हैं, है ना।
0: हाँ जी हाँ जी
1: हर
0: हाँ जी
1: समय आप कोशिश करिए खुशी ढूंढने की। कॉल
0: हाँ जी
1: किया
0: हाँ जी
1: आपने
0: मैं
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी।
0: हाँ जी।

0: सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से 01892224391 यह है टेलीफोन नंबर और इसे डायल करके आज आप बात कर सकते हैं सच्चे दोस्तों की अहमियत की। हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते जी, अपना परिचय दीजिए।
1: मैडम जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानागढ़ बस स्टैंड मध्य प्रदेश से। मैडम
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: जी मैडम जी बिल्कुल, आपका प्रोग्राम तो मैं नियमित सुनता हूँ। और
0: जी देखिए कॉल इनकी कट चुकी है, लेकिन हम चाहेंगे ये दोबारा हमें फिर से कॉल मिलाएं। 01892224391 ये टेलीफोन नंबर है इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। हेलो।
1: हेलो
0: जी, आपकी आवाज हम तक ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। हेलो।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी, परिचय दीजिए अपना। जी
1: हेलो।
0: हेलो, हाँ जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना परिचय दीजिए।
1: जय करण सराह से बोल रहा हूँ
0: जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: तो मैडम जी ऐसी होना चाहिए जैसे दोस्ती फिल्म में।
0: कौन से फिल्म की दोस्ती आपको बहुत अच्छी लगी?
1: हाँ जी,
0: कौन से फिल्म की दोस्ती आपको बहुत अच्छी लगी? शोले के जय वीरू से लेकर।
1: नाम बता रहा हूँ दोस्ती।
0: जी
1: हाँ जी हाँ जी।
0: अच्छा,
1: तो मतलब दोस्त अच्छा वही होता है जो सुख दुख में साथ आए और अपना दुख सुख जो है वो शेयर करे। कि मतलब दोस्ती एक तरफ से नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल जी,
1: कोई दूसरा दोस्ती निभाता रहे और मैं उससे
0: दावा
1: करता रहूं, उसका फायदा उठाता रहूं, उसको दोस्ती
0: जी। अपने दोस्त के बारे में बताइए जो अब तक आपके साथ है, आपका सच्चा दोस्त है, हम सफर है जी।
1: नहीं है कोई भी बात, मैं स्कूल के टाइम की बताऊंगा
0: जी। स्कूल के समय की कोई अच्छी सी याद, कोई बात ऐसी हो तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
1: हाँ जी, तो
0: जैसे कई बार होता है ना स्कूल में, हम अपने दोस्तों का टिफिन खा लिया करते थे, कभी हमारे कारण उनको डांट पड़ जाती थी, बहुत सारी ऐसी बातें होती है स्कूल टाइम में जो हमें याद रहती है जी।
1: एक दूसरे की शिकायत कर देते थे ना।
0: जी जी हाँ जी,
1: तो उसकी वजह से डांट पड़ती थी, कई बार झगड़ा भी आपस में हमारा भी हो ही जाता।
0: अच्छा जी, फिर मनाता कौन था झगड़ा होने के बाद?
1: तो बच्चों का तो आपको पता ही, अभी आप भी रूठे तो आप भी मान जाए, थोड़ी देर से दोनों देर के लिए ही होता है जी झगड़ा।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ऐसे ही

0: कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए। 01892224391 ये है टेलीफोन नंबर। एक और कॉल लेते हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी, बताइए कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
1: मैडम, मैं बिनोद शर्मा बोल रहा हूँ नदौन के पास से।
0: जी, और नदौन के कैसे हाल चाल है?
1: बादल हो रहे हैं, बरसात है नहीं, हुम्स बड़ी, गर्मी बहुत हो रही है
0: जी। और बताइए अपने दोस्त के बारे में।
1: मैडम जी, आपका जो विषय है ना आज
0: जी,
1: इसको ना सुनते ही मुझे संगम दोस्ती फिल्म की याद बहुत याद आ रही है, जो दोस्ती के ऊपर ही बनी हुई फिल्म थी
0: जी। बिल्कुल, कौन सी फिल्म ज्यादा ही याद आ रही है?
1: दोस्ती और संगम दोनों एक जैसी थी।
0: अच्छा, दोस्ती फिल्म और संगम। शोले के जय वीरू नहीं याद आ रहे?
1: शोले की थीम लगती है कि थीम ही पूरी दोस्ती के ऊपर थी।
0: अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल जी।
1: तो हमारे एक दोस्त है मैडम जी, प्यार सिंह वर्मा जी, बिलासपुर से। हमने इकट्ठी नौकरी ज्वाइन करती है अम्बाला में।
0: हाँ जी।
1: तो आज तक भी हमें दुख सुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, बिना भेदभाव के, और दोस्ती ऐसे निभाते हैं बस जैसे भाई भाई खड़े हों।
0: बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात जी।
1: क्योंकि आज की आप देखते हैं आज के दोस्त तो मतलब की दोस्ती होती है।
0: हाँ, वो तो हम बहुत सारे श्रोताओं से सुन चुके हैं कि दोस्ती मतलब की ज़्यादा होती है आजकल। लेकिन चलिए, फिर भी इस दौर में आपको सच्चा दोस्त मिला है जिसके साथ आप दोस्ती निभा रहे हैं, तो उसके वो सुन के हमें बहुत अच्छा लगा जी। जी बिल्कुल, आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: धन्यवाद आपका जी।

श्रोताओं, आपसे बातें करते करते समय कब बीत गया पता ही नहीं चला, और आज आप सभी के खूबसूरत किस्सों ने साबित कर दिया कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, दोस्ती की गर्माहट कभी कम नहीं होती। याद रखिए, अच्छे दोस्त जिंदगी का वो हिस्सा होते हैं जो हमारे मुस्कुराने की वजह बनते हैं। और आपको बता दूं कि आज के कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें तकनीकी सहयोग दिया सुरेंद्र कपूर ने,

जी हाँ, बहारें ही बहारें हैं, फिजाओं में एक अजब सी कशिश है। फूलों की झुकी हुई हर शाख मानो सजदा कर रही हो। नमस्कार, ट्यून इन है आप इस वक्त 103.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी धर्मशाला पर। सुबह के 10 बज चुके हैं और आगे का ये सफर आप तय करने जा रहे हैं अपनी जानी सी पहचानी सी रेडियो दोस्त नीमा शर्मा के साथ, जो आज लेकर आई है गीतों का कारवां। तो चलिए भाई, सफर को और भी खूबसूरत बनाते हैं और आप सभी को सुनवाते हैं कुछ प्यारे प्यारे से गीत। और इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए धर्मशाला केंद्र के साथ। प्रोग्राम है गीतों का कारवां। इस प्रोग्राम का आगाज हम कर रहे हैं दिलवाली फिल्म से, आवाज़ें अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की।

जी हाँ दोस्तों, हम भी रंग चुके हैं अपने लिसनर्स के प्यार में, तभी तो हम भी बेताब रहते हैं आप सभी को सुनवाने के लिए कुछ बेहतरीन से गीत। प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से गीतों का कारवां। गीतों के कारवां के अगले जो रंगीन पिटारे से हम आपके लिए लेकर आए हैं गेम फिल्म से ये गीत। एंजॉय कीजिए और दिल से जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जी हाँ, आज की इस महकी महकी सी सुबह में आप सुन रहे हैं इस वक्त गीतों का कारवां प्रोग्राम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ।
1: स्मार्ट चले, स्मार्ट दिखे, हर सफर हो बढ़िया रे। मारुति सुजुकी सिलेरियो, खुशियों की सावरिया रे। बेहतरीन 26.68 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज, स्टाइलिश लुक्स और कंफर्टेबल ड्राइव के साथ माइलेज का हीरो, स्टाइल भी कमाल। सिलेरियो के सन हर दिन बेमिसाल। और अब पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 42,100। ऑफर का फायदा उठाइए आज ही, जल्दी कीजिए। 1 अगस्त से गाड़ियों के दाम 30,000 तक बढ़ रहे हैं। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी सिलेरियो, स्मार्ट चॉइस, स्मार्ट ड्राइव। माइलेज फिगर एज पर सर्टिफाइड टेस्ट कंडीशंस। टीएनसी अप्लाई।

जी हाँ, गीतों का कारवां कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से, और अभी आपने सुना शफाकत अमानत अली की आवाज में मौसम फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम में अगला जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म फिल्लौरी से।

आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं गीतों का कारवां कार्यक्रम। और प्रोग्राम में अगला जो सॉन्ग हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म लापता लेडीज से।

जी हाँ श्रोताओ, श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में गाए इस गीत के साथ ही आज का गीतों का कारवां कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हिमाचली लोक गीतों का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं राजेंद्र कुमार शर्मा की आवाज़ में गाए इस लोक गीत के साथ।

हिमाचली लोक गीतों का आनंद इस वक्त आप ले रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम का अगला लोक गीत आइए सुनिए निम्मो देवी की आवाज में।

0: हम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
0: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है?
1: अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी।
0: बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं पहाड़ों की सुर कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला लोकगीत आइए सुनिए चंपा शर्मा की आवाज में।

श्रोता, इसी के साथ पहाड़ों के सुर कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को है समाचार, अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले होंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में टीबी के मामलों में 21% की कमी आई है, जो वैश्विक स्तर की तुलना में लगभग दो गुना है। उन्होंने बताया कि देश में टीबी मरीजों के इलाज की कवरेज पर दर 92% तक पहुंच गई है। नड्डा ने नई दिल्ली में संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सांसदों के साथ बैठक की और टीबी उन्मूलन अभियान में सांसदों से जन आंदोलन का नेतृत्व करने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री ने सांसदों से समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, टीबी की जल्द पहचान और जिला स्तर पर निगरानी को मजबूत करने का आह्वान किया, ताकि वर्ष 2030 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सके। राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में आज नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो रही हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सोलन जिला के क्यारी घाट में इन बसों का शुभारंभ कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री परिवहन निगम के हिम बस प्लस स्मार्ट ट्रेवल कार्ड का शुभारंभ भी करेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। पवित्र किन्नौर कैलाश यात्रा आज से शुरू हो गई है। आज सुबह किन्नौर जिला के तांगलिंग से करीब 90 यात्रियों का जत्था रवाना किया गया। जिला प्रशासन ने आज से 10 अगस्त तक ही यात्रा आयोजित करने का निर्णय लिया है। यात्रा समिति के अध्यक्ष व कल्पा के उपमंडल अधिकारी प्रवीण भारद्वाज ने बताया कि प्रतिदिन 375 श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति दी जाएगी। इनमें से 125 ऑफलाइन, 175 ऑनलाइन और 75 श्रद्धालुओं को ऑन अराइवल श्रेणी के माध्यम से भेजा जाएगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
1: आस्था, श्रद्धा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर किन्नर कैलाश यात्रा 2026 आज से विधिवत शुरू हो गई है। यह पवित्र यात्रा 30 जुलाई से 10 अगस्त 2026 तक आयोजित की जाएगी। जिला प्रशासन और यात्रा समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। यात्रा समिति के अध्यक्ष एवं एसडीएम कल्पा प्रवीण कुमार भारद्वाज ने बताया, रेकी टीम की सिफारिशों के आधार पर यात्रा का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा किसी भी श्रद्धालु को गंदगी फैलाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने सभी यात्रियों से केवल अधिकृत पंजीकरण के माध्यम से ही यात्रा करने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आकाशवाणी के लिए मैं किन्नौर से सुमेश नेगी।
0: इस बीच श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा भी आज से शुरू हो गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी का पवित्र जल लेने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। कांवड़ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को देखते हुए कई जिलों में यातायात मार्गों में परिवर्तन किया गया है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर लखनऊ में एक महीने के लिए कई मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने गोरखपुर से दो विशेष श्रावण मेला ट्रेनों की घोषणा की है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बिलासपुर जिला के घुमारवीं में भवानी ई लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस लाइब्रेरी में युवाओं को आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। राजेश धर्माणी ने कहा कि इस ई लाइब्रेरी में एक समय में करीब 100 विद्यार्थी बैठ सकते हैं और उनकी सुविधा के लिए यहां 24 घंटे हाई स्पीड वाईफाई उपलब्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि ई लाइब्रेरी की सदस्यता के लिए हर महीने 1000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है और इस लाइब्रेरी से प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा और अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा। कांगड़ा जिला के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि बोह घाटी के गड़गू और स्पैड़ा क्षेत्रों में सड़क संपर्क टूटने के बाद राहत कार्यों में सेना की मदद

0: दी गई, लेकिन अब इन क्षेत्रों में मशीनरी पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि लगभग 40 प्रभावित परिवार राहत शिविरों में रह रहे हैं। उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रभावित परिवारों के स्थायी पुनर्वास के प्रयास किए जा रहे हैं।
1: आर्मी को हमने डिप्लॉय किया था क्योंकि मशीनरी वहां पर नहीं पहुंच पा रही थी, तो अब हमारी मशीनरी वहां पर पहुंच गई है, तो जितना मैन्युअली वर्क आर्मी से हम करवा सकते थे उन्होंने बखूबी उसको निभाया भी है और काफ़ी चीज़ें रिकवर भी उन्होंने की है। उनके राशन कार्ड बनवा दिए हैं, LPG के जो कनेक्शंस के उनके सिलेंडर्स थे हम वो भी उनको तुरंत प्रभाव से उपलब्ध करवा देंगे। उनको किसी भी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े, इस तरीके के निर्देश हमने फील्ड में SDMs को दिए और लोगों को बोला है कि आपको जो भी समस्या हो तुरंत आप फ्लैग करिए, उसको हम तुरंत उसका निदान करने की कोशिश करेंगे।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
2: एक 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम महक पंजाब दी।
3: नमस्कार दोस्तों, महक पंजाब दी विच तुहाडा स्वागत है। आओ पहले गीत नाल इस सफर की शुरुआत करिए।

बीट्स बदलदिया रहनगियां, पर पंजाबी संगीत की रूह कदे नहीं बदलती। यही रूह लैके हाजिर है अगला गीत।

0: 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
4: दोस्तों, कई बार संगीत ओ कह जाता है जो दिल लफ्ज़ा विच नहीं कह पाउंदा। पेशा इको सुरीली दास्तां।

मिट्टी की खुशबू जिवें मीह तो बाद होर महक उठती है, उस तरह पंजाबी संगीत हर बार नवा एहसास दे जांदा है।

पेके दी गलियां दे महक ते मां दी दुआवां एह एहसास हर धी दे दिल दे नेड़े हुंदा है। पेश है अगला गीत।

के उते रख के लोक रब ने हुसन ना दी रखी कोई थोड़ नहीं। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी। 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार हमेशा की तरह, जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: वो लिखते हैं, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान और जीवन में खुशियाँ लाता है वही सबसे सफल इंसान है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
3: और भटीपारा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
2: नमस्कार। खनिज पदार्थों पर केंद्रित ये भी जानिए श्रृंखला बेहद रोचक, दिलचस्प और अद्भुत रही। ऐसी जानकारी जरूर प्रसारित करते रहें।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं लगातार संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। अब एक बार फिर से लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और रोचक प्रेरक प्रसंग लेकर हम प्रस्तुत हैं।
2: आज हम बात करेंगे भारत के उस महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी की, जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनका एक अन्य प्रसिद्ध नारा था, जय हिंद।
3: श्रोताओं आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं।
2: बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी थे। आपको बता दें कि उन दिनों में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा को इंडियन सिविल सर्विसेज या ICS कहते थे। आज इसी सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा या IAS कहते हैं।
3: श्रोताओं उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारतीय सिविल सेवा यानी ICS की परीक्षा दी। उस समय ICS को ब्रिटिश शासन की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन सेवाओं में से एक माना जाता था।
2: उन्होंने परीक्षा में उच्च स्थान यानी चौथा स्थान प्राप्त किया। उनके सामने एक सुरक्षित, सम्मानित और समृद्ध सरकारी जीवन का अवसर था।
3: ये उपलब्धि इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि उस समय ICS परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन और लब्ध प्रतिष्ठ परीक्षाओं में गिनी जाती थी और अधिकांश भारतीयों के लिए इसे पास करना बहुत कठिन हुआ करता था।
2: लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या मैं उस सरकार की सेवा कर सकता हूँ जिसके अधीन मेरा अपना भारत देश गुलाम है।
3: बहुत विचार विमर्श करने के बाद सन 1921 में उन्होंने स्वेच्छा से ICS से इस्तीफा दे दिया और त्यागपत्र पर लिखा कि वे विदेशी शासन की सेवा नहीं बल्कि भारत की सेवा करना चाहते हैं।
2: जब ये समाचार भारत पहुंचा तो अनेक युवाओं को देश के लिए काम करने की नई प्रेरणा मिली। शुरुआत में उनके परिवार के सभी सदस्य इस निर्णय से सहमत नहीं थे,
3: लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवार ने उनके निर्णय का सम्मान किया। जब वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बने तो उनके परिवार को उन पर बड़ा गर्व हुआ।
2: ये प्रसंग उनके जीवन का एक प्रेरक उदाहरण है जो बताता है कि व्यक्तिगत सफलता से अधिक।
4: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
5: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम पहली बूंद। जरा सोचिए मित्रों, क्या होता यदि हम बीमारियों और संक्रमणों का इलाज नहीं खोज पाते। पहले बहुत सी महामारियों से हजारों लोग मरते थे। इतिहास बताता है कि गांव के गांव खत्म हो जाते थे, लेकिन अब इलाज या रोग निरोधक टीके खोज लिए गए हैं।
1: जी हाँ, रोगाणु विज्ञान में एक महान चिकित्सक लुई पाश्चर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने बहुत सी बीमारियों के टीकों की खोज की और दुनिया को महामारियों से बचाया।
0: तो आज का कार्यक्रम लुई पाश्चर के जीवन पर आधारित है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लुई पाश्चर।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था। इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: Voilà une semaine que vous êtes en vacances.

लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अबेडी उन्हें ये मेडल प्रदान करेंगे।

0: मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेंबर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर

0: भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
1: चलो अरे भेड़िया, अरे भेड़िया।
0: लुई पास्टर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
2: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
1: चलो चलो चलो
3: चलो
4: चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो
1: चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो
0: चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो
2: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
0: 21 वर्ष की आयु में लुई पास्टर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया।
2: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पास्टर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
0: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पास्टर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
2: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
0: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पास्टर को बुलाया और कहा,
5: लुई पास्टर
6: सर,
5: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
6: कहिए सर।
5: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
6: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
5: ठीक है।
2: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पास्टर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पास्टर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पास्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
0: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन हैं।
2: पास्टर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
0: इस जानकारी के साथ ही

0: फिशर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
1: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए यह विधि काफी सफल रही।
0: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
1: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
1: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
1: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा आज, ए, ए, हाँ इंजेक्शन लगा दूं?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
1: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताईं।
4: सर, सर ये टेलीग्राम।
3: अच्छा, लाओ दिखाओ। हाँ, अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
3: देखो, टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
3: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
3: हाँ चार्ल्स।
1: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
0: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
5: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ पैरों और जांघ पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
3: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
5: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए वरना मेरा बेटा।
3: आप
5: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
3: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
5: मेरा
3: अच्छा,
5: बेटा।
3: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
1: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
0: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का

0: आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
1: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
0: पास्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
1: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
0: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पास्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
1: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
2: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
1: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रे डेम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माई ग्रैंडफादर वॉज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल ही वॉज अ ह्यूमनिस्ट ऑलवेज वर्किंग टूवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
3: और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुमलता,
4: जगबंधु,
3: चेतना,
4: अर्शद और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों, जय हिंद। रोजाना की तरह लेकर हाजिर हो गए हैं हम आप सभी के मनोरंजन के लिए कुछ फिल्मी नगमे। आज के सैनिकों के लिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं बॉर्डर 2 फिल्म के इस गीत के साथ।

0: सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: सैनिक भाइयों, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनी भाई, अभी आपने सुना भूल भुलैया फिल्म 3 से ये गीत। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं सुनिधि चौहान की आवाज में ये गीत।

0: संयोग कन्नै जीवन मिलदा ते सहयोग कन्नै जीवन चलदा। कुछ हंसी करी बोली दिया, कुछ हंसी करी टाली दिया। जीवन च परेशानियां तो बड़ी हैं, पर कुछ वक्त पर छड़ी दिया। इन्हां खूबसूरत पंक्तियों कन्नै शुरुआत करदे अज दे कार्यक्रम सुनो सखी दी। अज दा कार्यक्रम हुंदा मिंजरा दा, इस असां अपनी सखियां कन्नै गल करदे अपनी पहाड़ी बोलीए च। ता अज दे कार्यक्रम विच मैं तुसां कन्नै तुहाडी अपनी रेडियो सखी माया, सारियां श्रोता सखियां जो साड़ी तरफी ते प्यार भरी राम राम। भैणों अज 30 जुलाई है, ते अज दे दिन जो असां सारे मनादे हैं अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में। असां मनु एक सामाजिक प्राणी हैं, ते असां दे जीने च मित्रता दा, सखी सहेलियां दा जड़ा से बड़ा महत्व है। जी हाँ, असां दी मित्रता रेडियो दे मजा कन्नै है, रेडियो दे माध्यम कन्नै असां अपनी सखियां कन्नै जुड़े हैं। ते यकीन मन्ना, जालू असां इस मंच दे माध्यम कन्नै अपनी सखियां कन्नै गल्लां करदे तां मने जो एक सुकून मिलता, खुशी मिलती। सच्ची सहेली या सच्चा मित्र जड़ा है से असां दे जीने दे सुख दुख दा साथी हुंदा। मित्रता दे रिश्ते कन्नै असां दे जीने च खुशहाली हुंदी। दिखा इसी रिश्ते च असां कुछ नहीं छुपांदे, मतलब कि अपने दिले दी सारी गल्लां जिहड़ी इनसे अपनी सखियां कन्नै जिहड़े जरूर सांझा करदे, जिस असां सच्चे दिल कन्नै प्यार करदे, क्योंकि मित्रता रिश्ता जिहड़ा से दिल कन्नै जुड़िया हुंदा है। इसी रिश्ते दे महत्व जो पहचानने ते दुनिया भरे च शांति भाईचारे ते आपसी सद्भाव जो बधाने दे उद्देश्य कन्नै ही अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस हर साल 30 जुलाई यानी अज दे दिने मनाया जांदा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 च पहली बारी 30 जुलाई जो अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में मनाने की जिहड़ी असे घोषणा की थी। तो अज के दिन जो मनाने के पिछे उद्देश्य यही है सखियो कि अलग अलग देश, संस्कृति, धर्म ते समुदायों के बीच मित्रता जो जिहड़ा असे बधाया जाए। अज के दिन असा जो सिखांदा है कि प्रेम, सहयोग ते आपसी सम्मान कन्ने दुनिया जो ज़्यादा शांतिपूर्ण ते होर भी बेहतर जड़े से असा बनाई सकते हैं। सच्ची दोस्ती ओ हुंदी जड़ी कठिन समय च असा दा साथ दिंदी है ना, सही असा दा मार्गदर्शन करदी। मित्रता सिर्फ कन्ने घूमने फिरने कन्ने नहीं है, बल्कि दिखा एक दूजे दे प्रति विश्वास, ईमानदारी ते सम्मान करना है। अच्छी संगति असा जो अच्छे रस्ते पर लेके चलदी, ते गलत संगति असा जो गलत रस्ते पर लेकर जांदी है। इस खातर मित्रता उसी कन्ने करनी है जड़ा असा दा हमेशा जड़ा से भला चांदा हो। तो असा भी अपनी सखियां दा हमेशा भला ही चांदे, ते असा दा भी यही सोच हुंदी कि असा कुछ इदे विषय पर अपनी सखियां कन्ने गल्ला करन जिन्हां दी वजह कन्ने असा सबना दा फायदा हो। तो गल्ला बड़ी सारियां हैं असा दी सखियां कन्ने करने वास्ते, पर पहले चलदे लोक गीत पासे ते तुहांदे रेडियो सेट्स पर भेजदे ए प्यारा दिया लोक गीत।
1: मन ही मन मोर को खत्म करने की योजना बनाता है और अंततः बंदूक भरकर मोर का शिकार करने निकल पड़ता है। जबकि रानी राजा से मोर का शिकार

0: स्मार्ट चले, स्मार्ट दिखे, हर सफर हो बढ़िया रे। मारुति सुजुकी सिलेरियो, खुशियों की सावरिया रे। बेहतरीन 26.68 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज, स्टाइलिश लुक्स और कंफर्टेबल ड्राइव के साथ माइलेज का हीरो स्टाइल भी कमाल। सिलेरियो के सन हर दिन बेमिसाल। और अब पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 42,100। ऑफर का फायदा उठाइए आज ही, जल्दी कीजिए। 1 अगस्त से गाड़ियों के दाम 30,000 तक बढ़ रहे हैं। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी सिलेरियो, स्मार्ट चॉइस, स्मार्ट ड्राइव। माइलेज फिगर एज पर सर्टिफाइड टेस्ट कंडीशंस, TNC अप्लाई।
1: हेलो,

0: फिर से?
1: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
2: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
2: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
1: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
4: 2 लाख क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
1: अरे
3: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: एक बारी फिर स्वागत है सदैव श्रोता से केंद्र कार्यक्रम मिंजरंच। भैनों अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस के कन्ने कन्ने अज के दिन एक होर भी दिवस जड़ा से मनाया जाता है। जी हाँ, अज के दिन जो विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मनुआ की तस्करी एक गंभीर सामाजिक ते मानवाधिकार की समस्या है। इस लोग जो कई बारी धोखे कन्ने, लालच कन्ने, धमकी या जोर जबरदस्ती करके एक जगह का दूजी जगह पर ले जाई करी उन्हों का जड़ा से शोषण किया जाता है। महिलाएं, बच्चा ते आर्थिक रूपे कन्ने जड़े कमजोर हैं यानी गरीब मनुआ जो इसका ज़्यादा शिकार जड़ा से बनाया जाता है। इस गंभीर अपराध के प्रति लोगों जो जागरूक करने ते इसो रोकने के उद्देश्य कन्ने हर साल 30 जुलाई यानी अज के दिन जो मानव तस्करी विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। सखियो, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2013 च पहली बारी अज के दिन यानी 30 जुलाई जो मानव तस्करी विरोध दिवस के रूप में घोषित किया गया। अज के दिन जो मनाने का मुख्य उद्देश्य जड़ा था सहता मानव तस्करी के प्रति लोगों जो जागरूक करना, जड़े पीड़ित हैं उन्होंने अधिकारों की रक्षा करना, सरकार ते समाज जो इस अपराध के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाने वास्ते प्रेरित करना है। मानव तस्करी एक अजिहा अपराध है जिस किसी भी मनु जो चाहे से महिलाएं होन, बच्चे होन, उन्हें जो शिक्षा, नौकरी, ब्याह ते होर कोई भी बेहतर जीने का झूठा सपना दिखाई करी या डराई करी उन्हें जो उन्हें जड़ा से शोषण किया जाता है। तस्करी के शिकार लोगों का जबरन मजदूरी करने वास्ते उन्हें जो जड़ा से विवश किया जाता है ते कन्ने कन्ने भीख मंगवाने, घरेलू दासता, यौन शोषण ते होर भी कई तरह के शोषण वास्ते जड़ा से उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। तो अज के दिन लोग जो इसके प्रति जागरूक करने वास्ते दिख कई अभियान जड़े से चलाए जाते हैं, रैलियां भी होंगे हैं, तो अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन जड़ा सह भी किया जाता है ताकि मनुआ का इस अपराध का जड़ा से बचाव हो सके। तो जड़े पीड़ित हैं मनु उन्हों की सहायता करने के बारे च जानकारी जड़ी है मिली सके ते इस पर रोक लगाने वास्ते समाज ते सरकार दी दोनों दी भागीदारी जड़ी है जरूरी है। तो हुण असा जो भी जरूरी है कि एक थोड़ी देर असा जड़ी है अपनी गल्ला जो विराम देन कई कि कार्यक्रम विच लोक गीतां जो सुनने का आनंद नहीं लिता जाए अगर मनी लिया तो कार्यक्रम जड़ा सा अधूरा लगता। तो सुन लेंदे एक होर प्यारा दिया लोक गीत।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई।
0: ये तीनों जांच क्यों जरूरी है?
1: अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी।
0: बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
3: एक बेरी फिर स्वागत है श्रोता सखियां दा कार्यक्रम मिंजरां च। हुण असां गल करनी अपनी सखियां कन्ने सकारात्मक सोच जीवन जीने वास्ते बड़ी जरूरी है इस बारे च। दिखा सकियो असां मनुआ दा जीवन जिहड़ा से सुख दुख सफलता असफलता दे संघर्षा कन्ने जिहड़ा से भरोया हुंदा है। असां जो अपने जीने च कई बारी दिखा कई कठिनाइयां दा जिहड़ा से सामना करना पौंदा है ना। अगर जीने च सुख है तो निश्चित है कि कई बारी जिहड़ा से दुख भी आहां दी जिंदगी च जरूर आउणा है। कभी असा दा हर काम जिहड़ा से आसानी कन्ने हो जांदा, कई बारी असा दे काम जिहड़े से कई बारी अधूरे रह जांदे, पूरे नहीं हुंदे है ना। कई बारी असां जो अपनी जिंदगी च अपने बच्चों की मतलब पढ़ाई दी लिखाई दी कई चिंता होंगी, नौकरी दी चिंता होंगी है ना, कोई गरीब बीमार है तो उसकी चिंता होंगी। पर चाहे जितनी भी मुश्किल होन, असां सबना जो अपनी सोच जड़ी से सही रखनी है। सकारात्मक सोच ही असा जो हर दुख का जड़ा से बाहर निकाल दी। अगर सही सोच रखते असा मन नहीं लिया तो हर कठिन परि

परिस्थिति का सामना जेह्ड़ा से असा धैर्य कन्ने ते आत्मविश्वास कन्ने करी सकदे। सही सोच असा दे जीने चो नोई दिशा देने का काम करदी, कने नोई दिशा देने चाहां दी जेह्ड़ी असा मदद करदी। निराशा का असा सभना चो जेह्ड़ी असा दूर रखदी। सकारात्मक सोच यानी कि हर परिस्थिति च खरे बारे च यानी कि खरे पक्ष चो दिखना, खरा ही सोचना, उल्टा सीधा नहीं सोचना। आशा दी किरण जिहड़ी असीं अपने अंदर बनाई रखनी, अंदर का निराश जिहड़ा सी असीं बिल्कुल नहीं होना है। यही सोच रखनी कि हर समस्या का समाधान जिहड़ा सी हो ही जांदा है। कोई भी मुश्किल हो उसका असा समाधान जिहड़ा सी करी सकदे। अगर एक रस्ता बंद हो जांदा मन्नी लिया तो भगवान जिहड़ा सी दूजा रस्ता जरूर खोलदा है। किसी भी मुश्किल से असा ने घबराना नहीं है, बल्कि अगे बढ़ने के नोए अवसर जिहड़े इनसे जरूर खोजने हैं। सकारात्मक सोच कन्ने असा सबना दा आत्मविश्वास जिहड़ा सी जरूर बढ़दा, ते असा अपने लक्ष्य जो हासिल करने वास्ते लगातार जिहड़ा सी प्रयास करदे। इस कन्ने दिखा असा दा मानसिक तनाव जिहड़ा सी घटदा, ते असा दा मन जिहड़ा सी भी खुश रहिंदा है ना, बीमारियां लगने का सा बची रहिंदे। कन्ने जिहड़ी भी असा दियां पैणा अपनी सोच जिहड़ी असी बिल्कुल सही रखदी, उल्टा सीधा नहीं सोचदी, दिमाग च कोई मतलब खरे बुरे ख्याल नहीं आना दिंदियां, से दूजियां जो भी हमेशा हौसला दिंदियां, दूजियां जो अगे वधने वास्ते जिहड़ी असी प्रेरित करदियां है ना। नकारात्मक कदी भी नहीं सोचना चाहिदा। नकारात्मक जालू असा सोचदे तां दिखा इस कन्ने आ चुके हुंदा कि मानसिक तनाव हुंदा है ना, असा होर भी ज़्यादा चिड़चिड़े हो जांदे, गुस्सा जिहड़ा असां च जल्दी आंदा। कई बार छोटी छोटी गल्ला पर भी यानी बिना मतलब की गल्ला पर असा जड़ा सा गुस्सा कर लेंदे। इस कन्ने घरे च क्या होंदा दिखा, अशांति रहिंदी, घरे दा माहौल जड़ा सा खराब हो जांदा। खाली वक्त पर असा क्या करी सकते, उस वक्त मन लिया अगर हमारे दिमाग च कुछ उल्टे सीधे ख्याल होंदे ना, असा अपने आप च नहीं समझाई पाते तो कई काम करी सकते खाली वक्त पर है ना। जे कि असा अच्छे विचार जड़े इनसे पढ़ी सकते, कुछ अच्छी प्रेरणादायक जिहड़ी भी अजकल मोबाइल च कोई वीडियो बनाउंदी, कोई कुछ चीज़ां होंदियां दसियां हां तिहनां जो देखी सकदे, या प्रेरणादायक किताबां जिहड़ी ना सब पढ़ी सकदे। इस कन्ने भी असां दी सोच जिहड़ी असी सही रहिंदी है ना। कन्ने थोड़ा टाइम जिंदगी च अपने आपे च जरूर देना चाहिदा, योग ध्यान व्यायाम भी असां दे मन जो शांत ते सकारात्मक बनांदे हन। इंसान गलती दा पुतला है, असा सारे ही जानते, चाहे हाँ कितना भी कुछ खरा करने की कोशिश करन, कदे ना कदे गलती जिहड़ी असा सबना का कदी ना कदी हो ही जाती कुछ ना कुछ। इस खातिर अपनी गलतियां का सीख ले करी असा सबना ने हमेशा जड़ा से अगे बढ़ना है। अपनी उस गलती दे बारे च सोची सोची करी निराश तो हम बिल्कुल नहीं होना है। सकारात्मक सोच जड़ा से एक अच्छा जीवन जीने वास्ते सचमुच बड़ी जरूरी है भैनों। इस कन्ने असा दा आत्मविश्वास जड़ा से बढ़दा, असा एक जगह नहीं रुकी रहिंदे, असा अगे बढ़ने की जड़ी असी कोशिश करदे। जिन्हां सखियां की सोच सकारात्मक हुंदी, छोटी छोटी गल्लां दा बतंगण नहीं सा बनांदियां, उन्हां कन्ने मिलने जो भी, उन्हां कन्ने गलबात करने जो भी, हर कोई जड़ा से खुश रहिंदा, उन्हां दी एक झलक दिखी करी हर कोई खुश हो जांदा है ना। इस खातर हमेशा खरा सोचा, छोटी छोटी गल्लां जो दिले कन्ने जड़ा से बिल्कुल नहीं लगाना, यही सोच रखनी कि कुसी दा भी कदी दिल नहीं दुखाना, कुसी जो भी कदी गलत जड़ा से बिल्कुल नहीं बोलना। फिर दिखा असा दे जीने च जड़ी आने वाली खुशियां हैं उन्हें जो कोई नहीं रोकी सकता। तो लोक गीत जो सुनने कन्ने भी जड़ी असो खुशी मिलती उसो भी कोई नहीं रोकी सकता। तल्लिया सुना अपने अपने रेडियो सेट्स पर एक प्यारा दिया लोक गीत।

एक बार फिर स्वागत है सदैव श्रोता सखी कार्यक्रम मिंजरें च पहनो अपने कार्यक्रम बिच पूजी गए नसा अंतिम पड़ा पर इतुस अपनी सखिया कने साझा करते कोई भी खाने पीने वाले व्यंजन जड़े सा जरूर साझा करते। तो अज असा गल करनी है चना चाट बनाने के बारे च। चना चाट एक स्वादिष्ट पौष्टिक ते आसानी कने बनने वाला नाश्ता है। इस प्रोटीन फाइबर ते कई जरूरी तत्व जड़े से जरूर पाए जाते हैं। काले चने दी भी असा ते काबली चने दी भी चाट जड़ी असा बनाई सकते हैं, है ना। एक बर्तन से कोई भी उबले चने ले लेने हैं। इन्हें प्याज टमाटर खीरा हरी मिर्च हरा धनिया बरीक कट्टी करी पाई देना ते कन्ने कन्ने भुनिया जीरा पाउडर चाट मसाला लाल मिर्च पाउडर काला नमक या साधारण लून कोई भी जड़ा से पाई सकते। अपने स्वाद के हिसाब कन्ने उपर का नींबू का रस जड़ा से पाई लेना जिस हिसाब कन्ने खटाई तुहाने पानी हूँ उस हिसाब कन्ने पाई लेना। इन्हें सारी चीज़ों जो चम्मच की मदद कन्ने खरे कन्ने जड़ा से तुसाने मिलाई लेना कन्ने बस चने की चाट जी बन के तैयार है। अगर होर भी स्वाद बधाना हो तो इस अनार के दाने पाई सकते उबलिया आलू जो जड़ा से कट्टी करी से पाई सकते कुरकुरी सेवइयां भी मिलाई सकते। ज़्यादा पौष्टिक बनाना हो तो अंकुरित चने का इस्तेमाल जड़ा से असा करी सकते। इसको असा शामी नाश्ते जड़ा से बनाई करी खाई सकते या हल्का खाना खाना हो तो भी असा चने की चाट जी बनाई करी खाई सकते। अपने न्याणे जो बनाई करी देन तो आखिर न्याणे जड़े सह भी खुश होई करी खाई लेंदे। तो तुस इस तरीके कन्नै चना चाट जड़ी असें जरूर बनाई करी खाई सकते। कन्नै नोई नोई चीज़ा जालू अस अपने घरे च कुछ बनांदे हैं ना हल्की फुल्की चीज़ा दा दिक्खा बच्चे जड़े ना दे सह भी बड़े आरामे कन्नै खाई लैंदे बजुर्ग भी खाई लैंदे कन्नै आज भी जड़ा असें खरा लगदा। कई बार भारी चीज़ा खानी तो इस कन्नै भी जी असें थोड़ी जी मुश्किल हो जाती कई बार पचदी नहीं तो ऐसी ऐसी पौष्टिक वाली चीज़ा जी सासा जो जरूर खाना चाहिए। तो अज के कार्यक्रम बिच बस इतना ही कन्ने अगले पर हाँ तो कन्ने कुछ होर नोए विषय पर जरूर गलबात जी असें करनी है। चलते चलते तो अज दस देंगे कि अजो तकनीकी सहयोग दिता विकास पठानिया ने कन्ने इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जितेंद्र पॉल सिंह। प्यारी सिखियो राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिंजरा FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार दिल्ली के जानकारी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। सभापति ने बताया कि उन्होंने डॉ. जितेंद्र सिंह की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने संबंधी सूचना स्वीकार कर ली है।

0: उन्होंने कहा कि विधेयक की प्रतियां सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं, जिससे वे इसमें संशोधन प्रस्तुत कर सकें। लोकसभा ने कल ये विधेयक पारित कर दिया है। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
1: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
2: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही 8-2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के गोला बारूद के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और बी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के बरनाला में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े सफाई कर्मचारियों के साथ कथित पुलिस ज्यादती के मामले में पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से इस मामले में 7 दिन के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अमेरिकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर किए गए इसके जवाब में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस बीच ईरान के खुजिस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। उधर भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में अमेरिका से 1-2 से हार गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक श्रोता लिखते हैं कि पिछली बार तब बहुत रोना आया था जब मैं भोपाल में लाल परेड ग्राउंड पर आर्मी की भर्ती की परीक्षा देने गया था और केवल 20 सेकंड से मैं रह गया था। एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, जुगल हंसराज वाली फिल्म मासूम और गायिका आरती मुखर्जी। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि उन्हें आरती मुखर्जी के साथ कोलकाता में चाय पीने का अवसर प्राप्त हुआ था, ये उनके लिए बहुत ही यादगार लम्हा है। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि कुछ लोग जो अब साथ नहीं हैं उनकी याद में आंखें नम हो जाती हैं। एक और श्रोता हैं जिनका कहना है कि मैं जब भी फूलों का तारों का गीत सुनती हूं तो अपने भाई को याद करके आंखें नम हो जाती हैं। बचपन की याद दिलाने वाली फेसबुक पोस्ट देखकर आंखें नम हो जाती हैं कि कितनी निस्वार्थ दोस्ती थी, आपस में खेलना, झगड़ना, फिर सुलह कर लेना। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिनका ये कहना है कि जिंदगी कितनी अजीब है, सब कुछ इतना मुकम्मल लगता है कि इंसान वक्त को वहीं रोक देना चाहता है, लेकिन शाम ढलती है वो इंसान विदा हो जाता है और चारों तरफ सन्नाटा फैर जाता है। एक और श्रोताएं कहते हैं पूछिए आज हम आ गए मैदान में। बिल्कुल जी, अब तो कठिन से कठिन सवाल पूछेंगे, आइए मैदान में। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने 1983 में आई थी फिल्म मासूम ये लिखा है। एक और श्रोता का कहना है कि माँ का साथ कुछ साल पहले छूटा, दुनिया में वीरानी छा गई, एक खालीपन है। शाम की चाय अब भी पीती हूँ पर माँ के साथ शाम की चाय की बात कुछ और थी। अब घर का वो कमरा जहाँ से माँ की रौनकें थीं, दर्द भरा सन्नाटा पसरा रहता है। किसी का साथ जब छूट जाता है तो कितना बदल जाता है जीवन। एक और श्रोता लिखते हैं कि कल गुरु पूर्णिमा थी तो मन में ख्याल आया कि सबसे पहले गुरु तो माँ पापा होते हैं, बस सोचते सोचते आंखें भर आईं। तमाम श्रोताओं के इस तरह के कमेंट कुछ जज्बाती कर देने वाले, कुछ अपने दिल की बात कहने वाले, शुक्रिया आप सभी का। और पूरी इबारत की एक तरह से डोर पकड़ के जो अगला गाना हम आज के हार में मोती की तरह पिरो रहे हैं वो मुकेश की आवाज़ वाला ये गाना है। फिल्म का नाम और गीतकार का नाम बताइएगा।

एक श्रोता लिखते हैं कि शाम से शुरू हुई सुरमई संगीत की यात्रा, नैनों ने पानी बरसाया, दिल तोड़ दिया और दिल को समझ लिया, ये आपका अंदाज है, शुक्रिया। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सहेली फिल्म का गाना है और संगीतकार इंदिवर जी हैं। भाई संगीतकार नहीं, गीतकार इंदिवर जी हैं, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। और सहेली 1965 में आई थी, बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि उनकी लिस्ट में ये गाना शामिल था। एक श्रोता लिखते हैं कि कल रफ़ी साहब की याद का दिन है और कम से कम 2 घंटों का कार्यक्रम होना चाहिए और आप इसे प्रस्तुत करें। बहुत शुक्रिया, रफ़ी साहब की याद में कार्यक्रम ज़रूर होगा और क्यों ना आज ही से हम रफ़ी साहब के लिए अपने दिल के जज्बात का इजहार करना इसलिए शुरू कर दें क्योंकि अभी कार्यक्रम का जो अगला गाना है वो रफ़ी साहब की आवाज़ वाला ही गाना आ रहा है। एक श्रोता लिखती हैं कि प्यार कभी मरता नहीं, वो याद में बदल जाता है। याद से एक मूक ताकत हमें जीने को मजबूर करती है। कितना कुछ है दुनिया में भूलने को और कितना कुछ है दुनिया में याद करने को। इसके अलावा एक और श्रोता हैं, कहते हैं कि मेरी पत्नी ही मेरी सच्ची दोस्त है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अधूरी कहानी के नायक और नायिका के लिए आंखें सजल होती हैं। और इसके अलावा एक श्रोता हैं लिखते हैं कि दिल नाजुक है और उसका भावुक होना बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक है। एक और श्रोता हैं लिखती हैं कि कुछ गाने बीतते नहीं हैं, दिल में एक टीस पैदा करते हैं और आंखें भीग जाती हैं। आरती मुखर्जी वाला गाना उन्हें कुछ इसी तरह का गाना लगता है। और अब मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ आ रही है, साहिर लुधियानवी का लिखा एक फ़लसफ़ा। कल मोहम्मद रफ़ी की याद का दिन, 31 जुलाई का वो दिन जब रफ़ी साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, क्यों ना आज से ही रफ़ी साहब के प्रति अपने जज्बात का इजहार करें और आज के इस कार्यक्रम में आप बताएं कि कितना प्यार करते हैं आप रफ़ी साहब की आवाज़ से, कितना मायने रखते हैं रफ़ी साहब आपके लिए।

एक श्रोता लिखते हैं, बचपन में किसी आवाज से आरंभ हुई तो वो मरहूम सुरों के साधक मोहम्मद रफी ही थे जो अब तक दिल में बसे हैं। मन तड़पत हरि दर्शन को आज मेरा पसंदीदा गाना है और मैं बरबस गुनगुनाता हूँ। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि चित्ररेखा फिल्म का ये गीत साहिर लुधियानवी, रोशन, प्रदीप कुमार, केदार शर्मा, क्या बात है, पूरे डिटेल्स आपने लिख लिए हैं। राग यमन पर आधारित गाना, सितार, सरोद और बांसुरी का बेहतरीन इस्तेमाल, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि रफ़ी साहब की आवाज़ रूह को छू लेने वाली आवाज़ है। और इसके अलावा एक और श्रोता का कहना है कि बहुत ही सुंदर गीत है, मन रे तू काहे ना धीर धरे, बचपन से सुनती आ रही हूँ, कितना सुकून है इन बोलों में। एक और श्रोता, मेरे लखनऊ के घर में जिसमें मैं खेली पढ़ी, सबके शादी ब्याह हुए, भाई बहन का प्यार, सब यादें रह गईं, वो घर बेच दिया गया, भाई लोग फ्लैट में चले गए, बहुत रोना आ रहा है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर बोल चित्रलेखा फिल्म का ये गाना। एक और श्रोता का कहना है कि रफ़ी साहब की आवाज़ का तिलस्म कभी ख़त्म नहीं हुआ, इस तिलस्म का असर और ज़्यादा गाढ़ा होता चला जा रहा है। एक और श्रोता का कमेंट है, सुमधुर गानों की बौछार जैसे बारिश की पहली बूंदें। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि मुकेश साहब पर आधारित दोनों कार्यक्रम बहुत अच्छे थे, दो दो बार सुना पर प्यास नहीं बुझी। इस तरह के कमेंट्स हैं। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और वो गाना सुनवा रहे हैं जो इबारत में शामिल था लेकिन मुखड़े के रूप में नहीं, बल्कि गाने की बीच की पंक्तियों को शामिल किया था, फिर भी फिल्म संगीत के दीवाने हमारे श्रोता, विविध भारती परिवार के हमारे सदस्य, आप सभी ने इस गाने को पहचान लिया था। और ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, बताइएगा फिल्म का नाम और ये भी कि इस फिल्म का कौन सा गाना आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा रहा या कौन से गाने हैं जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा रहे हैं। और इसके अलावा ये भी बताइए कि आज सुबह से वो कौन सा गाना है जो आपके होंठों पर सजा है।

0: भाई ये गाना कितने जल्दी ख़त्म हो गया ऐसा लगता है। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि मेरे होंठों पर एक ही गीत जहन में आ रहा है, न फनकार कोई तुझसा तेरे बाद आया। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि संगीत के प्रति मेरे लगाव की शुरुआत मोहम्मद रफ़ी से हुई है। मोहम्मद रफ़ी सिर्फ गायक नहीं बल्कि भारतीय संगीत की वो रूह हैं जिसने करोड़ों दिलों को धड़कना सिखाया। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा कि उपकार का जो गाने हैं सारे गाने बड़े अच्छे लगते हैं और आज सुबह से बारिश का लुत्फ हम ले रहे हैं। और एक श्रोता का कहना है कि लता जी का तार सप्तक स्वर अंतरे में बहुत भाता है इस गाने में। गुलशन बाबरा का लिखा गीत कल्याण जानन जी का संगीत, ये भी एक श्रोता ने लिखा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मेरे देश की धरती टाइमलेस गाना है और इस फिल्म का सबसे अच्छा गाना यही है। और उसके अलावा कस्मे वादे प्यार वफा, एक और श्रोता है कहते हैं कि आज से सावन शुरू हो गया है, कई दिनों से बहुत उमस वाली गर्मी थी और इस समय तेज बारिश हो रही है। और इसके अलावा एक श्रोता कहती हैं कि किसी अपने के लिए की गई वो पवित्र दुआ है जहां खुद को पीछे छोड़कर केवल सामने वाले के जीवन में कोई उजाला और मुस्कान देखना चाहता है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि शायद इबारत देखने के बाद यही गीत पूरा हमारे जहन में चल रहा था और इस गाने का इंतजार वो कर रही थी। इंतजार एक और कार्यक्रम का कीजिएगा जिसकी सूचना आप देते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
0: भाई, विविध भारती पर सुरीला सफर चल रहा है और हमारे श्रोता किस तरह से अपनी बातें कह रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि आज सोनू निगम का जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देना चाहते हैं। बिल्कुल दीजिए भाई, और हमने तो इससे पहले वाले यादों की महफिल वाले कार्यक्रम में बाकायदा उन्हें बधाइयां दी हैं और फनकार आज के फनकार कार्यक्रम का जिक्र भी उन्होंने किया है। और बहुत सारे श्रोता मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में अपनी बातें कह रहे हैं। एक श्रोता है जो कह रही है कि बिल्कुल सुबह से एक गाना जहन पर चढ़ा हुआ है, वो है स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कह रहे हैं कि सुबह से हमारे जहन पर छाया हुआ है वो गाना चांद आहें भरेगा फूल दिल थाम लेंगे। एक और श्रोता है जो कह रही है कि टेलीपैथी हो गई, हर खुशी हो वहाँ हमारे जबान पर सुबह से चढ़ा हुआ है। एक और श्रोता कहते हैं कि ये दिल दीवाना है, ये हमारे जहन पर चढ़ा हुआ है। एक श्रोता के जहन पर चढ़ा हुआ है मेघा छाए आधी रात बैरन बन गई निंदिया। और इस तरह से सभी अपने अपने गाने बता रहे हैं और आज की इबारत का अगला गाना ये, फिल्म का नाम बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि आज की शाम सुनहरी बनाने के लिए आप क्या करने

इस गाने को सुनकर एक आह निकल जाती है। आह फिल्म का गाना जिसको सुनकर आह निकल जाती है। एक श्रोता कहते हैं कि भाई कजिन को पढ़ाना है, शाम को मैं कहीं नहीं जाने वाला। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शाम का आनंद लेंगे। एक और श्रोता का कहना है कि शाम की तन्हाई को और गहरा बनाने के लिए समुंदर का किनारा ही बढ़िया होता है। और शैलेंद्र के इस गाने पर एक श्रोता जो है बहुत भावुक हो रहे हैं। एक और श्रोता है कहते हैं कि मैंने 6 गाने आज अंदाज़ा लगाया था, इन 6 गानों का गेस किए थे, 6 गाने शामिल हो चुके हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि 7 गानों की लिस्ट में ये 3रा गाना है जो शामिल हुआ है। एक और श्रोता हैं जिनके शहर में बारिश की सूचना है, इसलिए वो कहीं बाहर नहीं जाने वाली। और जब बारिश होती है और जब कहीं जाने को नहीं होता तो किचन में एक बहुत हल्की चीज़ बनती है जो तेल के ऊपर तैर जाती है। वो हल्की चीज़ कौन सी है भाई, जो बारिश के मौसम में हमें ज़रूर खाना पसंद होता है? ज़रा बताइएगा। वो हल्की चीज़ें जो हैं जीवन में बनी रहें, उनकी महक बनी रहे। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि सावन का महीना आज से शुरू हो गया है और सुबह से ही हम सावन के गाने गुनगुना रहे हैं। एक और श्रोता हैं जो जबलपुर में और कहते हैं कि आज हमारे शहर में मोहम्मद रफ़ी साहब की याद में एक कार्यक्रम है और आज शाम को वो वहाँ जाने वाले हैं। और एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि मैंने जैसे ही सोचा मेरी मम्मी का ये फेवरेट गाना बजने लगा और मैं साथ में गुनगुनाने लगी। आज शाम को सभी दोस्त मिल रहे हैं और तालाब में बोटिंग करने जा रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है और बाकायदा बोटिंग का मौसम है। देखिए भाई कितने सारे श्रोताओं के जो शाम के प्लान्स हैं वो हमने उजागर कर दिए आज के इस कार्यक्रम के जरिए। तो बताइएगा कि आपका आज की शाम का क्या प्लान है। तब तक ये गाना जो जिंदगी दुनिया और रिश्तों की हकीकत को उजागर करता है, बताइएगा ऐसा कौन सा दोस्त है जिससे

बहुत श्रोताओं के कमेंट तना दन चले आ रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि उदासी गहरी होती है तो दोस्तों से बात करते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो बस उस दिन एक्टिव होता है जब किसी का जन्मदिन हो। मैंने ऐसे ही एक दिन कहा कि सब कहाँ रहते हो, तो बड़ा ही रूखा सा जवाब आया कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी रहते हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप मेरे फेवरेट एंकर बन गए हैं। रफ़ी साहब के बारे में क्या कहूँ, वो मेरे फेवरेट थे, फेवरेट हैं और फेवरेट रहेंगे। बहुत ही सही उन्होंने कहा कि अगर एक भी दिन रफ़ी साहब की आवाज़ ना सुने तो बहुत खाली सा लगता है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि

जरीना वहाब पर फिल्माया गया ये गाना है सितारा। फिल्म का एक और श्रोता है, कहते हैं कि दोस्त होने का क्या फायदा जिससे बात ना हो। दोस्त तो वो होता है जो झगड़ा करने के बाद आकर बोले कि भाई क्या हाल चाल है, चलो बड़े तालाब में घूम कर आते हैं। क्या बात है, प्यारी बात कही है। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि सितारा फिल्म का ये गाना बहुत कम सुनाई देता है, आज आपने सुनवाया, शुक्रिया। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि आज आपने वो बातें छोड़ दी हैं जो दोस्ती की अनगिनत यादें लेकर आती हैं और अंत में आंखें भिगो देती हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि आपने जो बहुत ही हल्की सी चीज़ का जिक्र किया है वो पकौड़ी है जो कढ़ाई में तेल के ऊपर तैर जाती है। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जिनका आज पकौड़ी खाने का प्लान है, तो ज़रा ये बताइए बहुत सारी महिलाएं के भाई पकौड़ी आप ही बनाती हैं या अपने पति से भी बनवाती हैं? किन किन घरों में पति पकौड़ी बनाते हैं जब मौसम बहुत अच्छा होता है? और अब वो गाना आ रहा है जो उदास कर देने वाला है। मुकेश की आवाज़ में उदास गाने आपको पसंद होते हैं या फिर रोमांटिक गाने, बताइएगा। किस फिल्म का है ये गाना ये भी बताइएगा।

कार्यक्रम के तकरीबन आखिरी दौर में हम आ पहुंचे हैं। हिमालय की गोद में फिल्म का ये गाना बजा। बहुत सारे श्रोता हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि कढ़ी बनने से पहले ही सारे घर वाले पकौड़े खा लेते हैं और मैं कढ़ी कैंसिल कर देती हूं। आपके घर में भी क्या ऐसा होता है? एक और श्रोता लिखते हैं, बनारस और बारिश पकौड़े का सवाल ही नहीं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मुकेश की दर्द भरी आवाज उन्हें ज्यादा पसंद है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बरसात में पकौड़ी मैं बनाती हूं, मेरे पति चाय भी नहीं बनाते तो पकौड़ी क्या खाक बनाएंगे। अरे रे रे रे, ये तो बड़ी बुरी बात है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पकौड़े कढ़ाई में तो हल्के होते हैं लेकिन खाने के बाद सेहत के लिए भारी हो जाते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि कुछ चीजें तो हम अपनी श्रीमती जी से ही बनवाते हैं क्योंकि उनके हाथ की स्वादिष्ट होती है, तैयारी भले मुझे करनी पड़ती है। और इसके अलावा भाई आज तो पूरा पकौड़ी पुराण शुरू हो गया है। बहुत सारी महिलाएं ये बता रही हैं कि उनके पति को पकौड़े बनाने नहीं आते। अब ज़रा सोचिए कि ये कितनी गलत बात है। और सीख लीजिए, आज ही की आज सीख लीजिए। आप लोग जिम्मेदारी लीजिए कि आज ही आप सिखाएंगी। और अगला गाना आ रहा है, फिल्म का नाम तो कश्मीर की कली है पर इस गाने के गीतकार कौन है और आप कश्मीर कब गए थे और कश्मीर जाने की सुनहरी याद क्या है बताइए।

एक श्रोता लिखती है कि कश्मीर से याद आया कि हिमाचल प्रदेश में एक गांव का नाम कश्मीर है। अभी कुछ दिन पहले वहां गए थे ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट। कश्मीर घूमने के इरादे से गूगल मैप के जरिए हिमाचल से इस कश्मीर के गांव में पहुंच गए थे। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि वो 2015 में कश्मीर गए थे और बहुत ही सुनहरी यादें हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि कल्पना से भरी हुई अच्छी मसालेदार पकौड़ी विविध भारती पर सुनने को मिली। और एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि जब भी कश्मीर का ख्याल आया, घर में ही कश्मीर का माहौल पाया, पत्नी के हाथों से बने चाय पकौड़े टीवी ने ही कश्मीर से रूबरू करवाया। भाई वाह, क्या कहने हैं। और एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि हम कश्मीर में 3 साल तक रहे हैं और वहाँ कुछ पढ़ाई की है, युवा उम्र की यादें, क्या बात है। एक और श्रोता हैं जो ये कहती हैं कि 2014 में अमरनाथ गई थी और हम वहाँ कश्मीर गए थे और बहुत ही अच्छा लगा था। एक और श्रोता हैं वो कहते हैं कि भाई पकोड़े नहीं तल सकते तो क्या हुआ, प्याज आलू काटने में और छीलने में मदद तो कर सकते हैं ना, ये भी कम तो नहीं। बहुत सही बात है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि भाई कश्मीर की कली बहुत शानदार, आज का कार्यक्रम बहुत शानदार। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि डॉक्टर ने हमें पकौड़े खाने से मना किया है और आप पकौड़े का नाम ले रहे हैं तो मुंह में पानी आ गया है। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि पकौड़े वाली कढ़ी बनती है हमारे घर में और सभी सफा चट कर जाते हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैं रोज़ अपने घर में काम करता हूँ और महिलाओं का सहयोग करता हूँ, खाना भी बनाता हूँ, कोई व्यंजन ऐसा नहीं है जो मैं नहीं बना सकता। पकौड़ी क्या चीज़ है, आप पधारिए, पनीर के पकौड़े बनाए जाएंगे। भाई वाह, क्या बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रही है कि भाई आपकी बातों के बाद पकौड़े खाने का मेरा मन कर रहा है और वो भी भुट्टे के पकौड़े। भाई आज ना ये कार्यक्रम सुरीला सफ़र जो है वो गानों से ज़्यादा तो पकौड़ों की बातों का सफ़र हो गया। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पकौड़े और पति जी नहीं, वो सिर्फ जायका लेते हैं। इसके अलावा और भी श्रोताओं ने ये सब जिक्र किया है, बहुत शुक्रिया। देखिए ज़रा सी बात पर कितनी लंबी दास्तान हो गई और कितने सारे श्रोताओं ने कितनी सारी अपनी बातें कहीं। यही तो है विविध भारती के सुरीला सफ़र कार्यक्रम का मज़ा कि जिसमें आप हमारे हम सफ़र बनते हैं और भाई तमाम बातें होती हैं और ज़िंदगी के अलग अलग मुद्दों पर आप अपनी बातें शेयर करते हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज ताकत का इंजेक्शन लिया, सुरीला सफ़र कार्यक्रम सुना, परेशानी दूर हो गई, बिस्किट चाय के साथ इस वक्त बिस्किट चाय कार्यक्रम का आनंद ले रहा हूँ। मेरे घर में कल भाभी जी ने पकौड़े छाने थे। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि जब आप ये कार्यक्रम करते हैं तो मैं कभी मिस नहीं करती। एक और श्रोता है जो कहते हैं कमबख्त बारिश नहीं हो रही है, पकौड़े खाक बनाएं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम कश्मीर नहीं गए लेकिन तस्वीरें देखकर संतोष कर लेते हैं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में इस तरह से साथ निभाने के लिए। आप बारिश का इंतज़ार करें और खूब पकौड़े बनाएं, मज़े से खाएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें। ज़िंदगी की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहें विविध भारती के संग बने रहें। सुरीला सफ़र कार्यक्रम में आपके साथ आपका ये दोस्त यूनुस खान था। इजाज़त, नमस्ते।

दोस्तों, जीवन में बचपन की महत्ता सर्वोपरि होती है। हालांकि वक्त अपनी रफ्तार से कब आगे बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन किसी भी उम्र में बचपन की यादें हमेशा हमें बहलाए रखती हैं।

बचपन की मासूमियत सारी उम्र पर भारी होती है। बेबाकी से बढ़ती जिज्ञासाओं का अंत होते होते बचपन एकदम से आगे बढ़ जाता है। हर एक मुसीबत, असंख्य परेशानियों से परे, अपने में ही गुम बचपन हमेशा सहज बना रहता है।

किसी भी हाल में कहीं भी रहिए, अगर जिंदा दिल बने रहना है तो अपने भीतर के बच्चे को हमेशा जगाए रखना होगा, ताकि जीवन का चैन और आराम हमेशा हमेशा बरकरार रहे।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों में इशारा हो गया।
3: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
4: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरणत भवन सु आयो विनायक करो ये नसीती विने दरी मारा दिलीप सेन जी पधारिया।
3: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
5: ओले, ओले, ओले, ओले, ओले।
0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, प्रतीक्षा समाचारों की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। श्री सिंह इस समय सदन को संबोधित कर रहे हैं।
1: एंड फाइन अप टू 50 लाख एज फार एज द सर्विस प्रोवाइडर इज कंसर्न्ड। नाउ इफ जयराम जी हैज नॉट रेड दैट आई विल रीड आउट व्हाट

0: का उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
2: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
1: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
3: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर मेटा ने अफसोस जाहिर किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना की वजहें बताने को कहा है, साथ ही ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 1 बजे तक पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर लगभग 20% मतदान हो चुका था। गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21.66% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
5: वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगर पालिका के पूर्व पार्षद सतीश पटेल को मैदान में उतार

0: है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भीखाभाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2,19,000 से अधिक मतदाता इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर दोपहर 1 बजे तक 48.91% वोट डाले जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
3: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने यह सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
1: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
4: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझर पर पड़ी है। लगभग 5,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,76,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए 3 दिनों के भीतर नुकसान का विस्तृत ब्यौरा सौंपे। इस बीच ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वालों लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक गरज चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। भानु प्रताप सिंह के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। झारखंड के देवघर में आज से श्रावणी मेला शुरू हो गया है।
6: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आंख के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले इसके लिए नए फुट ओवरब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा की भावना विकसित करने तथा एक स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज डलडमरू मध्य में जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूहों से अमेरिकी सैनिकों, वाणिज्यिक जहाजों तथा खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों को होने वाले खतरों को कम करना है। इस बीच ईरान के खुजेस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अपील की है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ऑन्टेरियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमरीका से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में के फाइनल में भारत के दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे।

अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

दिल्ली का दादा फिल्म का ये गाना था। मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, एन दत्ता की तर्ज थी। इससे पहले का गीत जागते रहो फिल्म का था, सलील चौधरी का संगीत था, शैलेंद्र के बोल थे, आशा भोसले की आवाज थी।

मजू सुल्तानपुरी के बोल थे, प्रीति सागर और भूपिंदर की आवाजों में ये भूमिका फिल्म का गाना था, संगीत वनराज भाटिया का था। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश जुर्माना फिल्म का ये गाना।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजने को है, थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार सुने जा सकते हैं जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा जारी है। कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है। नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है।
1: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सोलन जिला के क्यारी घाट से हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बसों से प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक तकनीक और पर्यावरण अनुकूल वातावरण मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के गठन के बाद से HRTC के बेड़े का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और विधायक कुलदीप सिंह राठौर व हरदीप सिंह बावा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार आगामी 6 से 8 अगस्त तक अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी। शिमला में ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता

0: करते हुए उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे और इनकी अध्यक्षता विधायक करेंगे। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरी तरह भाजपा फोबिया से ग्रस्त हो चुके हैं। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी मुद्दा सामने आए तो मुख्यमंत्री बिना तथ्यों के भारतीय जनता पार्टी को ही दोषी ठहराने का प्रयास करते हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई, आर्थिक दबाव और सरकार की नीतियों से परेशान है, लेकिन मुख्यमंत्री का ध्यान केवल अपनी राजनीतिक छवि बचाने पर केंद्रित है।
1: मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाजपा फोबिया से पूरी तरह से ग्रस्त है। कुछ दिन पहले एक एनजीओ इनके चुनाव के समय जो एफिडेविट इन्होंने दिए थे उसके आधार पर उन्होंने आकलन किया और आकलन करके एक रिपोर्ट छपी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के पास 7,80,00,000 रुपए की संपत्ति है और वो उत्तरी भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री है। अब उस आकलन के बाद भी मुख्यमंत्री इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहरा। हमने कभी कुछ कहा नहीं, हम तो बधाई दे रहे हैं, हमारे को उससे कोई आपत्ति नहीं, परंतु हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय अपनी संपत्ति के साथ साथ जनता का भी ध्यान रखें।
0: श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी का पवित्र जल लेने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर तीन राज्यों की सीमा से जुड़े सिरमौर जिला में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों व प्रमुख मार्गों पर पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी।
2: ये जो श्रद्धालु है पोंटा भूपर यमुना पुल मार्ग से हरिद्वार जाएंगे, लगभग आलम से होते हुए जहाँ जहाँ पे इनके शिविर लगने हैं वहाँ से पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है भूपुर चौक हो गया, फिर वहाँ से जो आपके डायवर्जन होगा यमुना नया ब्रिज है वहाँ से डायवर्जन होगा, तो वहाँ तक हमने पुलिस बाउंड्री तक हमने डिप्यूट की है। तो हमारी फोर्स है इनको लेफ्ट राइट चलने की हिदायत देंगे और जो इनके जो भंडारे लगेंगे वो भी रोड से दूर लगेंगे लेफ्ट साइड में, और हमारी जो पेट्रोलिंग पार्टी है राउंड द क्लॉक रात भर रहेगी। जो हमारा कंट्रोल रूम है उसके थ्रू हम उत्तराखंड पुलिस से डेली बेसिस पे और आर बेसिस पे के साथ कांटेक्ट में रहेंगे।
0: प्रदेश के अधिकांश भागों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई और बारिश की कमी से निचले इलाकों में लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा और मंडी जिले में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू और सोलन जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कुछ स्थानों पर फ्लैश फ्लड की संभावना जताई है। ऐसे में लोगों से नदी नालों व खड्डों के किनारे जाने से बचने और सतर्क रहने की अपील की गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद प्रस्तुत है लाहौल स्पीति जिले की चिट्ठी, जिसके लेखक है सुरेंद्र कुमार, वाचक स्वर प्रभा शर्मा का।
4: लाहौल स्पीति जिले में विकास योजनाओं की समीक्षा और आगामी परियोजना सलाहकार समिति की बैठक की तैयारियों को लेकर प्रशासन सक्रिय रहा। एसडीएम केलंग कुनिका एकर्ज की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम तथा अनुच्छेद 275(1) के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, जल शक्ति, पर्यटन, परिवहन तथा अन्य विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। स्पीति घाटी में भाषा, संस्कृति और बौद्ध विरासत के संरक्षण का संदेश राष्ट्रीय बौद्ध सांस्कृतिक सम्मेलन से मिला। हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चर एसोसिएशन स्पीति और मून सेलिंग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सम्मेलन में लगभग 400 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। विद्वानों, शोधकर्ताओं और बौद्ध धर्मगुरुओं ने मातृभाषा, शिक्षा और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण पर अपने विचार साझा किए और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का आह्वान किया। आपदा प्रबंधन को आधुनिक तकनीक से मजबूत बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने लोड कैरिंग ड्रोन संचालन का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया।

0: था। प्रशिक्षण में बताया गया कि आधुनिक ड्रोन के माध्यम से भूस्खलन या सड़क अवरुद्ध होने की स्थिति में दवाइयां, खाद्य सामग्री और अन्य राहत सामग्री दुर्गम क्षेत्रों तक शीघ्र पहुंचाई जा सकेगी। उपायुक्त किरण भडाना ने इस लाहौल स्पीति जिले के दुर्गम के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया। उधर म्याड़ घाटी के लोगों ने जर्जर सड़कों, अधूरे निर्माण कार्यों और संचार सेवाओं में बार बार आ रही बाधाओं को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी कि अगर समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने सड़क पुलों की गुणवत्ता तथा ऑप्टिकल फाइबर लाइन को हुए नुकसान की भी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कौमिक गांव में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और युवाओं को जैव उर्वरक तथा वर्मी कंपोस्ट निर्माण की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि शांतिप्रिय सूक्ष्म जीवों पर आधारित ये तकनीक ट्रांस हिमालयी क्षेत्रों की जलवायु के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी और इससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। स्पीति में पशुपालन विभाग ने 17 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान 250 आवारा कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण सफलतापूर्वक पूरा किया। विभाग ने इस अभियान को जन स्वास्थ्य और पशु कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। जिले में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। कुकुमसेरी में लाहौल पोटैटो सोसाइटी के तीसरे पेट्रोल पंप के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। वहीं काजा में उप दमकल केंद्र का उद्घाटन होने से स्पीति क्षेत्र को पहली बार स्थानीय स्तर पर दमकल सुविधा उपलब्ध हुई, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में राहत व बचाव कार्यों को नई मजबूती मिलेगी। विश्व प्रसिद्ध की मठ में वार्षिक गुईश्वर महोत्सव श्रद्धा और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र की सुख समृद्धि और विश्व शांति के लिए विशेष प्रार्थनाएं की गईं। विधायक अनुराधा राणा ने मठ के विकास के लिए सहयोग राशि देने की घोषणा की। उपायुक्त किरण भडाना की अध्यक्षता में आयोजित एक अन्य समीक्षा बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यटन, खेल, सौर ऊर्जा, पर्वतारोहण प्रशिक्षण, जलापूर्ति, आंगनवाड़ी केंद्रों और अन्य विकास परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने पर जोर दिया गया। शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा किए गए सामाजिक अंकेक्षण में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण।
2: वर्ष 30 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 से की थी और इस दिवस का उद्देश्य लोगों, समाज और देश के बीच मित्रता, विश्वास और सद्भाव और शांति को बढ़ावा देना है।
3: बिल्कुल, और मित्रता केवल साथ में घूमने फिरने या हंसी मजाक तक सीमित नहीं होती है। ये एक दूसरे की भावनाओं को समझने, गलतियों पर रोक लगाने, सही मार्ग दिखाने और सफलता पर दिल से खुश होने का नाम है। सच्चा मित्र हमारी कमियों को तो छुपाता नहीं बल्कि उन्हें दूर करने का हमें साहस देता है। वो हमारे मुंह पे बताएगा कि ये कमी है। अगर कोई हमें बताएगा नहीं हमारे अंदर क्या कमी है तो हम उसे दूर कैसे करेंगे। तो वो सच्चा मित्र जो होता है ना, वो ये नहीं सोचता कि ये बुरा मान जाएगा, वो सीधे बताता है कि ये तुम्हारी कमी है, इसे तुम्हें दूर करना चाहिए।
2: और जिसके लिए कमी बताई है उसे भी बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिर वो सच्चा मित्र नहीं होगा।
3: बिल्कुल, और क्या, क्योंकि आपकी गलतियां बताने वाला कोई मित्र आपके साथ है ये बहुत भाग्य की बात है।
2: जी, एक साथी ने लिखा है आरती कि दोस्त शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से फारसी से हुई है, जिसे हिंदी भाषा ने इतने प्यार से अपनाया है कि यह हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। हिंदी में इसे मित्रता या मैत्री भी कहा जाता है। इस शब्द में एक ठहराव है। यह रिश्ता खून के रिश्तों से अलग होता है क्योंकि इसे हम खुद चुनते हैं। स्वतंत्रता दोस्ती में उम्र, जाति, धर्म या हैसियत की कोई सीमा नहीं होती। ये पूरी तरह स्वतंत्र और शुद्ध भावना है।
3: बिल्कुल, और एक हमारे साथी हैं जो कहती हैं कि दोस्त वही जो हर हाल में साथ निभाए, बिना कहे दिल की हर बात समझ जाए। और एक और हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि 30 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप मनाए जाने की शुरुआत साल 1958 में हुई थी और पैराग्वे के डॉक्टर थे रेमोन ऑर्टेमियो ब्राचो ने एक अभियान शुरू किया था जिसका उद्देश्य देशों और समाजों के बीच दोस्ती को बढ़ावा देकर शांति स्थापित करना था। बाद में इस विचार को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली और 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जुलाई को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस घोषित कर दिया।
2: एक साथ ही लिखते हैं, सच्चा मित्र वह है जो हमारी मुस्कान के पीछे दर्द को भी पढ़ ले, बिना कुछ कहे हमारे साथ खड़ा रहे। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती की खुशबू कभी नहीं बदलती। बचपन की शरारतें, स्कूल की यादें, साथ बिताए अनगिनत पल, दूरियां चाहे कितनी भी बढ़ जाए, यदि दिलों में अपनापन हो तो दोस्ती कभी पुरानी नहीं होती।
3: बिल्कुल, क्या हमारे एक साथी कहते हैं, सोनाली, जब जिंदगी में बहुत बुरा हो जाए, कुछ ना रहे, और उस समय दोस्त का हाथ गलबहिया कंधे पर टिके और दोस्त ये कहे, कुछ भी नहीं हुआ, बस तू ठीक है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम है ना, सच में बहुत ज्यादा इससे हमें
2: संबल मिलता है।
3: बिल्कुल, तो हमें लगता है कोई है साथ में,
2: कोई है कि अरे मैं हूँ ना, तो चिंता क्यों करता है, चिंता क्यों करती
3: है, शब्द होते हैं
2: जी,
3: यही बहुत ज्यादा हमारे लिए मायने रखते हैं।
2: एक साथी कहते हैं, मुझे दोस्ती पर बहुत विश्वास है, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे इंसान खुद चुनता है, ये रिश्ता विश्वास, अपनापन, सम्मान और निस्वार्थ प्रेम के मजबूत नींव पर टिका होता है। जीवन के हर सुख दुख, सफलता असफलता और कठिन समय में सच्चा दोस्त हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। विविध भारती के द्वारा हमें आप जैसी सखियों के साथ कई सारे श्रोता मित्र भी मिले हैं, आप सभी को मित्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
3: और एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे जन्म से नहीं बल्कि दिल से चुना जाता है, यही रिश्ता मुश्किल वक्त में सहारा बनता है और खुशियों को दोगुना कर देता है। दोस्तों के इसी अनमोल साथ को सम्मान देने के लिए हर साल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे जन्म से नहीं बल्कि दिल से हम चुनते हैं, और ये कहते हैं कि दोस्तों के इसी अनमोल साथ को सम्मान देने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं।
2: एक साथी कहते हैं, दोस्ती जिंदगी का वो संगीत है जो पतझड़ में भी बहार का एहसास कराता है, ये कोई व्यापार नहीं बल्कि आत्मिक संबंध है, यही आपकी जिंदगी में एक भी ऐसा दोस्त है जिससे आप बिना झिझक अपने दिल की हर बात साझा कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। बहुत सुंदर बात लिखी है, इसी तरह की बातें हमारे सभी साथियों ने लिखी है।
3: तो एक गीत सुने,
2: सुनते हैं।

0: तो कितना सुंदर गीत था, और
1: बहुत
0: ये
1: प्यारा।
0: गाना सुन के हर किसी को अपने दोस्त की याद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: पर जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, भले ही वे हमारे मित्र न हो, पर एक हमारे बहुत अच्छे मार्गदर्शक होते हैं, जिनकी बदौलत हमारी जिंदगी संवर जाती है।
1: बिल्कुल। और ऐसे ही लोग होते हैं ना जो हमें प्रेरणा देते हैं कुछ अपने भी जीवन में कुछ अच्छा कर दिखाने की और लोगों की सेवा करने की, क्योंकि वो जो सेवा के जरिए अपनी एक पहचान बनाते हैं ना, वो सच में बहुत ज्यादा उनको महान हम कह सकते हैं, क्योंकि
0: यानी उनसे हमें प्रेरणा मिलती है बहुत ज्यादा।
1: वो दूसरों की सहायता के लिए अपनी लाइफ को, अपने पूरे जीवन को लगा देते हैं, समर्पित कर देते हैं।
0: जी, तो आज हम याद करेंगे कहानी पद्मश्री में डॉक्टर बुधरी
1: दाती।
0: वो
1: जी बिल्कुल।
0: डॉक्टर बुधरी दाती छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के हीरानार गांव की प्रसिद्ध समाज सेविका है। बस्तर अंचल में उन्हें लोग प्रेम और सम्मान से बड़ी दीदी या बुआ के नाम से जानते हैं। बुधरी दाती का जन्म 15 सितंबर 1966 को हीरानगर गांव में हुआ था। वे बहुत ही साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर आदिवासी परिवार में जन्मी थी।
1: बिल्कुल। और जन्म के कुछ समय बाद उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी माँ ने कठिन परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण किया। बचपन से ही उनमें पढ़ने की लगन और समाज सेवा की भावना थी। सिर्फ 15 वर्ष की आयु थी उनकी जब उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा को समर्पित करने का निर्णय ले लिया। कितनी छोटी सी उम्र होती है जब बच्चे खेलते हैं, आपस में बात करना, अपनी सखी सहेलियों में लगे होते हैं, उस समय उन्होंने समाज सेवा का निर्णय लिया।
0: यानी हम तो सोच भी नहीं सकते कि उस उम्र में इतनी इतनी सुलझी हुई सोच होगी।
1: बिल्कुल। और वर्ष 1981 में उन्होंने आध्यात्मिक दीक्षा ली और 1984 में वनवासी समाज के बीच सेवा कार्यों से वो जुड़ गई।
0: आगे चल के नागपुर में सामाजिक कार्य का उन्होंने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और वर्ष 1986 में उन्होंने बस्तर के दुर्गम जिले और जंगल के में पैदल घूम घूम कर लोगों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के प्रति जागरूकता फैलाना शुरू कर दिया। उस समय अधिकांश गांवों में सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपना अभियान जारी रखा।
1: और डॉक्टर बुधरी दाती ने 1990 में केवल 11 बालिकाओं के साथ में छात्रावास की शुरुआत की थी, जहां आज उनके प्रयासों से अनेक वनवासी बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं। उन्होंने परिवारों को समझाया कि गरीबी से बाहर निकलने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा ही है। उनके छात्रावास की कई छात्राएं आज शिक्षिका, नर्स और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
0: और डॉक्टर बुधरी दाती ने माँ शंखिनी महिला उत्थान केंद्र की स्थापना करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया, जिसमें महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, साथ ही महिलाओं को बचत, शिक्षा और आत्मविश्वास का महत्व भी समझाया।
1: और इसके अलावा उन्होंने गांव-गांव जाकर स्वच्छता का संदेश दिया, बहुत से नशा मुक्ति अभियान चलाए, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया, साथ ही महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया। बस्तर और अबूझमाड़ जैसे कठिन इलाकों में काम करना आसान नहीं था और वहां पर उन्हें कई सारी धमकियों का और विरोध का सामना भी करना पड़ा था,
0: लेकिन उन्होंने सेवा का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। वे लगभग 570 दूरस्थ गांवों तक पैदल पहुंची, वहां के लोगों का विश्वास जीता। डॉक्टर ताती अत्यंत सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीती है और उन्होंने अविवाहित रहकर समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। वो हमेशा पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में दिखाई देती है और अपनी संस्कृति पर गर्व करती है। और डॉक्टर बुधरी ताती का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता पद, धन या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि समाज के लिए किए गए निस्वार्थ कामों में होती है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो एक व्यक्ति भी हजारों लोगों के जीवन में आशा और परिवर्तन की नई रोशनी ला सकता है। लगभग 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: बिल्कुल। तो बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी इनका जीवन रहा है और हमेशा इन्होंने दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगाया है।
0: अब एक संदेश सुनते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, संगीत सुन।
2: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
3: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव

0: एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आरती
1: रूठी नहीं है बस मैसेज निकाल रहे थे, कमेंट्स निकाल रहे थे, इसलिए बोल रहे थे
0: रूठ गई
1: रूठे नहीं है, और क्योंकि बारिश के दिन है, घूमने फिरने का ऐसा मन करता है ना कि चलो इतनी जो बूंदे पड़ेंगी ना चेहरे पे, मुंह पे, हाथ पे, सब बहुत अच्छा लगेगा,
0: वो जो फुहारे आती है ना, पर उसके लिए रिमझिम रिमझिम बारिश चाहिए,
1: तेज नहीं चाहिए एकदम से भागने ही पड़े, नहीं भैया बहुत हो गया चलो,
0: फिर फिसलने का डर भी है ना,
1: बिल्कुल,
0: कि अगर तेज दौड़ पड़े बारिश में तो भाई गिर गए तो फिर तो ये बारिश जो है ना हमें बहुत दुखदायक हो जाएगी,
1: पानी भर गया अगर और अब ऐसे ही चल दिए उस पानी भरे में और कुछ पैरों के नीचे आ गया तो ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक बात है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है जब हम बारिश के दिनों में कहीं निकलते हैं तो,
0: और उसमें ना हमारे चप्पल या फुटवेयर जो हम पहनते हैं उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जो बारिश वाली जो चप्पल होती है ना उससे छींटे भी नहीं उड़ते हैं और वो इतनी लाइट होती है ना कि वो धंसती भी नहीं है जैसे कीचड़ के इसमें, तो चप्पल का बहुत हमें खास ध्यान

0: रखना चाहिए, और खासकर मुंबई की इतनी बारिश होती है यहाँ पर कि यहाँ पर हम बिना छाता लिए घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। ऐसा लग रहा है कि खुला है एकदम, मौसम अच्छा है, और पता चला 5 मिनट के बाद में झमाझम बारिश शुरू हो
1: इसलिए
0: गई।
1: बहुत ज्यादा ध्यान रखें अपना। और बारिश का केवल अगर कहा जाए तो बारिश केवल एक ऋतु नहीं है बल्कि प्रकृति का एक उत्सव है ना। एक
0: बिल्कुल।
1: उत्सव होता है कि जो धरती को नया जीवन देता है ना। जब बारिश होती है उसके बाद देखो क्या हरी, एकदम लाइट हरे, मतलब हल्के हल्के हरे रंग के जो पत्ते होते हैं, नए नए पत्ते निकल आते हैं। मतलब जो सूखी हुई डंडियां, जब सूखे हुए झाड़ जो होते हैं ना
0: जी,
1: धूप की वजह से हो जाते हैं, जब बारिश का मौसम आता है तो एकदम खिल जाते हैं जैसे।
0: हरी हरी कोपले आ जाती है,
1: बिल्कुल
0: और जैसे ना हम बाहर घूमने जब जाते हैं ना, तब देखते हैं कि ऐसा लगता है कि धरती माता ने हरी रंग की शाल ओढ़ ली है।
1: बिल्कुल, इतना अच्छा आंखों को लगता है, ऐसा दिमाग को इतना ज्यादा शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून भरा रहता है। और जैसे ही आसमान से बूंदे बरसती है ना तो सूखी धरती जो है वो भी मुस्कुराने लगती है कि चलो हम पे
0: बिल्कुल
1: अब।
0: हमारी
1: हाँ
0: तरह।
1: बिल्कुल। और पेड़ पौधे हरियाली की नई चादर ओढ़ लेते हैं, और नदियां, झरने और पहाड़ जो है वो अपनी पूरी पूरी शोभा में नजर आने लगते हैं। ऐसे मनमोहक दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
0: और मानसून का मौसम पर्यटन प्रेमियों के लिए किसी सुंदर सपने से कम नहीं होता आरती। बादलों से घिरी पहाड़ियां, धुंध में लिपटी घाटियां, वर्षा की रिमझिम फुहारे और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू मन को अद्भुत सुकून देती है। और बारिश के दिनों में प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। झरनों का उफान, जंगलों की हरियाली और खेतों की लहलाती फसलें यात्रियों को एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराती
1: सच
0: है।
1: में अब हम अगर हम अपने किसी गाड़ी से जा रहे हैं ना तो, या ट्रेन से भी जा रहे हैं, तो ये जो दृश्य होते हैं ना ऐसे मनमोहक होते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी ने जैसे चित्र उकेर दिए हो पूरी धरती पे ना।
0: बहुत सुंदर।
1: बहुत सुंदर लगता है। और यही कारण है कि मॉनसून जो पर्यटन है वो आज देश विदेश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। लोग शहरों की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ सुकून के पल बिताने निकल पड़ते हैं। लेकिन प्रकृति जितनी मोहक होती है उतनी ही संवेदनशील भी। बारिश के मौसम में पर्यटन का आनंद सभी तभी सार्थक होता है जब उसके साथ सावधानी भी जुड़ी हो।
0: और अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो ब्रेक
1: अंतराल
0: के बाद हम फिर हाजिर होते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली और हम बारिश की बातें कर रहे थे आरती,
1: बारिश की बातें कर रहे थे हम, और साथ ही तेज, जो जब बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही होती है तो भूस्खलन भी हो जाता है वहाँ पे कभी कभी ऐसी जगहों पे, जब अचानक बढ़ता जलस्तर और जो फिसलन भरे रास्ते हैं और खराब जो दृश्यता होती है वो यात्रा को जोखिमपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए पहले से ही, और अगर किसी क्षेत्र में भारी वर्षा या बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है तो यात्रा स्थगित कर देने में ही समझदारी है। यात्रा के दौरान रेनकोट, छाता, वाटरप्रूफ जूते, अतिरिक्त कपड़े, प्राथमिक उपचार की किट, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और मोबाइल के लिए वाटरप्रूफ कवर जरूर याद करके रख लें।
0: बिल्कुल रखना जरूरी है, अगर हमारा मोबाइल बंद हो गया तो हम तो फिर लोगों के संपर्क से टूट ही जाएंगे ना।
1: और जो प्राथमिक चिकित्सा किट होती ना वो तो बहुत जरूरी है।
0: और पहाड़ी क्षेत्रों में निर्धारित मार्गों पर ही चलना जरूरी है। चेतावनी बोर्डों की अनदेखी तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। नदी, झरने या तेज बहाव वाले स्थानों के अत्यधिक निकट जाने से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ क्षणों की लापरवाही जीवन भर का पछतावा बन सकती है। आज के सोशल मीडिया के युग में सुंदर तस्वीरें और रील बनाने का आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पर सावधानी में ही बहुत ज्यादा सुरक्षा है।
1: बिल्कुल,
0: तो भले ही आज रील ना बन पाए तो उसमें दुख करने की जरूरत नहीं है,
1: बाद में बना लीजिए अगली बार,
0: क्योंकि जान है तो ये

0: खूबसूरत जहान है।
1: बिल्कुल। और कई बार लोग रोमांच के नाम पर खतरनाक चट्टानों, झरनों और किनारों या उफनती हुई नदियों के पास जाकर सेल्फी और वीडियो बनाने लगते हैं। ऐसे जोखिम केवल कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सबसे खूबसूरत तस्वीर वही है जिसे सुरक्षित घर लौटकर हम मुस्कुराते हुए देख सकते हैं।
0: ये बहुत सही बात आपने कही। और अगर हम सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो जो भी वाहन हम चला रहे हैं उसकी अच्छी तरह जाँच कर लेना चाहिए। टायर है, फिर ब्रेक है, वाइपर है, हेडलाइट पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए। धीमी गति से वाहन चलाएं, पर्याप्त दूरी बनाकर रखें और जल भराव वाले रास्तों से हमें बचना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में रात के समय अनावश्यक यात्रा न करने से बचना चाहिए और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना हमें बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल। और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, इसलिए केवल स्वच्छ और ताज़ा भोजन करें जब भी कहीं आप बाहर जा रहे हैं, और पर्याप्त पानी पिए, और भीगने के बाद जल्द से जल्द सूखे कपड़े पहने। हम लोगों भी बारिश की भीगने की बातें कर रहे थे तो सूखे कपड़े आप तुरंत पहन लें। अगर छोटे बच्चे या बुजुर्ग साथ में हों तो उनकी सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पर्यटन केवल प्रकृति का आनंद लेने का माध्यम नहीं है बल्कि उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी है।
0: और सबसे ज़रूरी बात है आरती कि जब भी हम बाहर जाएं स्वच्छता का ध्यान रखें, प्लास्टिक या अन्य कचरा इधर उधर ना फैलाएं, स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण का सम्मान करें। ध्यान रहे प्रकृति हमें जितना देती है उसे सुरक्षित रखना भी हमारा दायित्व है। और बारिश का मौसम हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे सुंदर अनुभूतियाँ संतुलन में छिपी होती है। उत्साह और सावधानी, रोमांच और जिम्मेदारी, आनंद और अनुशासन के संतुलन में
1: बिल्कुल
0: होता है।
1: बहुत सही कहा आपने। और जब हम पूरे ध्यान से सावधानियों के साथ यात्रा करते हैं तो मॉनसून की हर बूंद यादों का मोती बन जाती है और हर सफर जीवन की अनमोल धरोहर बन जाता है, क्योंकि बारिश का असली आनंद तभी है जब यात्रा सुरक्षित हो, प्रकृति है वो सुरक्षित हो और मुस्कान सुरक्षित घर तक लौटे। और सावधानी रखें कि अगर सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी या चेतावनी अगर कहीं दी गई, जारी की गई है, तो उस जगह की यात्रा को आप कुछ समय के लिए टाल दीजिए और बाद में जब सही हो जाए तब आप जाइए।
0: और आप क्या करें,
1: ये गीत सुनते हैं
0: गीत।

0: हाँ सुनाली, बारिश के दिनों की जो हम बातें कर रहे हैं ना, तो सखियां सखा जितने भी सब लोग हैं ना, सभी लोग अपने अपने अनुभव बांट रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि अभी कल ही मेरी दो छोटी बहनें अपनी सकुशल अमरनाथ यात्रा से आई, मैं स्वास्थ्य कारणों से जा नहीं पाई, लेकिन उनकी काफी कठिन और मुश्किल भरी यात्रा थी। बारिश के कारण कई सारी रुकावटें भी आई, लेकिन सावधानी से की गई उनकी यात्रा आनंददायक और यादगार रही। क्या बात है,
0: बिल्कुल यादगार बन जाती है यात्रा जब हम सावधानी रखते हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, तो कोई जब परेशानी नहीं होती है तो फिर हम उसका लाभ भी उठा पाते हैं अच्छे से। हमारे एक साथी हैं जो कहते हैं कि कल्याण से पुणे जाते समय ये नज़ारा बहुत देखने को मिलता है कि बारिश के दिनों में सभी के हाथ में मोबाइल के कैमरे चमकने लगते हैं, क्योंकि बीच रास्ते में घुमावदार रास्ते से ट्रेन का जाना और हरे भरे पहाड़ियाँ, बादल और कहीं कहीं पहाड़ों से पानी गिरते हुए देखना बड़ा ही सुखद और मनोरम होता है। चलिए आप किसी चीज में जा रहे हैं, सिर्फ ट्रेन में जा रहे हैं तो अच्छी बात है, चलिए आप उसमें से बना सकते हैं वीडियो, लेकिन पैदल जाते समय बहुत ध्यान रखें कि मोबाइल में ही आपका ध्यान ना रहे, सड़क पे भी ध्यान रखिए, जहाँ पे आप चल रहे हैं उसका भी ध्यान रखिए कि आप कोई पहाड़ी पे तो नहीं है। इस तरह से अपनी सावधानी के साथ में आप करेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि मानसून के दौरान यात्रा करने के कई अनूठे फायदे और अनुभव है। प्राकृतिक सुंदरता का चरम इस मौसम में पहाड़, जंगल और घाटियां जीवंत हो उठती है। झरने अपने पूरे शबाब पर होते हैं। धुंध और बादलों का खेल दृश्यों को जादुई बना देता है। सस्ता और किफायती सफर, मानसून को पर्यटन का ऑफ सीजन माना जाता है। इस दौरान होटलों, फ्लाइट्स और स्थानीय यात्रा पैकेजों पर भी बहुत सारी छूट होती है। और ये कहते हैं कि इन दिनों मौसम बहुत सुंदर होता है।
0: ये तो है। और एक हमारे साथी हैं जो अभी वहीं पे हैं, मतलब अभी घूमने गए हुए हैं, तो बारिश में पर्यटन का आनंद और सावधानियां के बारे में बता रहे हैं कि इस बारिश के मौसम में ही दर्शन करने के लिए हम आए हुए हैं जम्मू कश्मीर। इस समय बारिश और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड भी हो रही, यानी भूस्खलन भी हो रहा है, और सावधानी पूर्वक हम इसलिए होटल में रुके हुए हैं और मौसम ठीक होने पर ही हम दर्शन करने जाएंगे। ये वर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन, मतलब वो दर्शन करने गए हुए हैं तो वो भी होटल में रुके हुए हैं, तो आप तब तक सावधानी पूर्वक रुके रहिए जब तक मौसम अच्छी तरह से बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता और रास्ता साफ नहीं हो जाता।
1: वैसे हमारे अन्य साथियों ने भी इसी विषय में बातें लिखी हैं। एक साथी लिखते हैं कि बारिश के मौसम में पर्यटन का आनंद प्राकृतिक हरियाली, ठंडी हवा और बहते झरनों का अनुभव कराता है, लेकिन इसके लिए वाटरप्रूफ पैकिंग, सुरक्षित जगहों का चुनाव, खान पान में सावधानी बेहद जरूरी है। बारिश में पर्यटन का आनंद, मनमोहक हरियाली, पेड़ पौधे, बाग बगीचे खिल उठते हैं जिससे चारों तरफ ताजगी रहती है, शांत वातावरण, भीड़ भाड़ कम होने से सुकून और शांति मिलती है। और ऐतिहासिक जगह जैसे मांडू है, ओरछा, उदयपुर, ऐसे ऐतिहासिक स्थान बारिश में बेहद खूबसूरत दिखते हैं। जरूरी सावधानियां हमें छाता, रेनकोट, वाटरप्रूफ बैग हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही कहते हैं कि अच्छे पकड़ वाले स्किड जूते पहने, स्किड एंटी स्किड जूते पहने, और खान पान हमेशा ताजा भोजन खाएं, साफ या उबला पानी पिए। इसी तरह की बातें
0: एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि बता रही हैं कि मेरे पति की पोस्टिंग बारिश के मौसम में बांध यानी कि डैम पर होती है। करीब 3-4 साल पहले की बात है, उस समय बांध के आसपास ज्यादा बारिश नहीं हो रही थी। कुछ परिवार वहां पिकनिक मनाने आए हुए थे, मौके पर तैनात गार्ड ने उन्हें चेतावनी भी दी कि वो नदी या पानी के बीच में ना जाएं क्योंकि अचानक पानी बढ़ सकता है, लेकिन वो लोग नहीं माने और बीच में चले गए। तभी ऊपरी क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण बांध का पानी बहुत तेजी से बढ़ने लगा और उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। इस हादसे में 4 लोग बह गए। बहुत बड़ी ये तो दुर्घटना हो गई, इन्होंने बताया कि मतलब बार बार चेतावनी होने के बाद भी उन्होंने नहीं सुना।
1: ये बहुत लोग गलत करते हैं कि हमें अपनी जान से ज्यादा किसी चीज की चिंता नहीं करना चाहिए, उसे हमें बहुत सावधानी से

0: वक्त उस सिचुएशन को बहुत सावधानी से हमें बरतना चाहिए।
1: हम क्योंकि हमारे पास हम अपनी जिम्मेदारी तो होती है, साथ में परिवार की या जो भी लोग हमारे साथ में गए, इतने सारे लोग गए हुए हैं, तो हमें इस चीज को समझना चाहिए, जिम्मेदारी को। और सरकार हमारे भले के लिए ही कहती है, वो चेतावनी जारी करती है कि हम अपनी जान को बचा सके, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये सब कहा जाता है, तो उसका पालन जरूर करिए।
0: और सबसे ज़रूरी बात है कि बारिश में थूकना वगैरह ये सब गंदी आदतों को हमें भूलना चाहिए। वैसे तो कभी भी थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो आदत है ना, ये हमें बहुत सारी बीमारियों से घेर सकती है। और अब क्या किया जाए आरती, एक गाना सुन
1: गीत सुन लेते हैं
0: सुनते हैं गीत।

0: अब हम बात करने जा रहे हैं एक बुरी आदत के बारे में, है ना
1: एक
0: सोनाली?
1: हमारी सखी ने लिखा है आरती कि जिस जगह को हम अपनी नहीं समझते उसे गंदा करना आसान लगता है, लेकिन शहर भी आखिर हमारा ही घर है,
0: बिल्कुल.
1: ये विचार नहीं रखते हैं। मैं किसी रिश्तेदार के घर गई थी, एक 4-5 साल के बच्चे ने दीवार पर थूका। मैंने
0: ओ
1: पलट कर देखा तो बोला, चाचा भी तो ऐसा ही करते हैं। हमने तो कुछ कहा नहीं, पर मन में विचार आया कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। बच्चे जैसा देखते हैं वैसा
0: वो
1: ही
0: तो है,
1: करते हैं।
0: बच्चे वही
1: बहुत
0: सीखते
1: सही
0: हैं
1: बात
0: जो,
1: लिखी है
0: बिल्कुल
1: कि बच्चों के सामने हम जैसा करते हैं बच्चे वैसा ही अपनाते हैं। तो हमारी ये कोशिश हो कि थूकना तो है ही नहीं, बिल्कुल जो पीकदान बनी हुई थी उसी में थूकना है, और अपने घर में जो बेसिन वगैरह होते हैं उसे भी साफ रखना बहुत
0: बिल्कुल.
1: जरूरी है। थूकने के बाद में उसमें भी पानी से अच्छे से धोना बहुत जरूरी है।
0: और हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि बिल्कुल सही कहा आपने, हम विदेशों में एहतियात बरतते हैं कि हम गलती ना करें, पर अपने देश में गलती को बार बार करते हैं. मैंने किसी से सुना कि खाड़ी देशों में अगर आप सड़कों पर जहाँ तहाँ थूकते हुए पाए गए तो उनके पास स्प्रे जैसी कुछ चीज़ होती है जिसे वो आपके मुँह में स्प्रे कर देते हैं, जिससे आपके मुँह में सूजन हो जाती है और आपका मुँह सूज जाता है, यही सज़ा दी जाती है. तो ये इस तरीके की चीज़ें अब हमें तो नहीं पता है, खैर ये बता रही हैं इस तरह की चीज़. लेकिन ये जो मैसेज है कि भाई थूकना बहुत गलत है, तो
1: जी
0: वो तो आप कहीं भी मत करिए, क्योंकि जो सड़क भी है इसके भी ये भी हमारी ही है, समझ, ये
1: जी
0: सरकार की नहीं, ये जो हम टैक्स देते हैं उससे उसको ठीक किया जाता है. तो ये इस तरीके की चीज़ों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से हम अपने घर को साफ रखते हैं वैसे ही
1: वैसे
0: हमें
1: ही अपने घर के
0: सड़क को,
1: बाहर भी स्वच्छता का
0: बिल्कुल.
1: ध्यान रखना चाहिए। एक हमारे साथी ने लिखा है कि इंदौर शहर में कोई व्यक्ति थूकते पकड़ा जाता है तो उसे 500 रुपए का जुर्माना लग जाता है।
0: अरे
1: तो ये तो बहुत सही है
0: इसी
1: इस।
0: तरीके की जब जब इस तरह की जब सज़ा मिलती है या इस तरह की चीज़ें जब निर्णय दिए जाते हैं ना कि आपको ऐसे देना है, पैसे देने, जुर्माना देना है, तब हम उस चीज़ को थोड़ा सा सोच के करते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे हमें पैसे देने पड़ जाएंगे इसलिए ना करें. तो ऐसे इस तरह से होना चाहिए जिससे कि स्वच्छता बनी रहे.
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि पान मसाला और गुटखा खाने की लत के कारण लोग बार बार कहीं भी थूकने पर मजबूर हो जाते हैं, और मानसिकता, सफाई के प्रति लापरवाही और सामाजिक आचार संहिता का अभाव इस आदत को और भी बढ़ावा देता है।
0: एक साथ ही लिखते हैं कि अपने अपने थूकने वाले लोग ये नहीं देखते कि उनके पीछे और भी लोग

0: आ रहे हैं, और ये बहुत ही गंदी आदत है, इसके लिए इस चीज़ को नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम ऐसे बस किसी ऑटो में बैठे हैं या बस में बैठे हैं तो हम मुंह निकाला थूक दिया, क्योंकि नीचे और जो चल रही सड़क पे चल रहे हैं लोग उन पे भी कभी कभी उनके कपड़ों पे गिर जाता है कभी कभी, इस तरह तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए।
1: कई बार जब हम ऑटो रिक्शा में बैठते हैं तब भी ऑटो वाले जो भैया होते हैं वो हालांकि दिन भर वो काम करते रहते हैं पर जरूरी नहीं वो चलाते चलाते ऐसे थूक देते हैं, तेज हवा आई तो उसका छींटा जो है पीछे वाले लोगों पर आ सकता है।
0: बिल्कुल।
1: और एक साथी ने लिखा है कि खुले में थूकने से टीबी और अन्य सांस संबंधी संक्रमण हवा और सतह के जरिए तेजी से फैलते हैं, गंदगी से गलियां दीवारें और सार्वजनिक स्थल बदरंग और गंदे हो जाते हैं जो शहर की खूबसूरती को बिगाड़ते हैं और साथ ही खुद का स्वास्थ्य भी खराब होता है क्योंकि हवा से जो जीवाणु है कीटाणु है वो हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं और हम भी बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए हमें थूकने की आदत को तो अलविदा
0: बिल्कुल
1: कहना ही
0: बिल्कुल।
1: चाहिए।
0: और एक साथी जो लिखते हैं कि एक सभ्य इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसकी आदतों से होती है, जब कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे कहीं भी थूक देता है तो उसे देखकर मन में खिन्नता होना स्वाभाविक है, तो ऐसी आदतें ना केवल वातावरण को अस्वच्छ बनाती हैं बल्कि कई बीमारियाँ फैलने का भी कारण बनती हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए हमें।
1: एक साथी ने लिखा है कि मेरी शॉप के आगे जब लोग थूकते हैं तो मैंने साफ शब्दों में मना करता हूँ, ऐसी जगह मक्खी मच्छर होते हैं जो बीमारी का कारण बनता है, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक कानूनी अपराध है। और इन्होंने कहा है कि इस तरह से ये दंड जो है ये तो लोगों को डराने के लिए एक आदत लगाने के लिए दंड है पर हमें खुद से ही इन आदतों को अपनाना चाहिए कि इसके साथ सामने वाले के साथ साथ हमारा भी इसमें फायदा ही होता है।
0: बिल्कुल। एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि एक गुजरात के बड़ौदा जो बस अड्डा है वहाँ पर पान मसाला तंबाकू पाए जाने पर जुर्माना लगता है, और मेरे सामने एक बार बस में मैं जब बस अड्डे पर खड़ा था तो एक भाई ने तंबाकू की पूड़ी निकाली दोनों हाथों से उसको बना रहे थे, तो सिक्योरिटी वाले आए और 200 रुपये का दंड किया का जुर्माना भी लगाया, और तंबाकू जो बना रहे थे वो पूड़ी उसको भी ले गए। और स्वच्छता का अभियान और स्वस्थ रहने का अभियान चलाया जाता है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो करते रहना चाहिए जिससे कि स्वच्छता बनी रहे।
1: और अब गीत सुन ले।
0: गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ सोनाली, अब हम बात करेंगे कुछ उपयोगी टिप्स के बारे में, है ना। तो हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि रसोई में काम करते समय तेल की छींटे उंगलियों और हाथों में लग जाते हैं, जैसे कि अगर आपको लग जाए तो आप पहले ठंडे पानी के नीचे रखें अपने हाथ को, और वहाँ पर मलाई से कुछ दही लगा लीजिए, कुछ ठंडी चीज़ लगा लीजिए, ये जलन को भी शांत कर देता है और फफोले भी नहीं पड़ते हैं। और अधिक जल जाए तब तो फिर मरहम और डॉक्टर, पहले तो डॉक्टर से ही सलाह लेनी पड़ती है। और हल्की फुल्की जलने पर ठंडा दूध भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो कभी कभी तवे पर उंगलियाँ सट जाती हैं या पकौड़ियाँ तलते समय उंगलियाँ तेल में टच कर जाती हैं, तो ऐसे में आप ठंडा दूध या थोड़ी देर में पानी में रखने पर भी जलन खत्म हो जाएगी।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि किचन में जो हम हाथ में अगर कट जाता है तो उसमें तुरंत ही सरसों का तेल लगा लिया जाए तो खून रुक जाता है और एंटीसेप्टिक का काम करता है, और उसी जगह पर चीनी लगा ले तो खून तुरंत रुक जाता है। ये काम मैंने बच्चों पर खूब आजमाया है, बच्चे अक्सर गिर जाते थे, होंठ कट जाता था तो चीनी लगा देती थी, जलने पर तो तुरंत उस जगह पर ठंडा पानी या बर्फ़ या टूथपेस्ट लगाना चाहिए, हो सके तो अगर ज़्यादा चोट है तो डॉक्टर के पास
0: बिल्कुल
1: जाना ज़रूरी है।
0: ज़्यादा चोट है तो आप अपना इलाज बिल्कुल भी ना करें,
1: बिल्कुल
0: सीधे
1: तुरंत ही
0: डॉक्टर
1: डॉक्टर
0: के
1: के
0: पास
1: पास
0: जाएं,
1: जी।
0: और छोटी मोटी चीज़ों में ही है आप इसको अपनाएं। और एक हमारे साथी जो लिखती हैं कि और कुछ अगर पास में नहीं है तो आप बोरो प्लस भी लगा सकते हैं, वैसे आप कोई चीज़ तरह की कोई चीज़ आप लगा सकते हैं, और साथ ही आप कोई घरेलू जैसे कि आलू वगैरह हैं इनको
1: जी
0: काट के लगा सकते हैं।
1: एक ने लिखा है कि अगर उंगली जल गई है तो हल्की हल्की सिकाई करके उसे ठीक कर सकते हैं, पानी में उंगली डाल दी तो फफोला पड़ना अनिवार्य है, किंतु यदि जले हुए त्वचा का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो उचित उपचार की आवश्यकता है। और इन्होंने वही कहा है कि बर्फ़ से सिकाई करना है, उसके बाद में बहते हुए पानी के नीचे हाथ धोना है, उसके बाद में सबसे पहले है कि उसको धोना ज़रूरी है कि उसमें जो कुछ कीटाणु अगर लग गए हैं तो उसे बह जाने देना है, और उसके बाद में साफ़ पट्टी चिपका ले। इसके बाद में इसी तरह का उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ठंडे पानी में हाथ डालना चाहिए अगर जल गया है तो, सीधी बर्फ़ ना लगाए, और घाव सूजने से पहले जली हुई जगह से अंगूठी या तंग कपड़े या धीरे से हटा दे। और उन्होंने कहा कि छाले जो आ जाते हैं ना उंगलियों में पड़ जाते हैं छाले, तो उन्हें फोड़ना नहीं है छालों को, क्योंकि उससे बैक्टीरिया का संक्रमण बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल, सबसे अच्छा उपाय है कि आप उसको बर्फ के पानी में, ठंडे ठंडे पानी में अपने हाथ को थोड़ी देर के लिए रखिए बहते पानी में, तो उससे रहता है ना कि ठंडक पड़ती है और जलन जो है वो शांत हो जाती है। लेकिन अगर अपनी तरफ से कोई अगर बहुत ज़्यादा जल गया तो अपनी तरफ से कुछ उसमें मत लगाइए, आप सीधे डॉक्टर को दिखाइए तो वो उसका बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं।
1: और आप क्या करें,
0: ये गीत सुनते हैं।
1: सुनते हैं गीत।
2: आयले चुनमुन चुनमुन

0: तो आरती, सखियों के हमारे श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा। सभी साथियों को हम शुक्रिया कहते हैं और लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुति

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए हम अपने श्रोताओं से करते हैं बातें और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये कार्यक्रम श्रोताओं को विविध भारती से और विविध भारती को श्रोताओं से जोड़ने वाला एक अनूठा कार्यक्रम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सर हम बोल रहे हैं अतीक खान बोल रहे हैं। सर
0: कहाँ से?
1: सर गांव का नाम है बड़ोदिया बल्लर और जिला लगता है सागर।
0: सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं?
1: जी सर।
0: तो सागर से कितनी दूर हुआ आपका गांव?
1: सर गांव है 30 किलोमीटर का, दूर दूरी पे है।
0: अच्छा, और बताइए बारिश वारिश कैसी हो रही भाई?
1: सर अभी तो सर बारिश नहीं हुई सर, एक हफ्ता हुआ जब हुई थी सर बारिश।
0: अपने गाँव में खेती कहाँ होते
1: है? सर खेती अपने यहाँ होती है थोड़ा इनकी।
0: नदी अद्दी कोई?
1: नदी नहीं लगी यहाँ पे सर।
0: तलाव?
1: छोटी नदी है, छोटी बहुत नदी है।
0: तलाव बह थे कोई?
1: नहीं सर, तलाव है तो सर मैं अपने गांव में नहीं, सर दूर पे तलाव है यहाँ से।
0: हो बाकी का हालचाल?
1: सर सब बढ़िया है, आप लोग की दुआएं सर।
0: अच्छा, आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
1: सर आज गाना सुनना है आज की मूवी का।
0: कौन सा गाना?
1: नगर के सामने जिगर के पास।
0: क्या बात है, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जय माता दी।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमहल बुगला।
0: अच्छा जी
1: सर, आपको एक बार मैं गाना राजस्थानी सुनाया था सर, आपको याद हो तो।
0: याद तो नहीं है भैया, आज क्या गाना सुनाने वाले हैं बताइए
1: जी। मैं आज सुनाता हूँ

0: क्या बात है भाई, ये तो बहुत ही मशहूर भजन है।
1: जी, ये मैं भजन सुनता रहता हूँ और बहुत अच्छा लगता है, और मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर, विविध भारती बम्बई मेरा फोन लग गया सर।
0: जी मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरी आपसे बात हो रही है। और मुझे ये बताइए कि आप विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम बहुत ज्यादा सुनते हैं और उसमें से कौन से कार्यक्रम बहुत पसंद है?
1: जी सर, मैं विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता हूँ, क्योंकि हम दिव्यांग आदमी है, तो क्योंकि रेडियो से अलावा तो हमारे वो कुछ सहारा नहीं है, तो इसलिए हम बहुत सारे कार्यक्रम आपके सुनते रहते हैं। आज के फनकार हो गए, कुछ बातें कुछ गीत हो गए, अभी आपने बदलाव कर दिया गीत माला, तो ये आप सभी सुनते हैं। और जो SMS वाला कार्यक्रम पहले आता था वो भी सुनते थे। हवा मेलो नाटक तरंग जो 3:30 बजे शनिवार को आता है वो भी मैं सुनता हूँ।
0: बहुत ही बढ़िया, आप तो सभी कार्यक्रम सुनते हैं।
1: मेरे को ये खुशी होती है कि जिसका भी विविध भारती बम्बई में फोन लग जाता है ना सर, कि देश के कोने कोने में उनकी आवाज पहुंचती है। देश का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ विविध भारती में बम्बई में अगर जिसका फोन लगेगा तो वहाँ आवाज नहीं पहुंचेगी सर।
0: सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताइए कि आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी सर, आज फिल्म का नाम रहेगा कुसूर और उसमें गाने के बोल है कल रात हो गई थी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विविध भारती में फोन किया और अपनी ये पसंद हमें बताई। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर जी, मेरा प्यार भरा सब प्रेम नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ सर जी।
0: अरे भाई, ये तो दतरेंगी से नारायण प्रसाद वर्मा, ये वही हैं जिनकी फरमाइश आती है?
1: नहीं सर जी, वो अलग है सर जी, मेरा जिला बेमेतरा है सर जी।
0: लेकिन नाम एक ही है?
1: नहीं नहीं सर, उस नाम से दतरेंगी में नहीं है सर जी।
0: अच्छा, तो बताइए क्या हाल चाल है छत्तीसगढ़ के?
1: हाँ सर जी, हम लोग अब भाई सभी अच्छे हैं और हमारे यहाँ तो बारिश अच्छी हुई है सर जी, और मैं किसान आदमी हूँ।
0: अच्छा, तो अभी क्या गतिविधियाँ?
1: हाँ, अभी धान का रोपाई का काम जारी है।
0: धान का कटोरा है छत्तीसगढ़
1: जी सर, धान का कटोरा है हमारे छत्तीसगढ़।
0: किस किस तरह के चावल उगाते हैं आप?
1: हमारे यहाँ मोटा चावल भी लेते हैं सर जी, और पतला चावल, दोनों प्रकार का चावल लेते हैं सर जी, और कुछ अपना सुगंधित चावल भी लेते हैं सर जी। हमारे यहाँ
0: बासमती की बहुत सारी किस्में होती हैं।
1: हाँ सर जी।
0: क्या बात है, आज बताइए कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: फिल्म रंग का गाना सुना दीजिए सर जी, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ सर जी कि हम लोग विविध भारती जब तक नहीं सुनते हमको चैन आता ही नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ सर जी।
0: तो चलिए भाई, आपको चैन आए इसलिए रंग फिल्म का गीत आप तक पहुँच रहा है।

0: हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से बात कर रहा हूँ सर।
0: बताइए जी, क्या हालचाल है
1: सर? ठीक है सर, आप बताइए कैसे हो सर?
0: एकदम अच्छे हैं जी, और आप सभी श्रोताओं से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और इन दिनों में क्या चल रहा है आपके जीवन में?
1: सर बस अभी काम पे हैं, ड्यूटी पे कॉल। अच्छा। रहे थे, कॉल भी लग गई और काफी टाइम के बाद कॉल लगी हमारी आज। तो आपके शो सुनते हैं सभी
0: जी,
1: तो संडे को आते हो आप शाम को हवा महल में, तो वो सुनते हैं ज्यादातर।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सारे कार्यक्रम सुनते हैं। और देखिए कितने सारे शो

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गंगाधर सावनकर कुंडलवाड़ी नांदेड़ से बात कर रहा हूं सर आपसे।
0: जी बताइए, नांदेड़ के क्या हालचाल है भाई?
1: नांदेड़ में तो सर अभी बारिश चल रहा है।
0: अच्छा, बारिश अच्छी चल रही है।
1: हाँ जी।
0: और आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: कामकाज तो सर अभी मैं रिटायरमेंट हूँ।
0: अच्छा, तो रिटायर जिंदगी के मजे ले रहे हैं।
1: हाँ सर, एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ फिर भी।
0: क्या बात है, यानी रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।
1: बिल्कुल सही सर।
0: बताइए कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी में अपने आप को फिट रखने के लिए क्या क्या करते हैं आप?
1: रिटायरमेंट के बाद बोर हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि क्या करना है अपने सेहत के वास्ते, फिर अपने को दूसरी नौकरी ढूंढ ली सर मैं।
0: बहुत ही बढ़िया है। तो कितने घंटे काम करते हैं दिन में?
1: अब दिन में 8 घंटे करते हैं सर।
0: बढ़िया। और छुट्टी के दिन क्या दिनचर्या होती है?
1: छुट्टी दिन के सर अपना रेडियो साथ रहता है, गार्डन वगैरह घूम के आते हैं सर।
0: बहुत ही बढ़िया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: आज बगावत फिल्म का है सर, नागंता रूप है तेरा।
0: वाह, चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: डोर समझ रहा है नाता, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डसले तो क्या कहना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार सर,
0: नमस्कार, बताइए कौन कहाँ से बोल रहे हैं।
1: मैं कश्मीर सोना मरग से अपनी मिशोता लतीफ अहमद रैना।
0: लतीफ भाई कैसे हैं आप।
1: बहुत अच्छा है।
0: सोनमर्ग में मौसम कैसा है इस वक्त।
1: आज यहाँ पे लगभग धूप है, बहुत 6 दिन से बहुत बारिश आया था यहाँ पे, बहुत नुकसान भी हुआ।
0: अच्छा, और अब बारिश नहीं है, अब लगातार धूप खिली है।
1: हाँ आज धूप भी है।
0: कश्मीर में बारिश का मौसम किन महीनों में होता है।
1: लगभग ये हर महीने होता है।
0: हाँ, हर महीने होता है,
1: बीच में होते हैं।
0: सोनमर्ग तो बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई।
1: गुलमर्ग, सोनामर्ग और पहलगाम वगैरह सभी ये पर्यटक के लिए बहुत अच्छा रहता है।
0: और सोनमर्ग से ऊपर की तरफ सड़क कहाँ की तरफ जाती है।
1: वो जाती है लेह लद्दाख की।
0: जी जी, आप गए हैं उस तरफ।
1: हाँ मैं उस तरफ गया हूँ, लेह लद्दाख, कारगिल, द्रास।
0: अच्छा, लेह लद्दाख जाने के लिए कौन कौन सी

0: सावधानियां रखने की जरूरत है? फिटनेस किस तरह की होनी चाहिए?
1: वहाँ पे ये तो ट्रक वगैरह में जाते हैं, वो छोटे गाड़ी में भी जाते हैं, लगभग एक दिन और एक रात लग जाता है लेह में जाने में।
0: जी, और ऊंचाई बढ़ती है तो सांस की तकलीफ होती है?
1: हाँ हाँ, लगभग हार्ट में दर्द होता है ऐसा लगता है।
0: जी, लेकिन वहाँ घूमने लायक इलाके हैं।
1: हाँ सर
0: जी, आज किस गाने की फरमाइश करने वाले हैं आप लतीफ जी?
1: और हमें सुने कुदरत फिल्म का तूने और रंगी इलाके सा जादू किया, पिया पिया बोलो मत वाला जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, कैसे हैं यूनुस भाई? मैं जिला भागलपुर बिहार कहलगांव से सुजीत राय, और मैं बताऊं सर, मैं बचपन से दिव्यांग हूं और मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है।
0: ओ, और आपने अपनी पढ़ाई लिखाई कहां से की है भाई?
1: सर, मुझे सबसे ज्यादा म्यूजिक में रुचि है सर, तो मैं सबसे ज्यादा म्यूजिक में ही लगाव रखता हूँ।
0: आपने कहाँ से सीखा?
1: सर, मैं कहलगांव में ही, एक मार्स में ही संगीत विद्यालय है, मैं वहाँ से ही सीखा था।
0: अच्छा, तो कोई डिग्रियां या कोई सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं आपने?
1: जी सर, मैं सेकेंड ईयर का विद्यार्थी हूँ संगीत में।
0: और ये जो संगीत की शिक्षा हो रही है, ये गायन की हो रही है या वादन की हो रही है?
1: सर जी, मैं गायन सीखता हूँ।
0: अरे वाह वाह, क्या बात है। तो बताइए, हमारे लिए क्या सुनवाने वाले हैं आज आप?
1: सर, मैं तो दस्तक फिल्म का एक गीत सुना हूँ, और आवाज लता दीदी की है, और गाने के बोल हैं बैया ना धरो बलमा।

0: क्या बात है, इससे मिलती जुलती कोई शास्त्रीय बंदिश याद है आपको?
1: जी सर, एक वो गाना है ना, राग देश, मुझे याद है, अगर कहेंगे तो सर मैं थोड़ा सा गुनगुना सकता हूँ।
0: जरूर।
1: ये राग देश है। बादल रे उमड़ घुमड़ घन बरसे, बिजली चमक जिया डरात बादल रे। ये सब सीखा है।
0: वाह वाह, शानदार। तो सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी सर।
0: कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर हम बांधवगढ़ डिस्ट्रिक्ट उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: जी बोलिए
1: पृथ्वीराज
0: बोलिए।
1: यादव।
0: पृथ्वीराज यादव जी, मुझे ये बताइए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क से बोल रहे हैं आप?
1: जी जी, इसका एक एरिया है सर, अपना गांव न्यूसी लगता है।
0: अच्छा, ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दायरे में कितने गांव आते हैं?
1: सर गांव तो बहुत सारे आते हैं, 105 के करीब।
0: अरे बाप रे। और ये बारिश के दिनों में तो बांधवगढ़ में

0: पर्यटकों का प्रवेश बंद हो जाता है ना?
1: जी, 1 जुलाई से 1 अक्टूबर के लिए बंद होता है सर।
0: अच्छा, इस बीच में आप लोग तो चूंकि गांव में ही हैं और उस दायरे के अंदर हैं, तो क्या आपको साइटिंग्स होती हैं? आपको दिखते हैं टाइगर्स?
1: जी, टाइगर तो हमेशा 12 महीने दिखते हैं सर, क्योंकि अपना गांव एकदम कोर से सटा हुआ है जंगल से, तो उनके दर्शन तो हमें सुबह शाम ही हो जाते हैं।
0: आप लोग किस तरह की सावधानियां रखते हैं ताकि कोई घटना ना हो?
1: सर, देर रात जैसे टाइम से हम जब लोग जाते हैं तो दिन में जाते हैं, शाम के या सुबह टाइम ज्यादा जंगल में नहीं जाते सर।
0: मान लीजिए कि हमें बांधवगढ़ नेशनल पार्क जाना हो, हमें या हमारे किसी साथी को, तो आप तो उस इलाके के हैं, तो हमें ये बताइए कि कौन सा समय सबसे अच्छा होता है जब साइटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं?
1: सर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी।
0: नवम्बर से फरवरी, और दिन का कौन सा वक्त?
1: दिन का वक्त वही सर, 9 से 12।
0: अच्छा, 9 से 12 में साइटिंग ज्यादा क्यों होती है भाई?
1: सर, उस समय सब अपने विचरण के लिए निकलते हैं ना सर।
0: अच्छा, आपको सबसे अच्छा जो दृश्य देखने को मिला वो क्या मिला था?
1: सर, यहाँ तो सबसे अच्छा दस बांधवगढ़ का एरिया है सर, उसके अलावा एक झरना प्रपात है हमारे गांव के बाजू में, वो भी बहुत अच्छा है सर, और हमारे यहाँ के मोर बहुत अच्छे हैं सर।
0: मोर? अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, यानी आप बिल्कुल प्रकृति की गोद में रह रहे हैं।
1: जी, प्रकृति का संदार है सर यहाँ।
0: और आपका काम क्या है भाई?
1: सर, हमारा ऑनलाइन डिलीवरी वाला काम करते हैं सर।
0: उस इलाके में?
1: जी जी।
0: तो मोटर बाइक से घूमते हैं?
1: जी जी जी।
0: अच्छा, विविध भारती की आपके जीवन में क्या जगह है?
1: विविध भारती हमारे जीवन में बहुत अच्छा है सर, हमें सूचना, ज्ञान, मनोरंजन जो कुछ भी मिला बचपन से लेके अभी तक, हमारे यहाँ आकाशवाणी केंद्र शहडोल है सर, वहाँ से सुनाई देता है आपका आकाशवाणी, तो यहीं से हम पले बढ़े हैं, और सबसे अच्छा रेडियो ही है, रेडियो से अच्छा आज तक हमारे यहाँ कोई प्रसारण का केंद्र नहीं है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बात आपने बोली। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं भाई आप?
1: सर, हम आज गाना सुनना चाहते हैं, आ अब लौट चले। ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूँ।
0: चलिए, पूरी करते हैं आपकी फरमाइश, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम यानुस भाई।
0: जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं?
1: हिलाल अहमद श्रीनगर से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं भाई आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो सर?
0: जी हम अच्छे हैं। मुझे ये बताएं आप क्या काम करते हैं जनाब?
1: हम यही शाल काम करते हैं।
0: ओके, तो मुझे फिर ये बताइए कि एक अच्छे पश्मीने की पहचान कैसे की जा सकती है?
1: अच्छी पश्मीने की पहचान, इसकी क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए, तो उसमें तो बहुत दाम मिलता है, बाहर कंट्री में भी वो जाते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं इस पे, तो अच्छी तरीके से बनाते हैं, फिर हमें बहुत कीमत मिलता है।
0: बहुत शुक्रिया। मुझे एक और बात बताइए कि ये जो पश्मीना है, कुछ बहुत भारी पश्मीने होते हैं और कुछ कम सर्दियों के लिए होते हैं, तो जो टूरिस्ट वहाँ आते हैं वो किस तरह से पहचाने कि उनकी जरूरत का पश्मीना कौन सा है?
1: टूरिस्ट यहाँ आते सर, वो भी इसे खरीदे, यहाँ उनको भी वो बहुत पसंद है, लेकिन इसमें तो ईमानदारी की बात है। दरअसल जो भी ये बेचेगा तो वो सही होना चाहिए।
0: जी, और एक अच्छा पश्मीना शॉल बनाने में आपको कितना वक्त लगता है?
1: सर इसमें तो बहुत डिजाइन है आते हैं, इसमें मतलब जो इस पर वो नक्शा होता है ना, वो बहुत किस्म के होते हैं, उसमें मुख्तलिफ बड़े वाले छोटे वाले पुरमतन के आते हैं, उसमें तो बहुत टाइम लगता है। जो पुरमतन होता है ना, उसमें तकरीबन 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने भी लगते हैं, तो जो उसके छोटे साइज वाले हैं उसमें 1 महीना भी लगता है, तो इसी तरीके से हम बनाते हैं।
0: जी शुक्रिया, इतनी अच्छी बातें आपने हम बताई। और अब बताइए आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: कुमार सानू की आवाज में, फिल्म का नाम है साथी, जिंदगी की तलाश में है, मौत के कितने पास आ गए।
0: वाह क्या बात है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं
1: जी? उदयलाल टेलर बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से?
1: की नगरी जयपुर, राजस्थान से।
0: क्या बात है, क्या मौसम है वहाँ?
1: मौसम सुहाना है सर।
0: बारिश बारिश
1: है? बारिश हल्की हल्की हो रही है, तेज भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, औसत मिनिमम बारिश हो रही है।
0: क्या बात है, और बारिश के मौसम के मजे क्या हैं?
1: सर बहुत ही आनंद आता है बारिश का मौसम, सबसे मुझे तो प्यारा लगता है।
0: तो झीलों की नगरी के लोग बारिश के मौसम में कहाँ जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए?
1: उदयपुर में तो बहुत सी जगह है पिकनिक मनाने के लिए। संडे रात तो बहुत भीड़ थी सभी जगह पर, आज पूरा न्यूज़पेपर उसी से भरा हुआ है। इतनी भीड़ हुई थी सभी जगह पर, पिकनिक मनाने लोग गए थे।
0: अच्छा, बहुत ही खुशी की बात है। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: जी सर, पुरानी फिल्म में राज कपूर और नरगिस दत्त की श्री 420 गीत है, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल,
0: क्या
1: मालूम नहीं कहाँ है मंजिल।
0: ये बिल्कुल बारिश का आपने गाना चुन लिया है।
1: छतरी के नीचे दोनों भीगते हुए गाना गाते हैं।
0: तो बातों का सिलसिला रोकते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से, और हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 0222867 0288 यानी 02226702888, दूसरा टेलीफोन नंबर 0224002466 यानी 02240024662। आपको बता दें कि आज जिन श्रोताओं के टेलीफोन कॉल्स लगे हैं वो अगले 2 महीने तक हमें फोन न करें ताकि दूसरे श्रोताओं को मौका मिल सके। तो अब चलने से पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलीकर का था। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। और अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 5 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: के साथ मैं अतहर सईद। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं है बल्कि राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
2: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
1: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा ने विधेयक कल पारित कर दिया था। भोजनावकाश के बाद कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक देश के छात्रों, युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल और प्रश्न पत्र लीक को कतई बर्दाश्त नहीं करने के मोदी सरकार के संकल्प को दोहराया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस विधेयक को लाने में बिल्कुल भी देरी नहीं की। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं और प्रस्तावित संशोधन सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं पर अंकुश लगाने में प्रभावी नहीं होंगे। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मेटा ने खेद व्यक्त किया है। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना के कारण बताने को कहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के सदस्य देशों की परिषद के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली में फ्रांस के राजदूत थियरी माथो और जॉर्जिया के राजदूत बख्तंग जाउशविली से मुलाकात की। बैठक में परिकल्पित लोकतांत्रिक सहयोग को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि बख्तर पांडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बतूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बतूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाश अभियान चलाया। फिदायीन आतंकी जमीशा मुबीन और कई

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी भजन। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:25 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवा मंच।

0: युवा दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार और स्वागत है आपका कार्यक्रम युवा मंच में। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त पूनम। और आज के युवा मंच कार्यक्रम में हम बात करेंगे विज्ञान जगत की और साथ में आपको जानकारी देंगे कुछ रोजगार समाचारों के बारे में। तो युवा दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि लैब के प्रयोगों से लेकर अंतरिक्ष की गहराइयों तक विज्ञान की दुनिया में आज क्या कुछ नया नहीं घट रहा, और तथ्यों की कसौटी, तर्कों की बात और साथ में चलिए शुरू करते हैं विज्ञान जगत की कुछ नई खबरों के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान जगत की। तो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हाल ही में वैज्ञानिकों ने बुध ग्रह पर पानी की बर्फ की पुष्टि की है, और जो कि ग्रह सूर्य के सबसे करीब माने जाने वाला बुध ग्रह जो है वो उसके ध्रुवों के गहरे गड्ढों में पानी की बर्फ जो है वो मौजूद है। और साथ ही भारतीय वैज्ञानिकों ने आधुनिक रेडियो सिग्नल्स के जरिए पुष्टि की है कि सूर्य के सबसे करीब बुध ग्रह के ध्रुवों में जो गहरे गड्ढों में पानी की बर्फ है और वो जो है उसमें मौजूद है। और भारतीय खगोलविदों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड में पृथ्वी से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर अलकनंदा नाम की एक अनूठी जो है सर्पिल आकाश गंगा की भी खोज की है। और युवाओं की जानकारी के लिए बता दें कि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के एक नए क्षुद्र ग्रह का जो है उन्होंने पता लगाया है, जो चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक जो है वो है और लगभग 90,000 किलोमीटर की दूरी से जो है वो सुरक्षित रूप से ये गुजरा है। और विज्ञान जगत की अगर बात की जाए तो एक नई खोज और नए अनुसंधान के बारे में हम अपने युवा साथियों को जानकारी देना चाहेंगे कि अत्यंत आधुनिक और शक्तिशाली लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम कुशा, इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये रक्षा के क्षेत्र में भारत का स्वदेशी S-400 या फिर सुदर्शन चक्र भी इसे कहा जा रहा है, जिसे दुश्मनों के हवाई हमलों से पूरे देश को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। और हाल ही में 23 जुलाई 2026 को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका जो पहला वेरिएंट है कुशा M1 का पहला सफल उड़ान परीक्षण भी किया है। तो श्रोताओं, इस कुशा के बारे में जो है वो आपको और भी जानकारी जो हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में पहले शामिल करते हैं एक प्यारा सा गीत और उससे पहले एक संदेश।
1: स्मार्ट चले, स्मार्ट दिखे, हर सफर हो बढ़िया रे। मारुति सुजुकी सिलेरियो, खुशियों की सामरिया रे। बेहतरीन 26.68 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज, स्टाइलिश लुक्स और कंफर्टेबल ड्राइव के साथ माइलेज का हीरो, स्टाइल भी कमाल। सिलेरियो के सन हर दिन बेमिसाल। और अब पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 42,100। ऑफर का फायदा उठाइए आज ही, जल्दी कीजिए। 1 अगस्त से गाड़ियों के दाम 30,000 तक बढ़ रहे हैं। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी सिलेरियो, स्मार्ट चॉइस, स्मार्ट ड्राइव। माइलेज फिगर एज पर सर्टिफाइड टेस्ट कंडीशंस, TNC अप्लाई।

जय दोस्तों, कार्यक्रम युवा मंच में एक बार फिर से स्वागत है सभी युवा साथियों का। और हम बात कर रहे थे विज्ञान जगत की, और उसमें हम बात कर रहे थे मिसाइल कुशा के बारे में। और कुशा M1 का पहला सफल उड़ान परीक्षण जो है वो किया जा चुका है। और इस परीक्षण में मिसाइल ने बहुत तेज़ गति और ऊंचाई पर उड़ रहे एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य को हवा में ही सटीक तरीके से मार गिराया। और प्रोजेक्ट कुशा की विशेषताओं की अगर बात करें तो इस सिस्टम के तहत 3 अलग अलग दूर तक मार करने वाली जो है वो इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाई जा रही हैं, जिसमें M1 वेरिएंट 120 से 150 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल, जिसका हाल ही में परीक्षण हुआ, और M2 वेरिएंट लगभग 250 किलोमीटर की रेंज, और M3 वेरिएंट जिसकी जो रेंज है वो 350 से 400 किलोमीटर की जो अधिकतम दूरी तक मार करने की क्षमता होगी। और ये आसमानी कवच दुश्मन के अत्यंत आधुनिक स्टिल्थ फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और हवा में उड़ने वाले जो टोही विमानों को भारत की सीमा में घुसने से पहले ही तबाह कर देगा। और इस मिसाइल जो ये जो मिसाइल है उसके बेहद शक्तिशाली गैलियम नाइट्राइड पर आधारित AESA रडार और कमान एवं नियंत्रण केंद्र को भारत में ही डिज़ाइन किया गया है। और इसके कारण भविष्य में सॉफ्टवेयर या मिसाइल अपग्रेड के लिए भारत को किसी अन्य देश पर निर्भर जो है वो नहीं रहना पड़ेगा। और साथ ही DRDO अगले 12 महीनों में इसके जो अन्य वेरिएंट M2 और M3 के परीक्षण को पूरा करेगा, और भारतीय वायुसेना में इस पूरे सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से 2028 और 2030 के बीच जो है वो तैनात किया जाना शुरू हो जाएगा। और श्रोताओ, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कार्यक्रम विज्ञान जगत में आगे कृषि की और एक नई बढ़त की, नई अनुसंधान की, नई खोज की। तो आइए जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने किस नई खोज से उपलब्धि हासिल की है। तो हिमाचल प्रदेश के सोलन यानी कि नौणी स्थित जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च की एक नई और क्रांतिकारी उन्नत किस्म जो है वो सोलन शक्ति के नाम से विकसित की है। और ये खोज जो है वो राज्य के मध्य पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने पहले सोलन भरपूर नामक किस्म भी तैयार की थी, जिससे काफ़ी पसंद किया गया था। और इस किस्म को सबसे बड़ी इसकी खासियत ये थी कि इसमें डिजीज़ रेजिस्टेंस यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज़्यादा है, और उसके कारण किसानों को फसल पर बहुत कम रासायनिक दवाएं या कीटनाशक छिड़कने पड़ते हैं। और शिमला मिर्च की फसलों में लगने वाला जो प्रमुख खड़ सुख रोग है यानी कि विल्ट डिजीज़ है, इस किस्म को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और जिनसे फसलें सुरक्षित रहती हैं। और पारंपरिक और पुरानी किस्मों के मुकाबले सोलन शक्ति से किसानों को अधिक उत्पादन जो है वो मिल रहा है, जिससे खेती की लागत कम और उसमें मुनाफा जो है वो बढ़ता है। और नई किस्मों के विकास के साथ साथ सोलन के वैज्ञानिकों ने मिट्टी में पाए जाने वाले जो फंगस और बैक्टीरिया का उपयोग करके शिमला मिर्च को जो है वो फ्यूजेरियम विल्ट यानी कि जड़ गलन रोग से बचाने की जैविक तकनीक भी खोज निकाली है, जिसमें जो केमिकल का जो 83% रोग नियंत्रण इसमें संभव हुआ है। और इस नई किस्मों के इसमें पोटाशियम, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा जो है वो भी अधिक पाई गई है, जो इंसानी स्वास्थ्य के लिए जो यानी कि लीवर को हमारे जो है वो स्वस्थ रखने में और इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी बेहद लाभकारी है। तो युवा दोस्तों, ये भी एक विज्ञान जगत की नई खोज, नई अनुसंधान जो कि हिमाचल प्रदेश में हुई है, उसके बारे में अपने युवा साथियों से हमने साझा की। अब कार्यक्रम में रुकते हैं और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत, और उसके बाद आपके लिए लेकर आएंगे कुछ और जानकारियाँ।

दोस्तों, आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच। और युवा मंच में हम बात कर रहे हैं विज्ञान जगत की। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने हाल ही में कई अद्भुत खोजें की हैं। इसमें भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया निगलने वाला स्मार्ट माइक्रो डिवाइस और वैश्विक स्तर पर कैंसर की एक साथ 50 से भी अधिक प्रकारों की पहचान करने वाला ये एक टेस्ट है। और ये डिवाइस एक छोटी सी गोली की तरह है जिसे मरीज आसानी से निगल सकता है। और ये कैप्सूल सीधे मानव शरीर के सबसे जटिल हिस्से यानी छोटी आंत में पहुंचता है और वहां जाकर पेट के जरूरी बैक्टीरिया नमूने जो है वो उन्हें इकट्ठा करता है। और इससे पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियां, अल्सर और आंतों के इन्फेक्शन की पहचान जो है वो बहुत ही शुरुआत में हो जाएगी, जिससे डॉक्टरों के लिए एक सटीक इलाज करना भी आसान होगा।

तो दोस्तों, विज्ञान जगत के बाद अब बात करते हैं रोजगार समाचारों की। तो हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के 734 पदों के लिए जो है वो नई भर्ती निकली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 अगस्त 2026 है। और इन पदों के लिए जो है वो पुरुष और महिला जो दोनों इसके लिए पात्र हैं और योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं और 12वीं पास जो है उम्मीदवार होना चाहिए। और इसमें आयु सीमा की अगर बात की जाए तो सामान्य वर्ग के लिए 18 से 25 वर्ष और एससी एसटी और ओबीसी के लिए 18 से 27 वर्ष जो है वो आयु सीमा रहेगी। और अगर आप इसके लिए और भी जानकारी जो है वो चाहते हैं और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप विस्तृत जानकारी के लिए HPPSC ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है वो आप इसमें जानकारी हासिल कर सकते हैं। और आगे हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में बाल विकास परियोजना CDF सुलह के अंतर्गत धीरा और पालमपुर सब डिवीजन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं यानी हेल्पर्स के जो 87 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और आंगनवाड़ी केंद्र में जो बच्चों को प्रारंभिक अनौपचारिक शिक्षा यानी कि प्री स्कूल एजुकेशन देते हैं उन्हें मुख्य रूप से आंगनवाड़ी टीचर भी कहते हैं। और रिक्त पदों का पूरा विवरण जो है वो इस प्रकार है। तो धीरा उपमंडल में कुल 39 पद हैं जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 11 पद और सहायिकाओं के 28 पद हैं और पालमपुर उपमंडल में कुल 48 पद जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

0: सेविकाओं के 16 पद और सहायिकाओं के 32 पद हैं। धीरा उपमंडल के लिए आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 18 अगस्त 2026 है और इंटरव्यू की तारीख 21 अगस्त 2026 है। और सुबह 10 बजे एसडीएम कार्यालय धीरा में जो होना है वो निश्चित हुआ है और पालमपुर उपमंडल में आवेदन की अंतिम तिथि 19 अगस्त 2026 और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की तारीख जो है वो 22 अगस्त 2026 जो है वो 16 उसमें ये भी 10 बजे का समय रहेगा। एसडीएम कार्यालय पालमपुर में ये साक्षात्कार होगा और इस भर्ती में केवल महिला उम्मीदवार ही भाग ले सकती हैं। और शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यानी टीचर और सहायिका दोनों के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम 12वीं पास होना अनिवार्य है और उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उम्मीदवार के पूरे परिवार की कुल वार्षिक आय जो है वो 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जो है वो आय प्रमाण पत्र जरूरी है और आवेदिका का संबंधित आंगनवाड़ी के सर्वे क्षेत्र का स्थायी निवासी होना भी अनिवार्य है। तो ये थे रोजगार समाचार आज के कार्यक्रम में। तो अब अपने युवा साथियों को सुनवाते हैं एक और प्यारा संगीत।
1: ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूं।

अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम युवा मंच, यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित व रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। शाम 6:06 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सांझ। शाम 6:30 पर सुनिएगा किसान व बागवान भाई बहनों का कार्यक्रम मौजा ग्राइंडियां, जिसमें विषय रहेगा भारतीय मूल का पशुपालन। 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि 8:00 आकाशवाणी दिल्ली से संसद समीक्षा रिले की जाएगी। 8:30 पर देशकान सुनवाया जाएगा और रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह पर फिल्माए गीत सुनवाए जाएंगे। रंगे गजल ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10:00 आकाशवाणी दिल्ली से मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा व लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रेडियो रिपोर्ट आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या 9:00 News@9, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:58 हुए हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज सोलन जिले के क्यारी घाट में 297 नई टाइप ए इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के विभिन्न डिपुओं के लिए रवाना किया। इस दौरान उन्होंने हिम बस प्लस कार्ड का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बसों से न केवल लोगों की यात्रा सुगम होगी बल्कि ये स्वच्छ, हरित, आधुनिक व टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के गठन के बाद से HRTC के बेड़े का दायरा लगातार बढ़ रहा है और इन बसों के साथ ही अब इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 500 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस वर्ष 1000 और इलेक्ट्रिक बसें खरीद रही है। इसके अलावा 100 हाइड्रोजन बसों को खरीदने पर भी विचार किया जा रहा है।
1: 297 बसें इलेक्ट्रिकल आज हमने विभिन्न डिपो में भेज दी है। अब हमारे पास 500 बसों का फ्लीट इलेक्ट्रिकल का हो गया है। 1000 इलेक्ट्रिकल बसेज और लाने की हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा हम आने वाले समय में 100 हाइड्रोजन बसेज के बारे में भी विचार कर रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश की जो वातावरण है, प्रकृति है, उसको बचा सके। जो क्लाइमेट चेंज के कारण नुकसान हो रहा है, हिमाचल हिंदुस्तान की सबसे लीडिंग स्टेट बने, इस दिशा में हमारी सरकार ने कार्य कर रहे हैं।
0: इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और विधायक कुलदीप सिंह राठौर व हरदीप सिंह बावा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि खेल गतिविधियों से बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और आत्मविश्वास का विकास होता है। बिलासपुर जिले के केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में खेलों का महत्वपूर्ण योगदान है। राजेश धर्माणी ने कहा कि विद्यालय के स्थायी भवन निर्माण के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने 25 बीघा भूमि को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि विद्यालय का अपना भवन बनने से विद्यार्थियों को आधुनिक व बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। धर्माणी ने कहा कि क्षेत्र में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण व राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से घुमारवीं, हटवाड़, भराड़ी और कपाहड़ा विद्यालयों को CBSE से संबद्ध किया गया है। सिरमौर जिला में रेणुकाजी विधानसभा के दुर्गम हरिपुर धार क्षेत्र के लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरिपुर धार को सिविल अस्पताल का दर्जा देने और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की राज्य सरकार से मांग की है। क्षेत्र की करीब 6 पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने आज अपनी समस्याओं के संबंध में हरिपुर धार के नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इस दौरान दिउड़ी खड़ाहा पंचायत के प्रधान विनय छिंटा ने बताया कि इस स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, जिसके चलते 3 विधानसभा क्षेत्रों की करीब 20 पंचायतों के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले इस अस्पताल को सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया, लेकिन अब इसके दर्जे को घटाकर फिर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है।
2: लगभग 3 विधानसभाओं के लोग अपने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सिविल अस्पताल हरिपुर धार के ऊपर निर्भर थे, लेकिन जब से हमारा सिविल अस्पताल बंद हुआ है, स्वास्थ्य क्षेत्र का हमारा इतना बड़ा क्षेत्र लाचार हालत में पड़ा हुआ है। अब हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन है, हम चाहते हैं कि हमारी इस मांग को माना जाए। ये जायज मांग है। हमारे तकरीबन 20 पंचायतों के लोग स्वास्थ्य सेक्टर के अंदर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
0: उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मृदा व जल संरक्षण अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का दौरा किया। भारतीय मृदा व जल संरक्षण संस्थान देहरादून द्वारा आयोजित अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उन्नत आलू अनुसंधान, टिकाऊ उत्पादन तकनीकों और कृषि प्रसार

0: गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से ये दल शिमला पहुंचा है। इस अवसर पर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के निदेशक डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने बताया कि अनुसंधान प्रयासों से आलू की उत्पादकता व गुणवत्ता में सुधार हुआ है और किसानों की आय में वृद्धि हुई है। चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया है कि पांगी घाटी को प्राकृतिक कृषि उपमंडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऐसे में प्राकृतिक खेती से संबंधित गतिविधियों में तेजी लाना आवश्यक है। चंबा में आज कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा के तहत आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपायुक्त ने जिले में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए बेहतर विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
1: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरमई सांझ। सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत। और कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं आशा भोंसले की आवाज़ में ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म पिकनिक से। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है एस मोहिंदर ने।

0: अच्छा दोस्तों, जब बात पुराने गानों की होती है तो दिल खुद ब खुद मचल उठता है, और वो सादगी, वो मीठे बोल और वो जादुई सी आवाज़ें आज भी दिलों में जिंदा हैं। तो आइए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और एक बेहद प्यारा सा गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, और फिल्म है ये दिल किसको दूँ। तो सुनते हैं मिलके ये गीत, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक संदेश।
1: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 62,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, 1 अगस्त से गाड़ियों के दाम 30,000 तक बढ़ रहे हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना, खुशियों की चाबी।

0: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
2: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य।

0: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।
1: श्रोतो, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुना रहे हैं फिल्म छैला बाबू से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने, और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: बारिश तेज है, अरे अरे अरे भीग जाएंगे, अरे मैंने कहा बारिश तेज है, ये भीग जाएंगे, ये बारिश तेज है।
1: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
2: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
1: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
2: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
1: जल्दी कीजिए, 1 अगस्त से गाड़ियों के दाम 30,000 तक बढ़ रहे हैं। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: स्मार्ट चले, स्मार्ट दिखे, हर सफर हो बढ़िया रे। मारुति सुजुकी सिलेरियो, खुशियों की सावरिया रे। बेहतरीन 26.68 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज, स्टाइलिश लुक्स और कंफर्टेबल ड्राइव के साथ। माइलेज का हीरो, स्टाइल भी कमाल। सिलेरियो के सन हर दिन बेमिसाल। और अब पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 42,100। ऑफर का फायदा उठाइए आज ही, जल्दी कीजिए। 1 अगस्त से गाड़ियों के दाम 30,000 तक बढ़ रहे हैं। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी सिलेरियो, स्मार्ट चॉइस, स्मार्ट ड्राइव। माइलेज फिगर एज पर सर्टिफाइड टेस्ट कंडीशंस। TNC अप्लाई।
3: श्रोताओ, इस संदेश से पहले आपने दो झूठ फिल्में सुना, किशोर कुमार और उषा मंगेशकर को। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

श्रोतो, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सांझ, यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं।

0: कार्यक्रम मौजें कराई दियां लेकर हाजिर हैं। मैं ग्राम सेवक कन्ने मेरे कन्ने सैकटरी और सारे सुनने वाले किसान बागवान भाई भैन जो ग्राम सेवक दी राम राम कन्ने सैकटरी जी तुहांजो भी राम राम
1: राम राम जी राम राम कन्ने कार्यक्रम मौजा कराई दी सुनने वाले सारे किसान साथियों जो कन्ने बाकी सारे श्रोतियां जो भी राम राम
0: जी। भाई सैकटरी जी मैं दिखा था भी तुह ना आँदे थोड़ी हल्की हल्की खंघ लगी पी लगना तो दिखा बरखा च अजकल सिजना नहीं चाहिए कने अपना छतरू जड़ा है ना सोगी रखा करा महाराज तबीयत खराब हो जाए तो कोई कुसी दा नहीं हुंदा।
1: नहीं नहीं बिल्कुल ठीक ला दिखा जी तबीयत खराब हो जाए तो कोई कुसी दा नहीं हुंदा कने एक खंघ इं लगा दी ना भी आँदे आँदे क्या हवा दी ज्यादा चली हुई कने छतरू जड़ा सैकी बखे ते जड़ा
0: टेढ़ा
1: टेढ़ा फेढ़ा हुई है कने पानी लगी है
0: सहत मैं देखा था तुहां टेढ़ा दे छतरू पकड़िया ना
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: कने देखा ना बई बरसाती बरखा ही कई बारी सियो दे पई आंदी ना जोरे दी ता जे अगर हल्का छतरू है तो सह टेढ़ा हो ही जांदा है ना
1: जी बिल्कुल बरखा बरखा बड़ी जोरे दी पौधी है अजकल कने अहां दे जिहड़े 3-4 दिन होर अगले न इस वास्ते भी मौसम विभाग दी जिहड़ी है चेतावनी आई हो कि 31 तरीका तो लेकर 3 तरीका तक मौसम जिहड़ा सह बड़ा ही भयंकर बारिश वाला है। तो अपने सुनने वाले भी बोलना चाहेंगे कि इन्होंने तिना चौ दिन तो नदी नालों के किनारे बिल्कुल मत जाते कने अपनी यात्रा भी दिखी सुनी के करने
0: बिल्कुल कने कोशिश तो यही करना चाहिए भी घरे ही रहना चाहिए
1: जी
0: है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बिना जड़ा जरूरी कम है जड़ा ऐसा घरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए
1: जी बिल्कुल ठीक ला दिखा कने अहाँ जिंक कि सारे जो पता है कि अहाँ अपने टाले पर तो अपने सारे साथियों कन्ने जड़ा ऐसा कोई ना कोई जानकारी जड़ा सा दसते रहते हैं
0: जी
1: कने गलबात भी करते इस बारे तो अज जी अहाँ जानकारी अहाँ गलबात करनी है सह है भारतीय मूल का पशुधन
0: बिल्कुल बिल्कुल ता देखा भारतीय मूल का पशु पालन अगर हाँ अपने बजुर्गों की तरफ थोड़ा जहा ध्यान लगाइए कने देखा हाँ पुराने जमाने की तरफ जाइए ना तो पहले टाइम च ये साढ़े भारतीय मूल के पशु पालन ही गाँव च होंदे थे है ना
1: जी
0: यानी कि स्वदेशी साढ़े जो पशु थे सह ही पालते थे साढ़े बजुर्ग कने देखा एक नहीं होंदा हा बल्कि 8-8 कने 10-10 डंगरे बच्छू होने माल बच्छू है ना गाय भैंस बकरियां बैल हैं
1: जी बिल्कुल
0: सारिया चीज़ा होंदियां या मुर्गियां तो मतलब हर घरे च जड़ा ऐसा है कुछ ना कुछ जड़ा ऐसा है जरूर पालिया होंदा हा कने देसी तरीके ने तिना दा जड़ा ऐसा है पालन होंदा हा कने बढ़िया जड़ा ऐसा है दूध उत्पादन होंदा था मतलब पुराने जमाने दे क्या कहने
1: जी
0: और
1: बिल्कुल
0: सह ही गल जड़ी ऐसा हुण घूमी फिरी के आई है कि भई भारतीय मूल दा जड़ा पशु पालन है जिसी वहाँ स्वदेशी पशुधन भी बोली सकते हैं और भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कने कृषि की रीढ़ जड़ी ऐसा ये पशुधन होंदे हैं और देश च सदियां ते पाले जाया करते ये स्वदेशी पशुओं च उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता होंदी और सर्दी कने गर्मी सारे मौसमों च इन्हां यो सहन करने की अद्भुत क्षमता भी होंदी
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल तो ठीक ला दिखा अहाँ दे भारत देश में जरा सा बड़ी तरह के जरा अहाँ के स्वदेशी पशु पालन या पशुधन तो हाँ बोली सकते मिलते हैं जियाँ कि हाँ अगर गाय की गल की जाए तो गीर हो गई साहिवाल हो गई थारपारकर हो गई राठी हो गई लाल सिंधी हो गई कांकरेज हो गई हरियाणा हो गई तो यह कुछ गाय की देसी नस्ल आदि ठीक है कहीं अगर गल की जाए अहाँ की भैंसा की नस्ल आई तो कुछ मुर्रा हो गई महसाना हो गई जाफराबादी हो गई कहीं भदवारी भी जी इस आदियां कहीं तो गलाया कि अहाँ के जो पशु हैं ये अहाँ के भारतीय वातावरण के कने वायुमंडल के अनुसार जो डले होने कने इन्हें पालने से ज़्यादा तकलीफ जरा नहीं होंगी कहीं पशुधन की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इन्होंने जी बड़ी अच्छी होंगी है
0: जी कने देखा अगर अहाँ दुधारू नस्लों की गल करिए ना तो दुधारू नस्लों च साहिवाल गीर कने रेड सिंधी गाय जड़ी है ना
1: जी
0: बड़ी बांकी कने बड़ी अच्छी मनी गई है और इन्हों नस्लों से जड़ा ऐसा ज़्यादा दुध उत्पादन होंदा कने साढ़े जड़े पशु पालक भाई हैं सह इन नस्लें जड़ा सह बड़ा अपनांदे हैं।
1: जी बिल्कुल तो ठीक ला दिखा जी तो जी दुध की गल की अहम जो भारतीय मूल की जी गाय होनी है ना तो

0: किसान साथियों वहाँ सुनिया बड़ा ही प्यार दिया लोग गीत कने लोग गीत के बाद फिर ही यहाँ दे टैड पर वक्त है गलबात दा कने जानकारियां दा
1: जी बिल्कुल
0: गल जिहड़ी करा दे पशु धन दे बारे विच हां गल करा दे अज तजियां जी तुहां दिखिया कि हाँ भारतीय मूल दे पशु पालन दी गल कीती तां हुण हां गल करनी कि इस पशु पालन दे काम विच अहां इहनां दी देखभाल कियां कीती जाए।
1: जी बिल्कुल सेक्रेटरी जी तुहां ठीक गला दे भाई देखा गल तो ठीक है भी हाँ पशु धन तो रखी लिया गाय तो पाली ली भेडा बकरियां तो पाली लिया मैं तो रखी ली ना पर दिखा इन्हां दी जिहड़ी देखभाल है सभी उतनी ही जरूरी हो जाती जितना कि इन्हें पालन करना है इन्हां
0: बिल्कुल
1: दा पालन
0: ठीक
1: करना
0: रहा
1: है
0: लेकिन
1: ना
0: दिखा जी अजकल लगे बरसाती का मौसम
1: जी
0: तो
1: जी
0: इस मौसम विच तां ये देखभाल और भी जिहड़ी सब ज़्यादा जरूरी हो जाती है।
1: बिल्कुल ज़्यादा जरूरी हो जाती जी दिखा पिछले महीने हाँ इबे जड़ा ऐसा एक चिड़नू दी सरगांद बोलते
0: जी
1: तुसी है
0: बिल्कुल
1: ना
0: बिल्कुल जी
1: ता चिड़नू दी सरगांद मनाई तो इसका मतलब ये होंदा कि भाई जेड़े साढ़े पशु धन है ते ना जेड़े चिचड़ थितड़ पे जांदे ना
0: बिल्कुल
1: तो तुसी हटाने वास्ते एक साड़ा रिवाज है कि हाँ चिड़नू ये फूक देन
0: बिल्कुल
1: ता सभी हो और दिखा अजकल ता और भी कई चीज़ा चली पी चीचड़ थीतड़ जो हटाने ताएं दवाई चली पी जो छिड़काव करी सकते है ना ता इस तरह अहाँ अपनी पशुशाला च इन चीज़ों का छिड़काव करके अपने पशु जो चीचड़ थीतड़ ते बचाई सकते
0: बिल्कुल बिल्कुल जी
1: कने दूई गल दिखा सेक्रेटरी जी सांजो पशुआ जो सूखा बिछावन जड़ा सा बिछाना बड़ा
0: बिल्कुल
1: जरूरी है
0: बिल्कुल ये बड़ी वधी गल बोली दिखा कि बरखा का मौसम जो हों ना है नमी वाला मौसम हों कने हर पक्षे जो है किचड़ कने चिक्कड़ चक्कड़ हों रहा है
1: जी जी
0: ठीक है
1: जी
0: तो मक्खी कने मच्छर का प्रकोप भी इस मौसम जो बड़ा
1: ज़्यादा
0: ज़्यादा
1: हो
0: अहाँ के
1: जाता
0: पशुओं तंग करता है
1: जी जी
0: तो इस दे कारण कई तरह दिन संक्रामक जड़ियाँ बीमारियां सह भी हो सकदियां तो करके तेजी ने फैलदियां भी हैं इस वास्ते अहें चाहिए कि अहाँ अपनी जी पशुशाला या पशु जितू भी अहें ग्राल बोलते हैं तो तिहा की साफ सफाई भी अहें जो नियमित तौर पर जो करते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल दिखा घराना दी साफ सफाई भी होना चाहिए कने अगर हो ही सके ता तिथु एक पंखे दा इंतजाम भी होई जाए ना
0: जी बिल्कुल
1: तो बड़ा बांका रहना क्योंकि पंखे ते भी जड़ा ऐसा मक्खी मच्छर हटी जाते कने सूखापन जड़ा ऐसा रहिंदा कने पशुओं जो गर्मी ते भी निजात मिलती
0: बिल्कुल
1: है।
0: दिखा गया कि दिखा इस मौसम विच अगर अहाँ के पशु धन जो कोई दिक्कत आती है ना तो सब तो ज़्यादा फर्क पाँगा अहाँ के दुधारू पशुओं जो
1: जी
0: क्योंकि अगर दुधारू पशु बीमार हो जाए तो तिदा दुध उत्पादन जो सब भी घट जाता तो इसने हमारी जी आय है तिहा पर भी बड़ा असर पाँगा है तो अहें चाहिए कि इस बरसात के मौसम में हमेशा अहें अपनी जी पशुशाला है साफ सुथरी रखना चाहिए हवादार होना चाहिए क्या जी तुम गलाया है कि सुखा चारा थले तेने बिछावन देना चाहिए तो यह एक बड़ी जरूरी चीज़ है।
1: जी बिल्कुल तो दिखा हाँ अपनी गलबात जो जारी रखना है पर दिखा थोड़ा देर एक जानकार लोक जानकार हुई है ना
0: जी
1: ता बड़ी बाकी गल रहनी
0: बिल्कुल हाँ सुनाने एक प्यारे दे लोक झनकार पर उससे पहले सुनाना हाँ एक संदेश
1: जी।
2: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट 1999 ईएमआई। जी हाँ अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10 घर लाइए सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट और 1999 ईएमआई के साथ साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 62,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए फर्स्ट अगस्त से गाड़ियों के दाम 30,000 तक बढ़ रहे हैं। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। मारुति सुजुकी एरीना खुशियों की चाबी।

0: इस लोक गीत कन्नै असां ते जाने दा वक्त होई गया। जाने ते पहले दस दी तकनीकी सहयोग रहा अंकित धीमान दा, कन्नै कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता थे जितेंद्र पाल सिंह, हुण अपने टियाले दे साथी सैकटरी कन्नै
1: ग्राम सेवक जो कार्यक्रम संपन्न करने दी दिया अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 7 बजने को हैं कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: साथ मैं सर फिरोजी। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
2: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
1: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा जारी है। लोकसभा ने ये विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये विधेयक देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और उन पर विचार करूँगा।
3: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्य की सहायता करना जारी रखेगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने बताया कि वायुसेना, SIDM, उद्योग और स्टार्टअप समुदाय 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि ये वर्ष भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। शाम 5 बजे तक बांकीपुर और मंजलपुर में लगभग 34% और दतिया में 69% से अधिक मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना माझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बतूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बतूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। फिदाइन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकवादियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने आज राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि कने किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे किसान साथियों जो कने बाकी सुनने वाले सारे श्रोतियों जो एक बार फ्री ते राम राम कने टियाले पर मेरा साथ दया कर दिन ग्राम सेवक जी ता ग्राम सेवक जी तुहां जो भी राम राम
2: जी राम राम सेक्रेटरी जी तुहां जो भी राम राम कने सारे सुनने वाले किसान बागवान भाई भैणा जो भी ग्राम सेवक जी प्यार भरी राम राम
1: जी
2: कने एक बार फ्री हाजिर हो चुके हैं असां टियाले पर ढेर सारी जानकारियां कने मिठे मिठे प्यारे प्यारे लोक गीत लेकर सैकटरी जी बी मैं देखा था तो हाँ अज ना कुछ अपने ग्राएं दे बारे च सह गल करा दे हे कुछ पशुधन दे बारे च गल करा दे हे है ना कने बई गल है बी जालू अहां दा एक नौजवान युवक जड़ा है सह पढ़िया लिखिया होगा है ना
1: जी
2: कने गांव दे विकास च रुचि लेंगा ता भई तिस ग्राउंड दा विकास होना जड़ा ऐसा बिल्कुल निश्चित है
1: जी बिल्कुल तुहां ठीक लाया दिखा कने आज जड़ी यहां गल करनी ऐसा भी इसी बारे विच है कने गलबात करने दा जड़ा आंदा बोल देना कि मुद्दा ऐसा है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान दे बारे विच
2: जी
1: दिखा जी कि तुहानूं सारयां नूं पता है कि यहां दा जड़ा भारत देश है ऐसा एक मतलब ग्रां दा देश आहां बोली सकदे सी है कने

0: अज भी असां देश से जी ज़्यादातर आबादी जी इस ग्राम में बसती है कहना अगर अहते ग्राम मजबूत होंगे ना तो अहता देश आप ही मजबूत जरा हो जाना।
1: बिल्कुल ठीक
0: है। यही सोचा जो दिखा साकार करने वास्ते जरा केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत की थी कहना इसका जरा मुख्य उद्देश्य था सह था कि पंचायतों जो अपने तौर पर सक्षम बनाना कने अपने क्षेत्र के विकास दिया योजना से आपू बनाई सकन कने तिना जो प्रभावी ढंग कने लागू भी करी सकन।
1: जी बिल्कुल कने दिखा इस राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का एक सब तो बड़ी गल ये है कि जड़ी भी साड़ियाँ पंचायती राज संस्थावां ना तिना जो मजबूत बनाने ताई प्रयास करना।
0: जी बिल्कुल।
1: और तिना दी क्षमता निर्माण करना डिजिटल शासन जो बढ़ावा देना ये सब कुछ जड़ा ऐसा इस अभियान विच इस योजना विच शामिल कीता गया। और ये जड़ी ऐसा केंद्र सरकार दी योजना है और भारत सरकार पोर्टल दे माध्यम कने जड़ा ऐसा इस जो संचालित कीता जाया करदा है
0: जी।
1: ता पंचायत प्रतिनिधि जितने भी हैं तिना यो विशेष प्रशिक्षण देने का भी इस अभियान के तहत प्रावधान है।
0: जी बिल्कुल।
1: और बढ़िया बढ़िया जानकारियां दे माध्यम कने कने नई तकनीकों दे माध्यम कने तिना यो जड़ा ऐसा विकसित करना पहले था पंचायत प्रतिनिधियां जो विकसित करना फ्री इसके बाद जड़ा ऐसा पूरे पंचायत जो इसके पंचायत के विकास जड़ा ऐसा नई तकनीकें का इस्तेमाल करना ये सारा कुछ इस अभियान के अंतर्गत शामिल किया गया।
0: जी बिल्कुल ठीक लगे इस अभियान के माध्यम ने अहां दी पंचायतां जो डिजिटल रूप में मजबूत भी बनाया जाया करता है जिसके कारण अहां दी ई गवर्नेंस कने ऑनलाइन रिकॉर्ड जिहड़ा सा डिजिटली जिहड़ा सा अहां दे सामने उहदा डिजिटल भुगतान हुई या ऑनलाइन योजना प्रबंधन जी दी सुविधा जिहड़ियां सा अहां दी इस अभियान के जरिए हाड़ी पंचायत जो मिला कर दी हैं कने जिहड़े काम अहां दी पंचायत जो कर दें तिना च भी पारदर्शिता जिहड़ी सा बना कर दी है।
1: बिल्कुल अहां गल करिए तो दिखा सैकटरी जी पहले पंचायतों से जड़े भी काम होंगे है ना से अहां सिर्फ हाजिरी लगाते हैं तिना की कापी च कने तिना भुगतान हो जाता।
0: जी बिल्कुल।
1: लेकिन अज स्थिति ऐसी है कि अहां जे भी काम लगाया होगा ग्राएं च कुछ भी काम लगाया होगा तो तिथू जड़े ऐसा डिजिटल तिना दे जड़ा ऐसा प्रमाणीकरण होंगे वेरीफिकेशन होंगी तिना दी है ना फोटो भी होंगे कने ऑनलाइन जड़ा ऐसा तिना दी हाजिरी का प्रावधान किया गया है।
0: दिखा अहां दे राष्ट्रीय स्वराज अभियान एक दा जड़ा मुख्य उद्देश्य जड़ा ऐसा ये भी है कि अहां दी जड़ियां वास्तविक जरूरत अहां दे ग्रां दियां तो तिथु जो विकास है सब इतना के अनुसार होना चाहिए कने अहां दी जिहड़ी ग्राम सभा है इस विच ग्राम सभा की जिहड़ी भूमिका है सह बड़ी ही अहम हो जाती है क्योंकि जल तो अपनी ग्राम सभा विच जाए के अपनी समस्या तो दस के कने तिना वास्ते सुझाव देंगे तो अहां दे जिहड़े विकास कार्य हैं सह जिहड़ा है बड़ी जल्दी कने बड़े अच्छे तरीके नाल जिहड़े है पूरे हो सकते क्योंकि अहां यो पता है कि अहां दी पंचायत विच क्या चाहिए कने कियां चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि पहले क्या होंदा कि योजना बनी क्यों होंदी ही उपरे ते तो जिहड़े उपर बैठे थी ना नहीं पता कि थले क्या चाहिए तो हूँ ये सारा कुछ जिहड़ा जिम्मेदारी है सह पंचायत स्तर पर दी गई हो ताकि पंचायत अपने स्तर पर इस विच भागीदारी करन कने तिथों दीआं जरूरतां दे हिसाबे नाल योजना जिहड़ी सी बनाउण।
1: बिल्कुल जी एक बिल्कुल एक सैल्फ बनदा पूरी ग्राम सभा च कौन कौन काम जिहड़े सह जरूरी हैं पंचायत च है ना कौन पासा जिहड़ा ऐसा डिया करदा है या फिर उस रस्ते च जिहड़ा ऐसा इसकी मरम्मत की जरूरी है ना ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां सह ग्राम सभा च ही निर्धारित होंदियां ने।
0: जी बिल्कुल। तो अगर अहां दा युवा पढ़े लिखे है कहना सह ग्राम सभा च या अपने पंचायती स्तर पर योगदान देना शुरू करे इस अभियान के तहत तो अहां दे जिहड़े ग्रां सह ज़्यादा विकसित जिहड़े ने सह हो सकदे ने।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: अहां अपने सारे युवा साथियां ने कने जिहड़ियां भी ग्रां दीआं महिला ने चाहे किसी भी तरह ते है जुड़ा करदियां ने अपने पंचायती करने चाहे सह प्रधान हैं चाहे सह किसी भी कोई कार्यकर्ता कोई भी तो तिन्हें चाहिए कि सह जुड़न पढ़े लिखे के अच्छा जिहड़ा जिसे बोलते ना योजना बनान तिन्हां दे बारे सुझाव देन ताकि अहां दे ग्रां दा विकास जिहड़ा अच्छे तरीके नाल हो सके।
1: बिल्कुल। तां असां उम्मीद करनी है कि साडे जिहड़े ग्रां दे युवा ने महिला ने बजुर्ग ने नौजवान ने ना सारे रली मिली के जिहड़े ऐसे गांव दे विकास च अपना अपना सहयोग जरूर देंगे।
0: बिल्कुल
1: इस गलबात दे कने ही जिहड़ा ऐसे हुण प्यारा दे लोकगीत भी अहां सुनना है।
0: बिल्कुल।

0: यहाँ सुने एक बड़ा प्यारा दिया लोकगीत कने लोकगीत के बाद फ्री वक्त है जानकारी दा
1: जी
0: कने
1: तां
0: जो
1: देखा टियाले पर अहां दी कोशिश होंदी कि अहां अपने किसानां दे अनुभव जड़े से सांझा करदे न,
0: जी बिल्कुल
1: तां सुनी लैंदे ने ये जानकारी।
2: कार्यक्रम किसान वाणी भेंट वार्ता दी कड़ी विच अहां कन्ने गद्दी भाई जुड़ा करदे न इन्हां कन्ने गलबात। राम राम जी।
3: राम राम जी।
2: जी अपना नां दस्सा पहले तां।
3: मेरा नाम साणू है जी।
2: साणू जी कुतों तुहां दे घर?
3: साढ़े घर जी चुरा है सनवाल।
2: चंबे दे कितनी दूर है ये चुरा?
3: ये 100 किलोमीटर है जी।
2: ता भेडा बकरियां पालदे है ना?
3: हाँ जी।
2: किन्ना के साल होई ये भेडा बकरियां पालदे?
3: ये होई है जी कोई 25 साल।
2: अच्छा 25 साल तो हाँ, यानी के जंगलां विच ही गुजारी खड़े है ना?
3: हाँ जी हाँ जी।
2: ता इस वेले जियां तुहां अजकल ये तुहां निचलियां क्षेत्रां विच आए हो ना,
3: हाँ जी।
2: ता जियां तुहां किन्ना के टाइम कटना इन इलाकियां विच जियां
3: इन
2: गर्मी?
3: इलाकियां विच जी असी टाइम कटना विसाखी तुकर। हाँ जी विसाखी बिसू अखाई के असी जाना उपरे की जी।
2: अच्छा साणू जी, हाँ जो ये दसा कि जियां कितनी के भेडा बकरियां तो हाँ बाल?
3: इस टाइम है जी हमारे पास 500 बकरी भेड़ है। 300 इंदौरा में गई है जी, 200 यहाँ पर है जी। लंगाना करी बोलते हैं जी, इस इलाके का नाम लंगाना है।
2: देखा किसान साथियों भी टपरिया जत्थू ये डेरा ना, इत्थू दा कुछ नज़ारा ही जड़ा सा अलग है। मैं तो जो जड़ा सा बोली की जड़ा सा दस्सी सकदा छिलमोड़ ने जड़ा तुहां बने ऐसी के बोल दे
3: इसी ओड़ा बना बोलते है जी।
2: आपू बनाया तुहां ये?
3: आपू बनाया है
2: हाँ
3: जी।
2: तो जी तुहां दस्सिया 500 भेड़ा बकरियां ने
3: हाँ जी
2: ता कल्ले चगांदे ने? हां
3: 3 बंदे न जी।
2: जियां तुहां ने हां गल करदे ना, जियां जल तुहां ते चले हे चुराह ते इत्थियो,
3: हाँ जी
2: ता जियां इन्हां इलाकें विच पुजणे हो किन्ने क दिन लगी जांदे?
3: इत्थू पुजने जो जी कोई 15 दिन लगी जाते हैं। हाँ जी
2: जी जियां 500 दस्सिया तुहां इस च भेडा कितनियां ने, बकरियां कितनियां ने?
3: भेडा जी कोई 60 है, तो बाकी बकरियां हैं 400 झाई बकरियां हैं।
2: अच्छा जियां भेडा दी गल करदे हन तां भेडा दी जियां ऊन वगैरह भी निकालदे?
3: हाँ जी
2: साले दी कितनी बारी हो जांदी?
3: 3 बारी कतर देन जी।
2: फिर ऊना दा क्या करना है सारा, बिकी जांदी है ऊन? ये कुतू जाएगी बिकदी?
3: ये शाहपुर बिकी जाती है जी, पर अपने घरे से आई जाते हैं लेने वाह से भी ले जाते हैं जी।
2: अच्छा तो जी ऊन तो हाँ कतरी ले ही है,
3: हाँ जी।
2: इसके बाद क्या करना है? ये धोनी है पहले?
3: नहीं धोंदे जी ये उदे कती लेंदे ना चांडी चूंटी के, तो चूंटी के फिर ये पहले चूंटनी पौंदी है, फिर ये कतनी पैंदी है, फिर उनसानी पैंदी है, ता फिर जी खड्डी वा कोई बुना बुनार दिखना है कने बुनानी है। फिर
2: बड़ी मेहनत वाला काम है ना?
3: बड़ा मेहनत वा कम है जी।
2: अच्छा तो जियां बकरियां दी गल करदे आ ना, इस टाइम सूईयां बकरियां कुछ?
3: हाँ जी सूई दी है।
2: दुध निकाल लैंदे होणे ना?
3: हाँ जी हाँ जी।
2: ज्यादातर तां दुध बकरियां दा पींदे होणे?
3: बकरियां दा जी।
2: हाँ तो देखा भाई जियां बोलते भी हैं ना कि बकरी जिहड़ी से 22 जड़ी बूटियां खांदी जंगले विच,
3: हाँ जी हाँ जी,
2: कने इसा दुध 22 बीमारियां जिहड़ा सा कटदा आ,
3: कटदा है जी,
2: है ना?
3: हाँ जी।
2: अच्छा तो देखा बकरी दा दुध बड़ा इसी यहां बोलदे ने कि दवाई दा काम करदा आ।
3: हाँ जी हाँ जी।
2: अच्छा जियां तुहां दस्सिया कि विसाखी ते बाद तुहां होला होला जिहड़ा सा ठंडे इलाकें चढ़ी जाना ना,
3: हाँ जी हाँ जी,
2: ते जियां आउणे तुहां जो 15-20 दिन लगदे, जाने भी 15-20 दिन ही लगणे?
3: हाँ जी हाँ जी।
2: यानी
3: फिर नहीं तो आस्ते आस्ते चली भी रहिंदे, बत्ता टाइम कटदे कटदे कटदे चली रहिंदे।
2: अच्छा साणू जी इस ते बाद तुहां अहां दे सुनने वाले ये दसा, कई बारी जियां इतना माल तुहां रखे आ जंगलां विच जियां रहना है, कोई जियां कई बारी क्या हुंदा कि रोग राग भी लगी जांदे बकरियें भेड्डां ही, उहदा आपू कर लैंदे इयां टीका वगैरह लगाना उहदा?
3: हाँ जी माड़ा मोटा कर ही लेंदे, पर फिर डिस्पेंसरी बीच भी जाना पैंदा है जी।
2: अच्छा जी बकरियां बीमार हुई हैं तो पता लगी जाता बुखार है ने?
3: हाँ जी हाँ जी लगी जाता है पूरा पता जी। हाँ जी
2: तो दवाइयां वगैरह करना होनी है?
3: दवाई हाँ जी टेरामाइसिन टीका करने ही होंदा है जी।
2: जी आपी कई बार सर्दी जुकाम लगी जा तो अपनी दवाई भी रखी होनी है?
3: अपनी भी माड़ी मोटी रखी होंगी जी, उतनी तो नहीं होंगी रखी दी, पर माड़ी मोटी रखी दी होंगी है जी।
2: हाँ देखा बड़ा एक जिसे बोलते ना कठिन एक जड़ा सा जीवन है ना?
3: बिल्कुल जी बहुत कठिन है, पर
2: हाँ
3: चलो क्या करना है जी, मजबूरी है ना, मजबूरी छड़ी हमारा।

0: काम है जी,
1: हाँ जी
0: करना पड़ता है जी।
1: अच्छा, बाकी और दसा अपने जी अपने इलाके बिच ओ तो खेती बाड़ी भी करते होने?
0: हाँ जी, घरे की है तो खेती बाड़ी भी करते हैं जी।
1: क्या क्या कर दे उतो?
0: वो तू जी कुकड़ी बाते हैं, फिर कने कणक
1: अच्छा,
0: जाओ,
1: इस टाइम क्या लगे तो हाँ दे उतो?
0: कणक है जी तो कने जाओ,
1: बाकी राजमा वगैरह नहीं बीज दे?
0: राजमा जी विसाखी का बाद बाद राजमा हुए, कुकड़ी हुई विसाखी के बाद। अच्छा जी, तो जेड़े ए मटर है तो मटरों का सीजन चलता है जी,
1: हाँ जी,
0: ये भादरों महीने चलता है जी।
1: साणू जी जी हाँ, तो जिक्र किया ना कि चंबे तो उतू चुरा जड़ा था अपने इलाके बिच जिया फसलां वगैरह बीज दें, उतू तो जिया खेत जिया सीढ़ी नुमा होंगे जिया बड़ी बड़ी बीड़ा होंगे कने उच्चे उच्चे है ना,
0: हाँ जी, बड़िया बड़िया बीड़ा होंगी है जी।
1: बैला ने बांधे होने ना,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: दो दांत रखे होंगे एक,
0: दो
1: बाकी तो दे घर कदे होंगे उतू लकड़ी दे होंगे?
0: पहले जी लकड़ियां दे कोठे होंदे थे, कने अबे जरा लेंटर लगी पिए पाना, कने बंगले लगी पिए बनाना।
1: हाँ जी,
0: हाँ जी
1: होला होला जमाना बदलवा करता था ना।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: अच्छा साणु जी, गलबात होवा कर दी भेड़ बकरी पालन दी,
0: हाँ जी,
1: सरकार द्वारा तो जो कुछ ऐसी रियायत मिलती जी या कुछ समान वगैरह? हाँ सुनिया कि मिलता जेड़े भेड़ पालक होंगे बकरी पाल दे,
0: पहले मिलता था जी, अबे नहीं मिलता है कुछ भी, पहले
1: पहला क्या
0: मिलता था।
1: मिलता? हाँ
0: पहले जी बूट मिली जाते थे, वर्दी मिली जाती थी जी, टार्चा मिली जाती थी, पूरी पर्सनालिटी मिलती थी जी,
1: पैसे ना कि मुफ्त मिलता? हाँ
0: मुफ्त मिलता था जी।
1: अच्छा जी, ये तो हाँ टेंट लाया भी अपना लिया होना ना?
0: ये तो अपना लिया है जी, पर पहले मिली जाता था, टेंट भी मिली जाता था, कने झोलू भी मिली जाता था, हूँ नहीं मिलता है कुछ भी जी।
1: अच्छा जी, मैं सुनिया कि जलू तो हाँ इतों तो जलू तो हाँ हटना ना तो एक ऊपर धारकंडी साइड कुछ एक तिथु एक बने होंगे जितों के भेड़ा कना इन्हें वगैरह नुहाते हैं ना, सह क्या चीज़ होंगी सह?
0: से जी असी बोलते हो ना कि ना बिचराड़ू,
1: अच्छा
0: अपनी बोली बिच बिचराड़ू दस दे ना कि,
1: हाँ जी,
0: पर जेड़े इतनी दे लोग वो चिचड़ बोलते वो पेई जाते ना उन्हें कि,
1: हाँ जी,
0: कने उदे बिच दवाई पाते डाकदार टैंक बनाए दे होंगे, उन्हें बिच नहाई लिए तो से चिचड़ खत्म हो जाते।
1: अच्छा सही, यानी कि सरकारा बनाए होने हैं ना
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: कि
0: हाँ जी,
1: पैसे लेंदे हैं नुआने दे?
0: नहीं जी नहीं लेंदे।
1: अच्छा जान दी बारी है ना,
0: हाँ जी हाँ जी
1: तो इसके बाद जो उपचार हो जाना ना
0: हाँ जी,
1: तो सह फुहारा होंगे कि तला होंगे नुआने वाला?
0: मैं तो जी कभी नुआई भी नहीं, मेरी थोड़ी तो भेडा होंगी है, पर लोग नुआंदे गलां दे टैंक होंदा।
1: अच्छा टैंके च फेंकी देनी है
0: हाँ
1: कहते ना
0: जी हाँ
1: परले बाहर
0: जी
1: निकली जाना ना?
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: अच्छा उइया अगर नुहानी होंगे तो हाँ कि नुहाते ने जी, ऊन गर्म होंगी इन्हें बड़ी गर्मी होंगी भेडें चलो धुप्पा पाउंदियाँ
0: फिर नुआई लेंदे जी ना कि कुत्थे, जहाँ तक डिब्बर दिखनी पैंदी है,
1: तो। हाँ
0: जहाँ तक कुत्थे ऊंची जगह दा फुहारा हुआ लग गया था उत्थे
1: अच्छा,
0: जाई के नुहानी पैंदी है।
1: साणु जी जियाँ जंगलों बिच रहना कल्ले रहना कुथी सड़कों च चलना इतना जड़ा सह तो हाँ तां तां जड़ा सह घूमना कुथी जड़ा सह कुछ डर वगैरह तो नहीं लगता कुथी?
0: अबे नहीं लगता जी, पहले शुरू शुरू बिच लगता था, कने अबे नहीं लगता कोई डर भी।
1: अच्छा जी, तुम
0: हाँ
1: दस्या कि
0: जी
1: 25-30 साल चार दे हुई
0: हाँ
1: है ना,
0: जी हाँ जी हाँ जी
1: बाकी और तो नहीं खतरा? चल तो हाँ चंबे दे इत्थी होना या जाना रस्ते बिच कुछ ऐसा कुछ जियां कोई चोर पे जंदे भेडा हो?
0: पहले पहनते थे जी, कने अबे से भी बेचारे जरा मुखी गिए दे, क्या पता बंद
1: हाँ
0: हो गए दिन से चोर भी अभी।
1: अच्छा
0: हाँ जी
1: अच्छा अच्छा चलो दिखा भाई, गरीब जेड़े से किसान होंगे जियां कुनी बकरियां पालियां भेडा पालियां तो चलो कुछ यो दे शरारती तत्व कोई शरारत करते हैं तो बेचारे की पूरी साले की कमाई जड़ी से मिट्टी हो जाती है ना,
0: मिट्टी हो जाती है
1: हाँ
0: जी,
1: तिन्हां दे पल्ले जड़ा से कुछ भी नहीं पौंदा।
0: जाड़े बिच खरड़ोई खरड़ोई के कपड़ा ओढ़न नहीं रहिंदा जी कोई भी ऊपर,
1: हाँ
0: तो फिर
1: जी तुहां दस्या 7 महीने घरे ते आए हुई है तो जाना कलू घर है हुण?
0: हुण विसाखी के बाद जाना है जी।
1: अच्छा जियां पुआल रखे होंगे भेडा चारने वास्ते है ना,
0: हाँ जी
1: जियां कुछ दा माता माल है या कोई किसी नौकर रखी जिस यहाँ बोलिए कि एक नौकरी नौकरी पर बंदा रखी लिया ना,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: तीन ये क्या हिसाब किताब देंगे?
0: तिना की जी साले दी 10 भी दें दे, 12 भी दें दे।
1: अच्छा बकरियां सह मालक देनी है कि तिनी आपू तालनी है कुंडे लैनी है?
0: ना ना मालके ने देनी है जी,
1: अच्छा तीन मालक दे ही देंगे तन कर दे कि छोटी छोटी 10 दई तिया कि हिसाब भी देंगे है?
0: ना ना हिसाब भी ये दें दे जी। हाँ
1: अच्छा
0: जी
1: हाँ, बाकी नहीं है कपड़े हुई है या रोटियां राटियां तीन ही?
0: तीना दिया हुंदिया, रोटियां भी ते कपड़े भी ते सब कुछ तीना दा हुंदा है जी।
1: अच्छा हाँ,
0: हाँ
1: उन्हें तो
0: जी
1: दिखा भी यहाँ बोला देने कि साल लिया 10 भेडा बकरियां या कुछ भी है पर
0: जी
1: साल
0: जी
1: भी
0: जी
1: दिखा 365 दिन कटना भी कोई आसान काम नहीं है ना,
0: बिल्कुल जी बिल्कुल जी
1: कहलू
0: बिल्कुल जी
1: बरखा पौनियाँ या धुप्पा पौनियाँ
0: हाँ जी,
1: बना बिच किले रहना ना?
0: तो कोई कोई नहीं भी देंदा, फिर कोई कोई बेईमान भी होंदा,
1: अच्छा
0: कोई कोई ठगी भी जांदा, सारे कोई तो दुनिया भी नहीं है ना।
1: हाँ, या इं बोली तारा कि इबे थोड़ा मुझे नुकसान हो गया माल घट है।

0: तू अगले साल ले लिया ना।
1: ना तिया तो कोई नहीं बोलता, पर आखी दस ही के कोई कोई फिर दबका बीमारी देंदा है ना।
0: अच्छा भाई तू हाँ चली गया हूं, मैं तो नहीं रखने होना ना,
1: हाँ जी हाँ
0: तो
1: जी,
0: तीन भी दिखा दुख तो अंजन तो नहीं ऐसा कदी हो यार।
1: ना जी ना साढ़े कने तो
0: अच्छा
1: नहीं हुआ, पर कई आंदी सुनी लेंदे ना तो जी फिर दुख लगी जांदा दिले विच।
0: बाकी राशन पानी कितना कितना लेके चलते तो हाँ सोगी, थोड़ा थोड़ा इतना चकोई भी आग ना ना।
1: हाँ जी थोड़ा थोड़ा लेंदेन जी,
0: अच्छा
1: अब इस टाइम तो जी हर जगह तो मिली जाता है, जिथे जिथे जाना उतना ही मिली जाता है जी।
0: अच्छा बाकी जी चलो तो हाँ माल बेचना है
1: हाँ जी
0: ता कुछ हिसाब साले च बेच दे या 6 महीने बाद कि
1: चलिए रहती है जी, आई चलाई चलिए रहती है।
0: जब जरूरत पेगी ये
1: हाँ
0: ना।
1: जी हाँ जी हाँ जी,
0: अच्छा
1: 12 महीने
0: कई बार क्या होंगे कि कोई जी बीमारी शुमारी लगी जाती था सभी माल बेचना पे जाता ना, तब तो हाँ जो कदिया लगता कि जी जल तो हाँ निचले इलाकें चले आए जो गर्म इलाकों बिच इतों की जड़ी जी जड़ी बनस्पति है भेडा बकरी वास्तव ये ठीक होंगी कि जड़ी उपर चंबे भरमौर दी है सह।
1: ए जी रित रितपुर है ना रित, अबे इतना ही दी रित है तो अबे हमारा दिल इतना ही लगी है गया था जी।
0: हाँ
1: तो
0: नहीं
1: जिस टाइम असी फिर बैसाखी जे लगी पौनी है जी तो फिर साड़ा दिल उपर जाई रहिंदा, तो माले दा भी उपर जाई रहिंदा,
0: हाँ
1: फिर
0: नहीं नहीं घा
1: माल नहीं
0: पत्थराए की गल
1: खड़ना।
0: करा करदा मैं,
1: हाँ जी
0: नहीं हाँ सुनिया कि जड़ा उपर भरमौर चंबे का जड़ा जड़ा जड़ी बूटियां ने घा पत्थरा है ताकतवर होंदा।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
0: हाँ तो इस चकने इस फर्क होंदा कुछ।
1: बड़ा फर्क है जी,
0: अच्छा
1: बड़ा फर्क।
0: ता सानू जी जिया दिखा हाँ दिखते न कि अजकल ना धन जड़े है ना जिसे बोलते
1: हाँ जी
0: बड़े घटते जा दे,
1: हाँ जी, बड़े कट दे जा रहे
0: क्योंकि
1: जी।
0: गांव वाले जड़े युवा साथी है ना इसी कम करने से थोड़ी शर्म महसूस करते, कन जड़े बेचारे बुजुर्ग हे थे ना हिम्मत रखी जो, पर सभी जियां ओले ओले गांव कुसी दा साथ नहीं मिलला तो सभी इसी कम में जड़ा सा छड्डा करदे ना ना। तो हाँ उन्हें लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि जिन्हें अपने धन धन माल है भी कुछ तरीके कन सा काम करना कन अपने माँ प्यो का साथ देना।
1: ए जी माल चारने वाले जेड़े हैं ये बहुत, यहाँ तो अपना माल बहुत अच्छी चीज है जी,
0: हाँ जी
1: इसमें कोई वो नहीं है जी,
0: हाँ जी
1: कमाई है इसमें भी बहुत कमाई है जी,
0: हाँ जी
1: पर कोई करे तो।
0: अच्छा
1: हाँ जी, ते जैसे एक फौजी की ड्यूटी है
0: हाँ जी
1: वैसी गद्दी की भी ड्यूटी है जी,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: नहीं
0: हाँ
1: गद्दी को छुट्टी मिलती है,
0: हाँ जी
1: नहीं जी फौजी को छुट्टी मिलती है।
0: अच्छा
1: हाँ जी वैसे
0: हाँ
1: पैसा बहुत है जी, पर नहाने धोने के लिए भी गद्दी को टाइम नहीं मिलता है, ये
0: हाँ
1: कठिनाई है जी।
0: अच्छा
1: जब इन नीचनू क्षेत्रों में आते हैं जी, जिया थल्ले आते हैं ना जी असी, तिया इस इलाके बिच फिर जरा डाई बनने की दिक्कत पड़ी जाती, कने कपड़े फटी जाते, नहाने
0: हाँ
1: धोने की टाइम नहीं मिलता,
0: हाँ
1: से जरा जी दिक्कत। बाकी इसमें भी बहुत अच्छी कमाई है जी, बुरी कमाई नहीं है,
0: अच्छा अच्छा हाँ देखा भाई अपना कम है
1: खूने परसीने की अपनी कमाई है जी।
0: कुसी का रोब नहीं है
1: नहीं जी
0: ना, जल दिलकता तो छड़ी दिया
1: बिल्कुल जी
0: बनी पाइया ना,
1: बिल्कुल,
0: तो यानी कि तो हाँ दाते ना यो क्या संदेश है भाई कैसा कि कुछ तरीके करना काम करना भाई।
1: से जैसे कि जी अबे जे असी जी ले ले दिए, अबे जी असी चारा देन जी,
0: हाँ
1: तिया होर भी कोई चारे लेन ना, तो
0: हाँ जी
1: इस चीज भी जी घाटा नहीं है जी,
0: अपना कम है ना ना
1: अपना कम है, नहीं कुसे दी गुलामी है, नहीं कोई कुसे दा लेना है, नहीं कोई देना है जी,
0: हाँ कना अगर तोहा वाला अपनी विरासत है तो हाँ
1: विरासत
0: दे
1: है जी।
0: बुजुर्ग अगर माल सेड़िया
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: तीन जड़ा सा सहयोग जड़ा सा करा
1: बिल्कुल
0: है
1: जी
0: ना जी। साणु जी तो हाँ अपने भेड़ बकरी पालन दे अनुभव अहाँ कन्ने साझा किते अपना कीमती समय तो हाँ अहाँ जो दिता तो हाँ दा बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी।
2: ता दिखा सेक्टरी जी, ये तो थी गलबात है ना, कने कोशिश होंगी साड़ी कि अहाँ नई नई जानकारियाँ पुजान, लेकिन ये जड़ी जानकारी थी, ये जड़ी गलबात थी, ये जड़ी साड़ी भेंट वार्ता थी, ये थोड़ी पुरानी थी, 2-3 महीने पहले जड़ी ऐसा
1: जी बिल्कुल,
2: साड़े
1: कने
2: किसान मित्र और गल की थी यही।
1: बिल्कुल कने सबसे बड़ी गल है कि ये जी भेंट वार्ता है ये चलते फिरते जो अहाँ के गद्दी भाई होंगे ना भेड़
2: जी
1: बकरी तिना
2: जी
1: कने गलबात की यही तो
2: बिल्कुल
1: तिना के हिसाब ने यह गलबात थी, कने अहाँ के किसान साथियों जरा सा कुछ ना कुछ मिले होना इस भी सीखने हो।
2: बिल्कुल, कने देखा इस ते तां हाई गलाई सकदे भी जिहड़ियां अपनियां भेड्डां बकरियां ना सभी इक अच्छा व्यवसाय है, अहाँ अपनाई सकदे, कने देखा जरूरी नहीं है कि अहाँ बड़े तौर पर, हुण पुराने टाइमे दी अहाँ गल करिए, पुराने जमाने दी गल करिए, तां हर घरे च जेहड़ा सा इक दो भेड़ बकरियां जिहड़ियां सी आउंदियां
1: जी
2: थियां है ना,
1: बिल्कुल
2: तां इह तां गलबात दी गल है। कने हुण जिहड़ा ऐसा मंडी भाव दी गल करिए, तां आलू रे 10 ते 20 रुपए प्रति किलो, प्याज 32 ते 33 रुपए, टमाटर 25 ते 35 रुपए, लहसुन 150 ते 160 रुपए, अदरक 170 ते 180 रुपए, शिमला मिर्च 60 ते 65 रुपए, अरबी 22 ते 28 रुपए, खीरा 25 ते 30 रुपए, मटर 100 ते 120 रुपए, फुलगोभी 40 ते 50 रुपए, बंद गोभी 30 ते 35।

0: रुपए बैंगन 30 ते 40 रुपए, कद्दू 18 ते 20 रुपए प्रति किलो, मूली 20 ते 30 रुपए, पालक 30 ते 35 रुपए, हरी मिर्च 40 ते 45 रुपए और भिंडी 35 ते 45 रुपए, करेला 25 ते 40 रुपए।
1: जी कन्नै अगर गल कीती जाए यहाँ दे फलां दी तां सेब रेहा 40 ते 200 रुपये, केला 50 ते 60 रुपये, अनार 100 ते 120, अनानास 35 ते 40 रुपये, अमरूद 80 ते 90 रुपये, मौसमी 50 ते 60 रुपये, कन्नै पपीता रेहा 45 ते 50 रुपये किलो।
0: जी कन्नै मौसम दी गल करिए तां अज धर्मशाला दा ज़्यादा तापमान 25 डिग्री, घट रहा 20 डिग्री, और चंबा ज़्यादा तापमान 25 डिग्री, घट रहा 21 डिग्री, कुल्लू ज़्यादा तापमान 24 डिग्री, घट रहा 19 डिग्री, सुंदरनगर ज़्यादा तापमान 29 डिग्री, घट रहा 23 डिग्री, ऊना ज़्यादा तापमान 32 डिग्री, घट रहा 26 डिग्री, शिमला ज़्यादा तापमान 25 डिग्री, घट रहा 21 डिग्री। और अगले 2-3 दिन तक जड़ा ऐसा भारी बारिश होने की संभावना जड़ी इसे मौसम विभाग बोला करता
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल, कन्नै इस जानकारी दे बाद अहां दे ट्याले च फ्री ते वक्त है एक प्यारे दे लोक गीत दा, तां ओह सुन दे इक प्यारा दे लोक गीत।
0: जी

0: जी सेक्टरी जी, इसी लोकगीत कने साढ़े कार्यक्रम 10 मई इत्थों ही संपन्न हुआ करता है। जाने ते पहले दस दिए कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रहा अंकित धीमान और कार्यक्रम प्रस्तुति जतेंद्र पाल सिंह। हुण असा अपने किसान बागवान भाई भैणां ते लैंदे ने अनुमति।
1: अच्छा
0: अच्छा
1: जी,
0: जी,
1: जय
0: जय हिंद।
1: हिंद।

0: इस कार्यक्रम दे प्रायोजक थे कृषि कने किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: आप सुन रही थी कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:42 हुए हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
1: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने क्यारी घाट से 297 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा 1000 इलेक्ट्रिक बसें और खरीदेगी सरकार। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधेयक को राष्ट्रीय गौरव का विषय बताया। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकायों के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को सराहा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, प्रदेश का इतिहास, अर्थव्यवस्था, बोलियां व राजनीति 6ठी से 8वीं

0: कक्षा के पाठ्यक्रम में होंगे शामिल। और सिरमौर जिला के हरिपुर धार के लोगों ने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की सरकार से की मांग। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सोलन जिले के क्यारी घाट में 297 नई टाइप एक इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के विभिन्न डिपुओं के लिए रवाना किया। इस दौरान उन्होंने हिम बस प्लस कार्ड का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन बसों से न केवल लोगों की यात्रा सुगम होगी बल्कि ये स्वच्छ, हरित, आधुनिक व टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के गठन के बाद से HRTC के बेड़े का दायरा लगातार बढ़ रहा है और इन बसों के साथ ही अब इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 500 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस वर्ष 1000 और इलेक्ट्रिक बसें खरीद रही है। इसके अलावा 100 हाइड्रोजन बसों को खरीदने पर भी विचार किया जा रहा है।
1: 297 बसेज इलेक्ट्रिकल आज हमने विभिन्न डिपो में भेज दी है। अब हमारे पास 500 बसों का फ्लीट इलेक्ट्रिकल का हो गया है। 1000 इलेक्ट्रिकल बसेज और लाने की हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा हम आने वाले समय में 100 हाइड्रोजन बसेज के बारे में भी विचार कर रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश की जो वातावरण है, प्रकृति है, उसको बचा सके, जो क्लाइमेट चेंज के कारण नुकसान हो रहा है, हिमाचल हिंदुस्तान की सबसे लीडिंग स्टेट बने, इस दिशा में हमारी सरकार ने कार्य कर रहे हैं।
0: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक परिवहन के आधुनिकीकरण, सतत व पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने और HRTC को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। अग्निहोत्री ने कहा कि हिम बस प्लस कार्ड की शुरुआत सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा साबित होगी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की सराहना की है। राज्यपाल ने आज लोकभवन शिमला में राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची से हिमाचल प्रदेश स्थानीय निकायों की आम चुनाव 2026 की रिपोर्ट प्राप्त की। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि सशक्त, उत्तरदायी और जवाबदेह संस्थाएं जीवंत लोकतंत्र की आधारशिला होती हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों का सफल आयोजन प्रदेश की जनता, राजनीतिक दलों व चुनाव से संबंधित अधिकारियों की लोकतांत्रिक मूल्यों को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस बीच हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर ने भी आज लोक भवन में राज्यपाल को आयोग की वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि लोकसभा व राज्यसभा से वंदे मातरम के अपमान के विरुद्ध कानून पारित होना देशवासियों के लिए राष्ट्रीय गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि जिस वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम में करोड़ों भारतीयों में राष्ट्रभक्ति और बलिदान की भावना जगाई, उसके गायन के दौरान राजनीतिक विरोध के नाम पर बैठे रहना या सदन से चले जाना स्वीकार्य नहीं हो सकता। जयराम ठाकुर ने कहा कि राष्ट्र और राष्ट्रभक्ति से जुड़े प्रतीकों का सम्मान हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
2: जिस प्रकार से कानून राज्यसभा में पारित हुआ, आज लोकसभा में भी पारित हुआ, उसके अंतर्गत एक कानून की व्यवस्था के अंतर्गत सजा का प्रावधान होगा जो वंदे मातरम का अपमान करेगा, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये निश्चित रूप से भारत के अंदर जिस वंदे मातरम को लेकर के देश की स्वतंत्रता हासिल की गई, जिस नारे उस पर कोई टिप्पणी करना, उसका अपमान करना, ये बर्दाश्त के योग्य नहीं था। और ये कदम भी बहुत सराहनीय कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है और इसका भी मैं अभिनंदन।
0: सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज सोलन सब्जी मंडी के समीप हिम इरा भंडारण कम कैफे के नवीनीकरण किए गए भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसे बिक्री केंद्र किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों व लघु उद्यमियों के उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित इतिहास, अर्थव्यवस्था, बोलियां, राजनीति और व्यंजन से जुड़ी जानकारी को छठी से आठवीं कक्षा के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। शिमला में आज छठी से आठवीं कक्षा की पुस्तकों में बदलाव व सुधार को लेकर आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। रोहित ठाकुर ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2027-28 से नए पाठ्यक्रम की इन पुस्तकों को स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए उपयोग में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने आज हमीरपुर के समीप डुग्घा क्षेत्र के बसदेहड़ा लाहड़ गांव का दौरा कर स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने उनके समक्ष सड़क, पेयजल व हैंडपंप से संबंधित विभिन्न समस्याएं और मांगे रखी। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि बरसात का मौसम समाप्त होने के बाद गांव की सड़क को पक्का करने का कार्य आरंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गांव के हैंडपंप के पानी की गुणवत्ता की जांच करवाई जाएगी और पानी की रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने पर हैंडपंप को विद्युत मोटर से जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि राज्य सरकार आम लोगों की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी उद्देश्य से वे ग्रामीण क्षेत्रों का नियमित दौरा कर लोगों की समस्याओं को समझने और उनके शीघ्र समाधान के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हमीरपुर जिले के लिए कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनसे जिले के विकास को नई गति मिली है। सिरमौर जिला में रेणुकाजी विधानसभा के दुर्गम हरिपुर धार क्षेत्र के लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरिपुर धार को सिविल अस्पताल का दर्जा देने और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की राज्य सरकार से मांग की है। क्षेत्र की करीब 6 पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने आज अपनी समस्याओं के संबंध में हरिपुर धार के नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इस दौरान दिउड़ी खड़ाहा पंचायत के प्रधान विनय चिंटा ने बताया कि इस स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, जिसके चलते 3 विधानसभा क्षेत्रों की करीब 20 पंचायतों के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
3: लगभग 3 विधानसभाओं के लोग अपने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सिविल अस्पताल हरिपुर धार के ऊपर निर्भर थे, लेकिन जब से हमारा सिविल अस्पताल बंद हुआ है, स्वास्थ्य क्षेत्र का हमारा इतना बड़ा क्षेत्र लाचार हालत में पड़ा हुआ है। अब हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन है, हम चाहते हैं कि हमारी इस मांग को माना जाए, ये जायज मांग है। हमारे तकरीबन 20 पंचायतों के लोग स्वास्थ्य सेक्टर के अंदर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
0: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि खेल गतिविधियों से बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और आत्मविश्वास का विकास होता है। बिलासपुर जिले के केंद्रीय विद्यालय घुमारवीं के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में खेलों का महत्वपूर्ण योगदान है। धर्माणी ने कहा कि क्षेत्र में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण व राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से घुमारवीं, हटवाड़, भराड़ी और कपाहड़ा विद्यालयों को CBSE से संबद्ध किया गया है। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरी तरह भाजपा फोबिया से ग्रस्त हो चुके हैं। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी मुद्दा सामने आए तो मुख्यमंत्री बिना तथ्यों के भारतीय जनता पार्टी को ही दोषी ठहराने का प्रयास करते हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई, आर्थिक दबाव और सरकार की नीतियों से परेशान है, लेकिन मुख्यमंत्री का ध्यान केवल अपनी राजनीतिक छवि बचाने पर केंद्रित है।
4: मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाजपा फोबिया से पूरी तरह से ग्रस्त है। कुछ दिन पहले एक NGO इनके चुनाव के समय जो एफिडेविट इन्होंने दिए थे, उसके आधार पर उन्होंने आकलन किया और आकलन करके एक रिपोर्ट छपी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय के पास 7,80,00,000 रुपए की संपत्ति है और वो उत्तरी भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री है। अब उस आकलन के बाद भी मुख्यमंत्री इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहरा। हमने कभी कुछ कहा नहीं, हम तो बधाई दे रहे हैं, हमारे को उससे कोई आपत्ति नहीं, परंतु हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय अपनी संपत्ति के साथ साथ जनता का भी ध्यान करें।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्यारी घाट से 297 ई बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा 1,000 इलेक्ट्रिक बसें और खरीदेगी सरकार। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। नेता

0: प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधेयक को राष्ट्रीय गौरव का विषय बताया। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकायों के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को सराहा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, प्रदेश का इतिहास, अर्थव्यवस्था, बोलियां व राजनीति छठी से आठवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में होंगे शामिल और सिरमौर जिला के हरिपुर धार के लोगों ने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की सरकार से की मांग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं रोजगार समाचार। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी कुमार सेन, जिला शिमला से प्राप्त सूचना के अनुसार क्रेच केंद्रों में क्रेच कार्यकर्ता का एक पद, सहायिका के 2 पदों को भरने हेतु केंद्र के फीडिंग एरिया व पंचायत स्तर के आधार पर सार्वजनिक सूचना के माध्यम से पात्र आवेदकों से आवेदन दिनांक 22 अगस्त 2026 तक सादे कागज पर आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर आमंत्रित किए जाते हैं। क्रेच सहायिका के केंद्र का नाम पमलाई और पलारन, क्रेच कार्यकर्ता के केंद्र का नाम पमलाई। पात्रता संबंधी शर्तें, क्रेच कार्यकर्ता क्रेच सहायिका के पद के लिए केवल महिला प्रार्थी ही पात्र हैं। प्रार्थी उस गांव या संबंधित गांव की सामान्य महिला निवासी होनी चाहिए जिस क्रेच केंद्र में रिक्त पद भरा जाना है। क्रेच केंद्र के क्रेच कार्यकर्ता के आवेदक की शिक्षा कम से कम 12वीं तथा सहायिका के पद हेतु 10वीं पास होनी चाहिए। प्रार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो। प्रार्थी के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। आवेदन पत्र के साथ जो अनिवार्य दस्तावेज हैं वो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, परिवार की वार्षिक आय संबंधी प्रमाण पत्र, क्रेच क्षेत्र की सामान्य निवासी संबंधी प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा जाति संबंधी प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल। स्क्रीनिंग जांच साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि 24/8/2026 दिन सोमवार, स्थान कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी कुमार सेन, जिला शिमला, समय प्रातः 10 बजे है। रोजगार समाचार समाप्त हुए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है।
4: यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 MHz पर। 8 बजने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से संसद समीक्षा रिले की जाएगी।
3: अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
5: संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान अपराध माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। राष्ट्रगान जन गण मन के साथ ही उसी सम्मान के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य बनाने वाले राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को डीएमके समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी गई। इससे पहले उच्च सदन ने कल विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर

सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रगीत को वही सम्मान मिलेगा जो राष्ट्रगान को मिलता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने डीएम के सांसदों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य किसी व्यक्ति और किसी विचारधारा के विरुद्ध नहीं है। इससे पहले डीएम के सांसदों ने सदन में विधेयक पारित किए जाने का विरोध किया। विधेयक पर निचले सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा में भाग लेते हुए डीएम के सांसद के कणिमोई ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और आरोप लगाया कि सरकार इसके साथ हिंदुत्व के एजेंडे को राष्ट्रीयता के रूप में पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों के विरुद्ध है, इस तरह राष्ट्रवाद नहीं थोपा जा सकता। कणिमोई ने विधेयक को संघीय ढांचे के विरुद्ध बताते हुए ये भी कहा कि विभिन्न मुद्दों पर सदन में हंगामे के बीच विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे राज्यों के हितों की और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। डीएम के सदस्य ने कहा कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने कहा कि साधारण विधेयक नहीं है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो राष्ट्र को नहीं समझते वे यहाँ शोर मचा रहे हैं। श्री पात्रा ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में संविधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि जन गण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे और दोनों की एक ही सम्मान मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 76 वर्ष में कांग्रेस की सरकारों ने एक परिवार को ऊपर रखा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को नहीं। डीएमके के ए राजा ने विधेयक पर अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज देश और संसद के लिए बहुत खतरनाक दिन है, ये विधेयक मजाक की तरह है। सदन ने उनके संशोधन को खारिज कर दिया और डीएमके समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके बाद सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस विधेयक के अंतर्गत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या किसी सभा में इसके गायन में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। इसमें बताया गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम को जन गण मन के समान ही सम्मान और बराबर का दर्जा दिया जाएगा। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों सजा के प्रावधान हैं। लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। सवेरे 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल लगातार 8वें दिन नहीं चल सका और कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांगें उठाने लगे। कांग्रेस सदस्यों को कल सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान पैदा हुई गतिरोध की स्थिति का मुद्दा उठाते देखा गया। वो दिल्ली में पिछले सप्ताह प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की भी मांग दोहराते सुने गए। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल बाधित नहीं करने का अपना आग्रह दोहराया। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाई। इस बीच विपक्षी सदस्य आसन के बीच करीब आ गए। उनके हाथ में तख्तियां थीं और वे अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहे थे। पीठासीन सभापति ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटने का अनुरोध किया, लेकिन हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके हैं। और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग के आरोपों को लेकर सदन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग सभापति द्वारा अस्वीकार किए जाने पर विरोध जताते हुए बहिर्गमन किया। सदन में

आकर्षक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों ने 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के संबंध में गृह मंत्री से सदन में आकर स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि संविधान मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति जवाबदेह बनाता है। उन्होंने कहा कि जब छात्रों पर लाठीचार्ज की गई और गोली चलाई गई तब ये स्वाभाविक मांग है कि गृहमंत्री सदन में आएं और इस पर बयान दें। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने व्यवस्था का प्रश्न खारिज कर दिया और शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों से कहा। विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। उन्होंने विपक्ष के आचरण को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उसकी निंदा की। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन में नियत कामकाज जारी रहा और सदस्यों ने शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नागर ने वन नेशन वन डिजिटल मेट्रो कार्ड की मांग दोहराते हुए कहा कि इससे यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो यात्रियों के लिए हर शहर अपने यहां नया मेट्रो कार्ड जारी करता है। ये प्लास्टिक के कार्ड होते हैं और एक शहर का कार्ड दूसरे शहर में नहीं चलता। नागर ने कहा कि इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा क्योंकि मेट्रो कार्ड में चिप और एंटीना लगा होने की वजह से इसकी रिसाइकिलिंग नहीं हो पाती और इससे कार्बन भी उत्पन्न होता है। डिजिटल मेट्रो कार्ड जारी होने पर यह समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल मेट्रो कार्ड मोबाइल फोन से संबद्ध होगा, अतः इसके गुम होने से पूरी बैलेंस राशि का नुकसान नहीं होगा। अभी मेट्रो कार्ड गुम होने से उसकी पूरी बैलेंस राशि भी चली जाती है। कार्ड ब्लॉक भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी सुविधा नहीं है। डिजिटल कार्ड होने पर यह समस्या नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में बैतालपुर चीनी मिल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मिल करीब 20 साल से बंद पड़ी है जिससे वहां के लोगों को रोजगार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 1,200 करोड़ रुपए बकाया है और वो इस राशि का इंतजार कर रहे हैं। शून्यकाल में ही घनश्याम तिवाड़ी, प्रकाश चिक बराइक, कणाद पुरकायस्थ, गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया, रेखा शर्मा, दोरजी छिरिंग लेपचा, बाबूराव निषाद, संजय भाटिया, डॉक्टर के लक्ष्मण, जोगेन मोहन, संगीता यादव, डीएमके के सदस्य एलके सुधीश, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीजू जनता दल के सुभाशीष खुंटिया ने भी आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजन अवकाश के बाद उच्च सदन में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक रोधी कानून में प्रस्तावित संशोधन इस बात का प्रमाण है कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रही है और किसी को भी देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ ये संशोधन लेकर आई है और सभी पक्षों से मिलने वाले रचनात्मक सुझावों का स्वागत करती है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रश्न पत्र लीक मामलों को रोकने के लिए सरकार के विधेयक के भविष्य में कारगर होने पर आशंका जताते हुए एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विधेयक में कड़े प्रावधान किए हैं किंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फर्क इससे पड़ेगा कि आप परीक्षाएं कैसे कराते हैं और प्रश्न पत्र लीक होने से कैसे रोक पाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से सवाल किया कि वो इस समय जो काम कर रही है उसने 2 साल पहले मूल कानून बनाते समय इस काम को क्यों नहीं किया। विधेयक के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के ब्रजलाल ने कहा कि विधेयक ये प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को केवल 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित आंदोलन अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। उन्होंने उल्लेख किया कि विशेष सरकारी वकील नियुक्त किए जाएंगे जो केवल इस प्रकार के मुकदमे की पैरवी करेंगे और अपील सीधे उच्च न्यायालय की खंडपीठ में की जाएगी तथा उस अपील पर 3 महीने के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के संजय झा ने कहा कि किसी भी देश के विकास में वहां की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख योगदान होता है। उन्होंने कहा कि विकास के

0: पर भारत आज जिस तरह बढ़ रहा है उसका एक मुख्य कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव हुआ है और शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ी है तथा शिक्षा की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या कहीं ना कहीं छात्रों को परेशान करती रही है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि नए विधेयक में दंड को कठोर किया गया है और सुनवाई के लिए विशेष त्वरित अदालतों के गठन का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि दंड बढ़ाने से अपराध कम नहीं होता। पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास हुआ करती थी और तब इस तरह के प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। आज पेपर ही 13 भाषा में होते हैं। उन्होंने सलाह दी कि पहले की तरह ही नीट को खत्म कर मेडिकल परीक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी जानी चाहिए, जब 15% सीट केंद्र के अधिकार में होती थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पिछले कुछ दिन में प्रश्न पत्र लीक मामले और उसके बाद हुए घटनाक्रम से केवल छात्र ही परेशान नहीं हुए बल्कि सरकार को भी पीड़ा हुई है और लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 इसी पीड़ा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाना ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सरकार ने कहा था कि नीट का पेपर लीक होने से 22,80,000 बच्चे प्रभावित हुए हैं, लेकिन जब दोबारा नीट का पेपर हुआ तो 20,00,000 बच्चे इसमें बैठे, 2,80,000 बच्चों ने ये परीक्षा नहीं दी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों में बेहिसाब मामले लंबित हैं, ये अदालतें कैसे जल्दी सुनवाई कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कई की इमारत खस्ता हाल है और कई स्कूल बंद हो चुके हैं। शिक्षा पर आखिर सरकार कितना खर्च करती है। उन्होंने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि इसका आदेश किसने और क्यों दिया। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि भाजपा की एक सांसद ने जैन जी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उन्हें गटर कहा है, उन पर सत्ता पक्ष रोक लगाए, अन्यथा यही जैन जी आपको सबक सिखाएगी। चर्चा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जान ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी और शिवसेना के मिलिंद देवड़ा ने भी हिस्सा लिया। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अभी आप संसद में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।
1: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम सबरस में सभी श्रोताओं का स्वागत, और सबसे पहले सुनवा रहे हैं भूपेंद्र सिंह की आवाज में ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस, यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और 9:00 News@9 रिले किए जाएंगे।
1: नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के शुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत,

0: राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक बार श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय चर्चा चल रही है। लोकसभा ने यह विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूँ और उन पर विचार करूंगा।
2: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
0: विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं।
4: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
5: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
6: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की, उन पर लागू नहीं होगा।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
7: संकल्प एयरफोर्स और SIDM के द्वारा जो आज जितने कहते हैं इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप के लोग, एक जिद है कि भारत को 2047 विकसित भारत बनाना है। और अभी आपने देखा होगा कैसे 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव S. कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश

0: में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने अतुल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायीन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। उड़ीसा की महानदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित जिलों में बचाव राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि इसके मध्यम स्तर की बाढ़ बने रहने की उम्मीद है। भारी बारिश के कारण महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने बताया है कि अब तक 20 जिलों के 7,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने बरगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, कलाहंडी, नवापड़ा और नवरंगपुर के लिए येलो चेतावनी लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात में अहमदाबाद, आणंद, सूरत और नवसारी समेत 13 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राज्य में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाई अलर्ट वाले जिलों की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की 3 सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले 2

0: से 3 दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रुपए पर बंद हुआ।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि 1 जुलाई तक देश में 33 करोड़ 13 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता थे। इनमें से 10 करोड़ 58 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSpace ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। INSpace अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत और को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने कहा, नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज। पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीद कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Parliament passes legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem. Prime Minister Narendra Modi chairs meeting of Cabinet Committee on Security to review West Asia situation, stresses on unified mechanism for safeguarding citizens' interest, including seafarers. Delhi government says no legal action against individuals who participated in NEET protests, no protection for those with criminal background. US and Iran exchange fresh strikes, dimming hopes for a quick resolution of West Asia conflict. Red alert issued for very heavy rainfall in Gujarat and Madhya Maharashtra tomorrow. Flood situation in Odisha remains critical. Javelin throwers Neeraj Chopra, Rohit Yadav and Yashvir Singh qualify for the men's final at the Commonwealth Games. The Parliament has passed the Prevention of Insults to the National Honour Amendment Bill 2026, with the Lok Sabha approving it today. The Radha Sabha passed the legislation yesterday. The law will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Janagana Mana and make the insult to the national song a criminal offence. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine or both. Meanwhile, in the Radha Sabha, the discussion is underway on Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. Minister of State for Personnel.

पद्मावत फिल्म जो कि वर्ष 2018 में आई थी, उसमें खूंखार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का दमदार किरदार निभाकर इतिहास रच दिया था। और इसके बाद उन्होंने रोहित शेट्टी की एक्शन कॉमेडी फिल्म सिम्बा और जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय, जिसमें उन्होंने मुंबई के एक स्ट्रीट रैपर का भी रोल किया था, और कबीर खान की 83 फिल्म जो वर्ष 2021 में आई थी, उसमें क्रिकेटर कपिल देव की भूमिका उन्होंने निभाई थी, और इन फिल्मों में उन्होंने अपनी धाक भी जमाई। और उसके बाद हाल ही में करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी वर्ष 2023 में आई, और रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन वर्ष 2024 में। इस फिल्म में काम करने के बाद रणवीर ने अपने स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्मों धुरंधर वर्ष 2025 और धुरंधर द रिवेंज वर्ष 2026 में इन फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सफलता भी हासिल की थी, जो भारतीय सिनेमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली टॉप फिल्मों में शामिल हो चुकी थी। तो आइए सुनवाते हैं उन्हीं पर फिल्माया हुआ एक और गीत।

जी दोस्तों, रणवीर सिंह को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए अब तक 80 से भी अधिक पुरस्कार जो हैं वो मिल चुके हैं, और जिनमें मुख्य 5 मुख्य फिल्म फेयर पुरस्कार जो हैं वो भी शामिल हैं। तो और उनको फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए वर्ष 2011 में फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड जो था वो मिला था। उसके बाद उन्हें वर्ष 2016 में फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए भी बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया था, और वर्ष 2019 में फिल्म पद्मावत के लिए उन्हें साथ ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जो है वो भी बेस्ट एक्टर अवार्ड उनको मिला था, और गली बॉय फिल्म के लिए भी वर्ष 2020 में उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है उससे जो अवार्ड उनको मिला था, और साथ ही 83 फिल्म के लिए वर्ष 2022 में जो है उन्हें फिर से बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार है वो मिला था। और इसके अलावा उनकी और भी बहुत सारी फिल्में हैं जिनके लिए उन्हें अवार्ड मिले हैं, और इसके अलावा उन्हें आईफा अवार्ड्स, स्टार स्क्रीन अवार्ड्स और जी सिने अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो आइए सुनवाते हैं आपको उन्हीं की एक फिल्म गली बॉय से ये गीत।

श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। निजी प्रस्तुत है कार्यक्रम रंगे गजल। कार्यक्रम रंगे गजल में सभी श्रोताओं का स्वागत। और कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं फिल्म उमराव जान से ये गजल।

ये दिलकश आवाज़ है आशा भोंसले की और फिल्म है उमराव जान। गीतकार हैं शहरयार और संगीतकार हैं खयाम।

रंगी गजल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। आसमां के आगोश में चांद इस कदर खोया हुआ है, जैसे कोई हसीन ख्वाब उसकी पलकों पर सोया हुआ है। तारों की महफिल में नूर उसका कुछ यूं बिखर रहा है, मानो कायनात से खुद को चांदनी के रंग में पिरोया हुआ है।

जरा सी आहट हो या कोई पत्ता हिले तो लगा वो आए हैं। हवा का एक झोंका भी छूकर गुजरे तो लगा वो आए हैं। दिल का ये हाल है कि हर धड़कन पर उनका ही गुमा होता है। शायद मेरे इंतज़ार की हद है कि हर साए में लगा वो आए हैं।

भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ में गाई इस गज़ल के साथ आज का रंगे गज़ल कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम रंगे गज़ल। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से मॉनसून सत्र 2026 के दौरान राज्यसभा और लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रेडियो रिपोर्ट रिले की जाएगी। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: क्वेश्चन आवर क्वेश्चन नंबर 121 श्रीमान कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन जी
1: क्वेश्चन नंबर 21
2: प्रश्न संख्या 121 क्या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही के उन अंतर्राष्ट्रीय आकलनों की जांच की है जो ये दर्शाते हैं कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और सतत प्रबंधन में जनजातीय एवं स्थानीय समुदायों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए जैव विविधता संबंधी वित्त पोषण का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से इन समुदायों को प्रदान किया जा रहा है ख जैव विविधता से संबंधित वित्तीय सहायता को पात्र वनवासी एवं जनजातीय समुदायों तक पारदर्शी जवाबदेह और न्याय संगत रीति से पहुंचाया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ग ऐसी निधि के उपयोग के संबंध में निर्णय लेने में सामुदायिक भागीदारी हेतु स्थापित संस्थागत तंत्र क्या है और घ परिणामों की निगरानी करने तथा प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या रक्षोपाय स्थापित किए गए हैं
0: ऑनरेबल मिनिस्टर
2: श्री भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
1: माननीय सभापति महोदय उत्तर सदन के पटल पर रखा
0: द फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन जी
1: थैंक यू सर Will the Minister of Environment, Forest and Climate Change be pleased to state whether digital platforms will be introduced for transparent monitoring of biodiversity projects and its implementation? Any institutional mechanism proposed for ensuring greater participation of Gram Sabhas, women and the tribal communities in planning and implementation? Any frequency prescribed for publishing the state-wise and district-wise performance reports, whether government proposes to establish an integrated coordination mechanism among the ministers dealing with the environment, tribal affairs, agriculture, rural development,

0: करने का प्रयास करते हैं और ये निश्चित रूप से देश की बायोडायवर्सिटी संरक्षण में उनकी बड़ी भूमिका है। इसका कोई वैधानिक प्रावधान तो नहीं है, लेकिन हम उनको पूरा प्रोत्साहन, उनको पूरी नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कार्य करते हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर श्रीमती मेहता विश्रम कुलकर्णी जी।
2: धन्यवाद सभापति महोदय। बायोडायवर्सिटी के बारे में ये जो प्रश्न है, पुणे में 25 साल पहले से 900 हेक्टर से भी ज्यादा जमीन पर बायोडायवर्सिटी का रिजर्वेशन किया गया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। तो मेरा प्रश्न है, और दूसरा भी इससे जुड़ा है, कि मियावाकी फॉरेस्ट के जरिए अर्बन एरियाज में छोटे छोटे प्लॉट्स पर भी बायोडायवर्सिटी हम कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या मिनिस्ट्री अर्बन लोकल बॉडीज को ये आदेश देगी कि वो बायोडायवर्सिटी पार्क का रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट करे, और मियावाकी गार्डन के लिए भी अगर मिनिस्ट्री बजट की सहायता कर सकती है क्या? ये मेरा प्रश्न है।
0: माननीय सभापति महोदय, मंत्रालय के द्वारा नगर वन और नमो वन की योजना चलाई जाती है। वो बायोडायवर्सिटी से अलग है। अपने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से अगर सदस्य महोदय प्रस्ताव भेजेगी तो हम सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 122, श्रीमान ए रहीम जी।
3: प्रश्न संख्या 122, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने श्रम संहिताओं के लागू होने के पश्चात रोजगार सुरक्षा, संविदात्मक रोजगार, छंटनी और कामबंदी यानी ले ऑफ पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है, और यदि हाँ तो उसके निष्कर्ष क्या हैं? ख, श्रम संहिताओं के अंतर्गत श्रमिकों की छंटनी करने वाले कर्मचारियों की कामबंदी अथवा अपना परिचालन बंद करने वाली स्थापनाओं की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या कितनी कितनी है? ग, क्या श्रम संहिताओं को लागू करने से पूर्व और पश्चात छंटनी, कामबंदी, औद्योगिक विवादों तथा औपचारिक रोजगार के संबंध में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है? और घ, क्या सरकार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन तथा श्रमिकों के अधिकारों एवं उनकी रोजगार संबंधी सुरक्षा पर इसके प्रभाव की स्वतंत्र समीक्षा करवाने का विचार रखती है?
1: सेकंड सप्लीमेंट्री थ्रू पी विल्सन जी।
4: थ्रू दिस हाउस आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर द रीजंस फॉर द गवर्नमेंट डिसीजन टू अब्स्टेन फ्रॉम द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन convention on the decent work in the platform economy, which seeks to set minimum standards for the gig and platform workers and was supported by the both Indian employers and workers, especially when such abstention risk denying lakhs of young Indians engaged in app-based work basic protections on working conditions, social security and fair treatment that the global community has recognized as essential. Thank you, Chairman.
1: Honorable Minister.
3: Dr. Mansukh Mandaviya, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
5: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आईएलओ के गिग वर्कर्स के विषय के संदर्भ में जब क्वेश्चंस पूछा है, मैं बताना चाहूंगा कि गिग वर्कर्स हमारे देश में एक नई व्यवस्था खड़ी हो रही है, और गिग वर्कर्स का हितों की रक्षा हो, गिग वर्कर्स को अपना एक एम्प्लॉइज के रूप में अधिकार मिले, उसके लिए पहली बार लेबर कोड में, नहीं केवल भारत में लेकिन दुनिया में पहली बार हमने गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करा है और उसको कानूनी दर्जा दिया। कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश है वो भारत है, और भारत में गिग वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर प्रावधान रखा गया है। और आज जो नीति आयोग के एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 लाख गिग वर्कर्स है, और उसमें से 10 लाख गिग वर्कर्स ऑलरेडी ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं। अभी विषय है उसके हितों की रक्षा के लिए या तो उसको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा कि हमारे गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिले, उसको सोशल सिक्योरिटी का कानूनी प्रावधान मिले, उसके लिए ही हमने लेबर कोड में प्रावधान करा है। अभी आईएलओ ने जो अपना कन्वेंशन कर रहे थे, यूरोप और उनका एक मॉडल होता है, भारत का गिग वर्कर्स का एक अलग मॉडल है, हमारे यहाँ वो एक इमर्जिंग व्यवस्था है, उसके लिए कई प्रावधान हमने अभी करके रखा है। कई प्रावधान भविष्य में भी करने की आवश्यकता हो तो हम उसके में भी प्रावधान करेंगे। इसलिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, ना कि उसके सोशल सिक्योरिटी के हितों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करना। इसलिए फ्लोर के द्वारा, पार्लियामेंट के सदन के द्वारा, मैं एश्योर करना चाहता हूं कि गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए हमने लेबर कोड में जो प्रावधान करा है उसका इंप्लीमेंटेशन करके उसको सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करी जाएगी।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रमोद बोरा जी,

0: Honorable Chairman Sir, with reference to the impact on employment security, will the Honorable Minister state if any assessment has been made on how the new 50% basic wage rule under the Code on Wages will impact workers' eligibility under the 21,000 ESIC ceiling, and what specific institutional mechanism or programs are being implemented under the new codes to currently clear pending provident funds of displaced workers and provide them financial literacy training to protect their social security resources. Thank you.
1: Honorable Minister.
2: Maniya Adhyaksh Mahoday, जब लेबर कोड लागू होने से सोशल सिक्योरिटी को हम बढ़ावा दे रहे हैं, ये देश है जिसमें 2014 के पहले केवल देश में 29% लोगों को, 19 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलता था। पिछले 12 साल में मोदी गवर्नमेंट में वो एक्सेस बढ़ा के आज देश में 68% यानी कि 101 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने वाला ये देश बन गया। सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित हो और इसके लिए एसिक में हमारे न्यू लेबर कोड हमें प्रावधान करता है कि एसिक में पहले कई स्टेट बाहर थे, कई स्टेट ESIC के लाभार्थी नहीं थे, EPFO में उसको लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी लेबर कोड ये सुनिश्चित करता है कि सारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट को नोटिफाई करा जाएगा और सभी डिस्ट्रिक्ट में ESIC के तहत जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स है, ESIC के लाभार्थी है, उसको उसका लाभ दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, हेल्थ सिक्योरिटी दी जाएगी, ताकि ऐसे वर्कर्स उसके लिए काम करते करते कोई भी दिक्कत आई हो, उसका काम छूट गया, उसके मैटरनिटी बेनिफिट की आवश्यकता हुई, तो ऐसी स्थिति में भी उसको लाभ मिले, वो भी हमने सुनिश्चित करा है। और माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के प्रारंभ में कहा कि उससे क्या कोई असेसमेंट करा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमने लेबर कोड लागू करा, और लेबर कोड तो 2019 और 20 में बना था, लेकिन कई कारणों से वो लागू नहीं हो पाया था, लेकिन हमने 2025 नवंबर में देश में लेबर कोड लागू करा और मई 2026 में हमने उसका रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करा। सभी स्टेट अपने रूल्स को उसके साथ अलाइन कर रहे हैं और स्टेट स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने प्राइमरी सर्वे करा था और हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने VVGNLI करके हमारी एक लेबर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक व्यापक सर्वे करा। उस सर्वे में वर्कर्स की ओर से जो फीडबैक आया, ये मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा। 60% वर्कर्स का मानना है कि लेबर कोड के पूर्ण इंप्लीमेंटेशन से वर्किंग कंडीशन बेहतर बनेगी। 63% वर्कर्स का विश्वास है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अधिक पोर्टेबल बनेंगे। 60% कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेंट और गिग वर्कर्स का मानना है कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी का बेहतर कवरेज मिलेगा। 66% वर्कर्स का मानना है कि एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन अधिक स्पष्ट होगी। 66% वर्कर्स का मानना है कि महिला वर्कर्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन में सुधार आएगा। और 63% वर्कर्स का विश्वास है कि वर्क प्लेस पर सेफ्टी इक्विपमेंट और प्रोटेक्टिव मेजरमेंट बेहतर होगा। ये कुल मिला के हमारा सर्वे से निकला है, वो बताता है कि देश के श्रमिक के लिए ये लेबर कोड हितकारी।
3: फोर्थ सप्लीमेंट्री, श्रीमान मयंक कुमार नायक जी।
4: थैंक यू सर। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा खूब काम किया जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए औद्योगिक डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। सर, मेरा माननीय मंत्री जी आदरणीय मनसुख भाई जी से प्रश्न है कि सर, जो नए नए बिजनेस आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या श्रम मंत्रालय के द्वारा उस इंडस्ट्रीज को जिस प्रकार से कामदार चाहिए, लेबर चाहिए, उसकी ट्रेनिंग का कोई प्रावधान है क्या? और यदि हाँ, तो उनके लिए सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा समन्वय करके इस तरह से देश के युवाओं को रोजगारी मिल जाए, जो आने वाले भारत में आत्मनिर्भर भारत का माननीय प्रधानमंत्री ने स्वप्न देखा है, उसको पूरे करने में सरकार का जो दायित्व है, वो सरकार कैसे निभा रही है, वो मैं आपके माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। थैंक यू सर।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। बदलते समय में टेक्नोलॉजी का भी बदलाव हो रहा है, बदलते समय में वर्किंग कंडीशन भी बदल रही है। एक समय था जब श्रमिक खेत में काम करने के लिए जाते थे तो हाथ

0: से काम करते थे, आज समय बदला है, वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, फार्म इक्विपमेंट का यूज करते हैं। और जब स्प्रे करते थे पहले तो हैंड से उसको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना करना करना था तो हैंड से करते थे, आज समय बदला है और ड्रोन से करते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का समझदारी आए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेनिंग मिले, तब जाके हमारे ड्रोन दीदी आज देश में हजारों की संख्या में ऐसी महिला को ऐसे ड्रोन चलाने का तकनीकी का ज्ञान दिया गया है, ताकि वो ड्रोन को अपने अर्थोपार्जन के लिए उपयोग करते हैं और किसान के खेत में जाके ड्रोन से वो छिड़काव करवाते हैं। वैसे कई सेक्टर में, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आई है, वो टेक्नोलॉजी के अनुरूप हमारे वर्कर्स में टेक्नोलॉजी का ज्ञान आए, इसके लिए स्किल इंडिया मूवमेंट के द्वारा उसको स्किलिंग करा जाता है। हर इंडस्ट्रीज को ये व्यवस्था और हर इंडस्ट्रीज को ये कहा गया है कि बदलते टेक्नोलॉजी के साथ उसको रिस्किलिंग करा जाए। तो आज जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आपकी इंडस्ट्रीज में करते हैं और उसका नया वर्जन आया और नया मशीन आया, तो नया मशीन का उपयोग करने के लिए उसको रिस्किलिंग करने की भी व्यवस्था करी गई है। स्किल इंडिया के तहत अभी लास्ट 2025 के बजट में अनाउंसमेंट करा गया था सरकार के द्वारा, जिसमें हर सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी बदल रही है और इंडस्ट्रीज क्लस्टर के आधार पर जिस टाइप का इंडस्ट्रीज क्लस्टर है, एक क्लस्टर के अनुरूप उसको स्किलिंग हो, इसलिए हब एंड स्पोक के द्वारा आईटीआई की व्यवस्था करी गई है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक लेवल की इंडस्ट्रीज है तो डिस्ट्रिक्ट के हब के रूप में एक आईटीआई काम करेगी और स्पोक के रूप में ये इंडस्ट्रीज के क्लस्टर में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उसकी स्किलिंग का भी इन्हेंसमेंट हो और इस स्किलिंग के इन्हेंसमेंट का उपयोग हमारे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उपार्जन बढ़े। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, टेक्नोलॉजी कैसे रोजगार एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उपयोगी हो सकती है? भारत सरकार ने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल बनाया है, तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर आज देश में 53 लाख से अधिक स्टेट गवर्नमेंट, देश की कंपनी, दुनिया की कंपनी उसके पर जुड़ी हुई है। उनको की कोई भी टाइप का स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो तो स्किल मैन पावर को उसको क्या चाहिए उसके पर वो नोट करते हैं। आज सुबह से मैंने देखा 12 लाख से अधिक नौकरियां वहां उपलब्ध है, कोई ना कोई टाइप के उसको स्किल मैन पावर चाहिए, ताकि जिसको जॉब चाहिए और जिस टाइप की स्किल की रिक्वायरमेंट है, ऐसा स्किल वर्कर्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अप्लाई करा और फिर उसको स्किलिंग की आवश्यकता रही, विशेष स्किलिंग की आवश्यकता हुई, तो भारत सरकार की ओर से उसको 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का स्किलिंग करा के जिस इंडस्ट्रीज को जिस टाइप का स्किल मैन पावर चाहिए, ऐसा स्किल मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए भी भारत सरकार ने व्यवस्था करी है। इसलिए देश में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, देश के युवाओं में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने से उसका रोजगार प्राप्त हो रहा है और रोजगार निर्माण से देश में हमारे इंडस्ट्रीज का की जो स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही है। इसलिए समय बदलते समय के साथ स्किलिंग, रिस्किलिंग और रिस्किलिंग के बाद जॉब और जॉब के बाद अर्थोपार्जन की एक श्रृंखला मोदी गवर्नमेंट में हमने सुनिश्चित करी।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, श्रीमान संतोष कुमार पी।
2: प्रश्न संख्या 123, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि आज की स्थिति के अनुसार अकुशल, अर्ध कुशल, कुशल तथा अति कुशल श्रमिकों सहित विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का राज्य, संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने मुद्रास्फीति तथा जीवन यापन की बढ़ती लागत के दृष्टिगत विद्यमान न्यूनतम मजदूरी की पर्याप्तता की कोई समीक्षा की है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार मजदूरी संहिता 2019 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी लागू करने सहित न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने अथवा बढ़ाने का विचार रखती है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा संभावित समय सीमा क्या है? और देश भर में न्यूनतम मजदूरी संबंधी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सतपाल शर्मा जी।
3: धन्यवाद माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में ये क्वेश्चन लाना चाहता हूँ कि जो रेट्स ऑफ वेजेस है इंक्लूडिंग वीडीए

0: कन्वर्ट किया जाना चाहिए। बहुत बहुत
1: शुक्रिया। Honorable Minister,
2: Dr. Mansukh Mandaviya, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने किसान के हित की रक्षा की बात करी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी लोगों को जीवन व्यापन करने के लिए मिनिमम जरूरत है वो तो उपलब्ध होना ही होना चाहिए, और मिनिमम जरूरत उपलब्ध हो इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने आज देश में इस टाइप की सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था करी है, ताकि देश में सभी नागरिक को अपना घर मिले, पूर्ता खाना मिले, और घर में उसको गैस का सिलेंडर मिले। ये सारी व्यवस्था सोशल सिक्योरिटी का एक पार्ट ही है और वेजेस का भी एक पार्ट है। और जब वेजेस तय करी जाती है, तब व्यक्ति को कितना न्यूट्रिएंट फूड चाहिए, कितनी कैलोरी चाहिए, उसको विज्ञापन के उसके जीवन निर्वाह के लिए कपड़ा चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको फैन, घर में फैन चाहिए। तो पहले फैन नहीं था तो बिजली बिल नहीं आता था। आज अभी मोबाइल तो हम काउंट ना करें, वो एडिशनल व्यवस्था है, लेकिन उसके जीवन में मिनिमम जीवन जरूरी चीजों को खरीदने के लिए उसको मिनिमम जो खर्च लगता है उसको मिनिमम वेज के रूप में माना जाता है। और मिनिमम वेज आज तक माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार तय करती थी, लेकिन भारत सरकार तय करती थी, लेकिन वो एडवाइजरी के रूप में था, स्टेट उसको माने नहीं माने उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं था। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेबर कोड लागू करा, लेबर कोड में फ्लोर वेज की का प्रावधान करा गया है। तो भारत सरकार अभी नए लेबर कोड के मुताबिक फ्लोर वेज तय करेगी। फ्लोर वेज मतलब कोई भी राज्य उससे कम मिनिमम वेज नहीं देंगे, उसका तो इतना देना ही देना, उससे ऊपर राज्य जितना रख सकते हैं उसमें से सभी राज्य अपने। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देश में बहुत डाइवर्सिटी है, हमारे देश में मैदानी प्रदेश भी है, हिमालयन रेंज भी है, नॉर्थ ईस्ट जैसे पहाड़ी प्रदेश भी है, विकसित प्रदेश भी है, अल्प विकसित प्रदेश भी है। तो ऐसी स्थिति में उसकी रिक्वायरमेंट और उसका जीवन निर्वाह का ABC यानी कि एक मेट्रोपोलिटन सिटी, उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का खर्च, एक छोटे शहर में रहने वाले और उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का जीवन खर्च, और एक का दूर सुदूर गांव में रहने वाले और किसान का जीवन निर्वाह का खर्च अलग अलग होता है, उसको ध्यान में रख के फ्लोर वेज तय करा जाएगा। और फ्लोर वेज के ऊपर सब लोग वेज तय करे, उसमें सारा पैरामीटर को सुनिश्चित करके तय करा जाएगा। वर्तमान समय में जो वेजेस उपलब्ध है वो हर साल में 2 बार वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होता है, उसके अनुसार ऐड होता है, और ये आज भारत सरकार सभी को बाधित करती है।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री थ्रू आर गिरिराजन जी।
4: सर, नाउ द मिनिस्ट्री इज अनाउंसिंग मिनिमम वेजेस 5 ईयर वंस और 3 ईयर वंस और 2 ईयर वंस रेगुलरली। द मिनिस्ट्री शुड अनाउंस द मिनिमम वेजेस एवरी फाइनेंशियल ईयर विदाउट फेल। सर, द मिनिमम वेजेस नॉट अनाउंस्ड ईयरली बाय द मिनिस्ट्री। द मिनिस्ट्री हैज एनी प्रपोजल टू अनाउंस मिनिमम वेजेस एवरी फाइनेंशियल ईयर, दैट विल हेल्प द लेबर्स अक्रॉस द कंट्री। थैंक यू।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, हर राज्य अपने अपने हिसाब से मिनिमम वेज में बढ़ोतरी करता है, लेकिन भारत सरकार तो जो महंगाई को ध्यान में रखते हुए हर साल में 2 बार VDR के द्वारा, VDS के द्वारा बढ़ोतरी करता है कि इस बार जो इन्फ्लेशन बढ़ा हो, अभी महंगाई बढ़ी हो, उसके आधार पर उसका खर्च बढ़ता है, तो उसके आधार पर सरकार बढ़ोतरी करती है, और उसको देखते हुए राज्य सरकार उसको प्लस माइनस प्लस कर सकती है, माइनस तो नहीं, और उसका लाभ अपने देश के, अपने राज्य के वर्कर्स को दे सकते हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलादा देव।
5: थैंक यू सो मच ऑनरेबल चेयरमैन सर। जय श्री जगन्नाथ सर। माननीय मंत्री अभी बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन के बारे में, किस तरह से हर चीज में प्राइस राइज हो रहे हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली भी अपनी घर चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग जो एकदम लोअर क्लास बिलोंग्स करते हैं, जो अनस्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर है, उन लोगों के लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्राइस हाइक हो रहा है, उस माननीय मंत्री जी ये बोलेंगे कि उन लोगों की जो वेजेस है, डेली वेजेस है, वो बढ़ना जरूरी है, वो बढ़ाने की कोई प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है क्या? अगर है तो स्टेट को भी कम्युनिकेट करें। और दूसरी बात मैं मतलब ये जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे स्वास्थ्य मित्र है जो हमारे ओडिशा में काम करते थे हेल्थ में, आयुष्मान योजना में, उन लोगों को भी जो कंट्रैक्चुअल में काम करते थे उन लोगों को भी निकाला जा रहा है, वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों की फिर रिहैबिलिटेशन किस तरह से हो, और किस तरह से, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हेल्थ अगर किसी का खराब होता है तो अगर वहां पर कोई असिस्टेंट ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं।

0: लोगों के लिए कुछ सोचे हैं क्या, और ये वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, और बढ़ाने की अगर कोई योजना है तो सर बताए। थैंक यू सो मच सर।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर,
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात में ऐसा इस दृष्टि से ऐसा समझा हो कि उनके यहाँ हेल्थ वर्कर है, उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए, और उसने ये भी अपेक्षा रखी है कि जो अपने मिनिमम वेज है वो आपको रेगुलर बढ़ाता जाना चाहिए, समय समय पर बढ़ाते जाना चाहिए। मैं उसको माननीय सदस्य को रिप्लाई देना चाहूंगा आपके द्वारा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश अभी बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, नया भारत बन रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा भारत दुनिया में डेवलप्ड कंट्री, यूरोप की बात करें 1-2% इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाइना यूएसए 4-5% इकोनॉमिक ग्रोथ है, भारत की इकोनॉमी 7.5% से ग्रो कर रही है। जब कोई भी देश की इकोनॉमी ग्रो करती है तब देश के नागरिक का परचेज पावर बढ़ता है, देश के नागरिक का परचेज पावर बढ़ता है तो देश में डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो रोजगारी बढ़ती है स्वाभाविक तौर पर। यहाँ जो बात रखी गई है कि अपने वर्कर्स है उसको, हेल्थ वर्कर्स को अपने सैलरी बढ़नी चाहिए सभी राज्य को, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप 2 साल में बढ़ाओ, 3 साल में बढ़ाओ, 5 साल में बढ़ाओ, भारत सरकार तो हर 6 महीने में बढ़ाती है, उसको देखते हुए हर राज्य सरकार, क्योंकि लेबर वेलफेयर वो कंकरेंट लिस्ट में है, तो ये राज्य सरकार का अधिकार है कि जब चाहे तब अपने राज्य में वो मिनिमम वेज बढ़ा सकते हैं। किसी का भी वेज में बढ़ोतरी करनी है तो राज्य सरकार उसमें पर बढ़ोतरी करके अपने एम्प्लॉइज को उसका लाभ दे सकते हैं।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 124, श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
3: 124 प्रश्न संख्या 124, क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क दिव्यांगजनों तथा महिलाओं के मध्य खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है, ख ऐसे वर्ग के युवाओं को सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं तथा वित्त प्रावधानों का ब्यौरा क्या है, और ग ऐसे वर्ग के युवाओं में नशीली दवाओं के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने तथा उनके करियर मार्गदर्शन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर,
3: रक्षा निखिल खड़ से युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री।
1: नाउ फर्स्ट सप्लीमेंट्री, श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
4: माननीय सभापति महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हूँ। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहती हूँ कि जो पैरा एथलीट्स हैं, इन खिलाड़ियों के लिए आपने कितने सेंटर बनाए हैं, और उसमें इन्हें प्रशिक्षित करने का क्या क्या माध्यम है, और इसमें महिलाओं युवाओं की संख्या कितनी है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
5: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि पैरा फ्रेंडली फैसिलिटी सेंटर्स हमारे पूरे टोटल साई में 13 सेंटर है, जिसमें से गांधीनगर का जो सेंटर है वो डेडिकेटेड सेंटर है फॉर पैरा, और उसके अलावा 12 सेंटर है हमारा त्रिवेंद्रम में है, अर्नाकुलम में है, संभाजीनगर, बैंगलोर, भोपाल, कलकत्ता, लखनऊ, पटियाला, सोनीपत, आईजी स्टेडियम और केएसएसआर में, इन सभी जगह पे हमारे पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, और लगभग 172 एथलीट्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जिसमें से 62 जो हमारे एथलीट्स है वो टॉप स्कीम में भी है, जो एलए के लिए आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि 2014 से पहले जो हमारा पैरा ओलंपिक में रैंक था पूरे वर्ल्ड में 67 था, और मेडल सिर्फ एक ही था। पैरा एशियन गेम्स में हमारा रैंक 15 था और मेडल सिर्फ 14 थे, लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी अग्रसर भूमिका रखी, और उसके बाद हम देख सकते हैं है कि 2024 में हमारा रैंक 18 था, 29 मेडल्स हमने प्राप्त किए, और पैरा एशियन गेम में हमारा रैंक अभी 5th है, और जहाँ पे हमने 108 मेडल प्राप्त किए। तो सभी पैरा एथलीट्स के लिए हमारे सभी साई के सेंटर में सभी सुविधाएं दी जा रही है, जहाँ पे हमारे महिला एथलीट्स भी काफी बड़ी संख्या में आज प्रैक्टिस कर रही है। धन्यवाद।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री, श्रीमान गुलाम अली जी।
6: शुक्रिया चेयरमैन सर। मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ, और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हमेशा कहीं षड्यंत्र से हमें, हमारे युवाओं को खासकर नशा की लपेट में नस्ल कशी करना चाहता है। हमारे

0: वहाँ हमारी जो यूथ मिनिस्ट्री है उसने बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ शुरू करे हैं और बच्चे जो हैं हमारे जो स्टोनिंग और उसमें मुलव्वस थे आज वो स्कूलों में और खेलकूद के जरिए बड़े बड़े अवार्ड लेके आ रहे हैं। मैं मिनिस्टर साहिबा को मुबारकबाद भी दूंगा और उनकी बहुत पार्टिसिपेशन रहती है और उनमें उत्साह रहता है खेलने का। मेरा मिनिस्टर साहिबा से क्वेश्चन है कि फिट इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विसेज का, नशा मुक्त के प्लेजेस भी हम लेते हैं, ड्रग फ्री इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। क्या नौजवान जो बच्चे बच्चियां हैं जम्मू कश्मीर के, क्या उनकी जो एक्सट्रीम लेवल पर चले गए हैं क्या उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन का जहाँ उनको मेन स्ट्रीम में फिर लाने का कोई प्रोग्राम उस पर कुछ काम हुआ है? मैं उसकी जानकारी चाहूंगा। शुक्रिया।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि देश के युवा धन आज नशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसको बचाना उस समय की मांग है और न केवल सरकार लेकिन सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जिस तरह से एडिक्शन बढ़ रहा है, एडिक्शन के सामने मूवमेंट चलाने के लिए आज से एक साल पहले हमने सोचा कि देश के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसका बहुत बड़ा अनुयायी वर्ग होता है उसको भी उसमें शामिल करना चाहिए, स्कूल कॉलेजों को भी उसमें शामिल करना चाहिए। इसलिए हमने वाराणसी में एक समिट करी थी, दो दिन की चिंतन बैठक करी थी और उसमें हमने तय करा कि आने वाले दिनों में हम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का कैंपेन को कैसे चलाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है तो आवश्यक है कि उसके देश के नागरिक फिट रहे, उसके देश के नागरिक स्वस्थ रहे। जब नागरिक स्वस्थ होगा तब सोसाइटी स्वस्थ होगी और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और इसलिए समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए हमारे देश के युवा नशा से मुक्त हो उसके लिए कई कार्यक्रम की श्रृंखला चलती है। सरकार की ओर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने हिसाब से रिहैबिलिटेशन सेंटर ये सब तो करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं, लेकिन हमने तय करा है 2 अगस्त को सारे देश में 100 वीक 2 साल के लिए एक बहुत बड़ा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कैंपेन ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी प्रारंभ करवा रहे हैं। एक ही साथ में देश के सभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एक मंच पर आ रहे हैं, देश के सब कॉलेज मंच पर आ रही है, यूनिवर्सिटी मंच एक मंच पर आ रही है और माई भारत के युवा उसको लीड कर रहे हैं। युवाओं ने अपने स्वयं को चिंता करी कि हम हमारे साथी को एडिक्शन से बचाए, नशा से बचाए। इसलिए 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 10:30 बजे समग्र देश को संबोधित करेंगे और 1 करोड़ से अधिक युवा एक साथ में शपथ ग्रहण करेंगे कि हम तो नशा से मुक्त होंगे लेकिन हम हर व्यक्ति एक एक व्यक्ति को नशा मुक्त करेंगे। एक कैंपेन हर वीक चलेगा, उसमें नुक्कड़ नाटक हो, उसमें क्विज कंपटीशन हो, उसमें पेंटिंग कंपटीशन हो, उसमें अलग अलग अलग सनडाउन साइकिलिंग के साथ उसको जोड़ा जाए, स्पोर्ट्स के साथ उसको जोड़ा जाए। हमें हमारे युवाओं को खेल के मैदान में लाना होगा, हमें हमारे युवाओं को में व्यापक अवेयरनेस लानी होगी और ये केवल सरकार नहीं कर पाएगी, उसमें सारी सोसाइटी सारे देश की जिम्मेवारी है। वो हमारा युवा है, देश का युवा है, देश का भविष्य है और यही हमारे देश के विकसित भारत के राहबर है और इसलिए देश के युवाओं को उसके साथ जोड़ के इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है। सभी सम्मानित सदस्यों को मेरी प्रार्थना है, आप सब लोगों को भी लोकल लेवल पर इन्विटेशन दिया जाएगा, जहां से भी आपको इन्विटेशन मिले वहां आप उपस्थित रहे, युवाओं को प्रोत्साहित करें, हर वीक में कोई एक एक और एक कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी करे जिसमें युवाओं के साथ नशा मुक्ति के लिए मेरे देश के जनप्रतिनिधि का भी संवाद हो ताकि देश के युवा व्यसन मुक्त बने और विकसित भारत के राह पर आगे बढ़े। इस अभियान के साथ सभी को जुड़ने के लिए मेरी प्रार्थना है।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटेलदार।
3: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि ग्रामीण महिलाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
4: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में अस्मिता लीग्स की शुरुआत की थी कि जिसके माध्यम से आज पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे हम अस्मिता लीग्स का आयोजन कर रहे हैं और जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां या महिलाएं उनका पार्टिसिपेशन आज स्पोर्ट्स में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं आज इस हाउस को भी बताना चाहोगी कि लगभग 3,500 से भी ज्यादा लीग्स आज तक हम करवा चुके हैं, 38 डिसिप्लिन में आज ये लीग्स

0: है पूरे देश में, और लगभग 6 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं ने इस लीग्स के माध्यम से पार्टिसिपेशन किया है, और इन्हीं लीग्स के माध्यम से आज साई के सेंटर या स्टेट एक्सेलेंस जो सेंटर है हमारे स्पोर्ट्स के, उनमें इनका सिलेक्शन किया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं स्पोर्ट्स में आज आगे आते हुए दिखाई दे रही है, मेडल तक पहुँच रही है। और उसके साथ ही हमारे जितने भी साई के सेंटर है, स्टेट के साथ भी हम बात कर रहे हैं कि कोचेस जो महिलाओं की संख्या है कोचेस में, उनका भी प्रावधान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, कि जिसके माध्यम से एक अच्छा माहौल हम सभी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में महिलाओं खिलाड़ी के लिए दे पाए। धन्यवाद।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी।
2: हाल के वर्षों में हम अपने राज्य बिहार में देखते हैं कि सूखा दशा की प्रवृत्ति युवाओं में ज्यादा बढ़ी है। क्या सरकार इस बात से सहमत है? सरकार ने कोई स्टडी वहाँ इस विषय को ध्यान में रखकर कराया है? अगर नहीं कराया है तो सरकार कराएगी। एक दूसरा, लोगों के बीच इसके कारण को ढूंढते हुए विमर्श के रूप में बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है, उससे भी कुछ लोग संबंध इसका जोड़कर देखते हैं कि क्योंकि शराबबंदी कानून लागू है, इसलिए ड्रग लेने की प्रवृत्ति नशा के रूप में वहाँ के युवाओं में ज्यादा बढ़ी है। तो क्या शराब कानून लागू होने से भी कोई इसका संबंध है? इस दृष्टि से भी कोई स्टडी कराना चाहेंगे?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सार्वजनिक स्वीकार करने योग्य है कि नशा तो युवाओं में बढ़ रहा है, और उसका समाधान करने के लिए हमें सामूहिक अभियान चलाना है, जिस उल्लेख में लास्ट क्वेश्चंस के रिप्लाई में कर चुका हूँ। लेकिन जो पहले नशा था, और बदलते समय में हेरोइन, सरस, उसके अलावा सिंथेटिक ड्रग्स, ये बहुत खतरनाक है, उसका उपयोग भी न्यू जनरेशन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नहीं, ऐसे कई टाइप की स्टडी ने ही ये बताया है, और हम सार्वजनिक जीवन में देख भी रहे हैं कि उसको न्यू जनरेशन में स्कूल कॉलेज में भी उसका प्रवेश हो चुका है। चौराहे पर पान मसाला बेचने वाले शॉप पर भी ये चीजें जब हम खड़ा रहते हैं तब हमें पता चलता है। उसका समाधान कैसे करा जाए, उनके लिए दो ही रास्ता है। एक, कानूनी प्रावधान तो बहुत कुछ है, और बदलते समय के साथ पब्लिक अवेयरनेस और काउंसलिंग, कई समस्या, उसके लिए हम कोई एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि क्या कारण है कि नशा बढ़ता जा रहा है, कई कारण है। आज बच्चे, उसकी स्थिति, उसका ट्रेस, उसकी जीवन शैली, ये सब एनवायरनमेंट जो आज वर्तमान सोशल मीडिया में दुनिया के साथ संपर्क में रहना, और वहाँ जो कुछ हो रहा है उसकी इफेक्ट उसके मन मस्तिष्क में भी हो रही है। इसलिए ये सब स्थिति का एनालिसिस करके हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन एक खतरा हमारे सामने है, उसका समाधान जितना हो सके इतना करने की कोशिश करी है, और आने वाले दिनों में सामूहिक चिंतन के आधार पर, सामूहिक रिसर्च के आधार पर, सतत उसके पर अध्ययन के आधार पर रास्ता तय करना होगा।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 125, डॉक्टर ज्योति नाथनाथ वाकमारे।
4: क्वेश्चन नंबर 125,
5: चेयरमैन सर। प्रश्न संख्या 125, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 31.5 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों में महिलाओं की संख्या रिकॉर्ड 54% से अधिक हो जाने के उपरांत उन्हें वन टॉप सॉल्यूशन के माध्यम से केंद्रित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार की क्या योजना है? ख, क्या सरकार महाराष्ट्र सहित देश भर की कृषि, घरेलू कार्य तथा निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत असंगठित महिला श्रमिकों को पालना योजना तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी पेंशन योजना से जोड़कर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT सुनिश्चित कर रही है? और ग, मंत्रालय द्वारा ऐसी महिला श्रमिकों के लिए कौशल विकास, मातृत्व लाभ तथा सुरक्षित कार्य वातावरण, जल, सफाई एवं स्वच्छता और संरचना सुनिश्चित करने हेतु क्या विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं?
1: फर्स्ट सप्लीमेंट्री, यू कैन गो स्ट्रेट अवे।
4: आदरणीय सभापति महोदय, देश के निर्माण और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिक है, जो कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान देती है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगी कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले महिला श्रमिकों का शोषण न हो, उन्हें सुनिश्चित वेतन मिले, काम की जगह पर उन्हें सुरक्षा मिले, उनकी मैटरनल और मेंस्ट्रुअल हेल्थ की केयर हो, उनका ख्याल रखा जाए और महिला कामगारों के बच्चों के लिए पालना योजना अनिवार्य की जाए और सरकार के सभी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़ी महिला श्रमिकों को तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
5: शोभा कारंदलाजे, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री।
6: माननीय चेयरमैन सर, पहली बार देश में 29 एक्ट को हम बदल के 4 कोड में लाए हैं, महिला का सुरक्षा इसी में है। ये 4 कोड में महिला के लिए हम एम्प्लॉयर्स कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं सर। महिला एंड पुरुष को एक साथ लेके जाना यानी एक ही पगार देना, जेंडर डिस्क्रिमिनेट को इसी में हम नकार है। ऐसे ही महिला वो बच्चे का बात किया, वर्किंग जगह में क्रेश रखने के लिए ऐसे ही हम मैटरनिटी लीव पहले 8 महीने का अभी 26 वीक तक हम बढ़ाए हैं। एंड कोई पोस्ट मैटरनिटी में घर से काम करना चाहते हैं वो घर से भी काम कर सकते हैं। एंड 2 वीक का बीच में वो मैटरनिटी मेडिकल ब्रेक भी ले सकती है। ऐसे भी हम 3500 मैटरनल बेनिफिट भी उसको दे रहे हैं सर। एंड अभी फैमिली बोले तो केवल महिला नहीं है, कौन बच्चा पैदा करते हैं वो फैमिली को हमें एक्सटेंशन किया है, वुमेन एम्प्लॉय के साथ इसका इन-लॉज भी वो फैमिली में अभी आ रहे हैं। महिला को महिला का एम्प्लॉयमेंट कितना है देश में, हर साल महिला का अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है सर। अभी बार बार बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, मगर देश का सामने में एक आंकड़ा रखना चाहती हूँ। ऑल इंडिया लेवल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 3.6% टू 3.1% इन इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में। ऐसे ही यूथ का एम्प्लॉयमेंट भी अभी बढ़ रहा है, महिला का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है एंड वर्कफोर्स पॉपुलेशन भी बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज फ्रॉम 54% इन 2022, इसका पहले का आंकड़ी नहीं है सर। हमारे देश में कोई आंकड़ी नहीं रखा है कितना एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में हम दे रहे हैं। पहली बार हम आंकड़ा लेने को शुरू किया, अभी वो बढ़कर 57.4% हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है सर। एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, उसको आंकर किधर मिलता है? हमारा फॉर्मलाइजेशन करने के लिए भारत सरकार अभी तैयार किया, इसके कारण ईपीएफओ में 2007 to 2025 में ये केवल 8 साल का अंदर 8.23 करोड़ लोगों सब्सक्राइबर नया सब्सक्राइबर ईपीएफओ में बढ़ा है। पिछले साल लास्ट ईयर में वो नंबर था 1.6 रही, लाइक इतना बड़ा रेट में हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इसके कारण है अलग अलग सर, हमें एमएसएमई को मदद दे रहे हैं। अभी एमएसएमई में उद्यम पोर्टल खोला हम, 9 करोड़ उद्यम पोर्टल में एंटरप्राइज जुड़े हैं, वो लोग बताया हम 39 करोड़ लोगों के लिए काम दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है। इसी में 40% महिला है सर, हमको बोलने के लिए कुछ होता है 40% इसी में महिला है। अभी एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा हो रहे हैं, महिला का ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे ही स्टार्टअप्स केवल हम गिनती करते थे हाथ में, मगर अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 लाख स्टार्टअप्स के लिए भारत सरकार मदद दिया, इसके कारण नए बच्चे नए नौजवान युवती ये स्टार्टअप खोलने के लिए कर रहे हैं सर। मुद्रा में हम प्रधानमंत्री जी एक योजना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी मुद्रा योजना, इसी में 3.8 करोड़ लोगों को हम जॉब दिया है एंड एंटरप्रेन्योर्स बनाए हैं। पीएमईजीपी में सर 97 लाख लोगों को पीएमईजीपी में हम एम्प्लॉयमेंट दिया है सर, इतना बड़ा नंबर में भारत सरकार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए अभी अभी एक योजना शुरू किया, अभी लास्ट महीने में प्रधानमंत्री जी पहले क्रंच का पैसा लोग एंटरप्रेन्योर्स एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज को दिया, वो योजना है प्रधानमंत्री जी विकसित भारत रोजगार योजना, इसी में हम 1,00,000 करोड़ लगा रहे हैं। एंड किसके लिए? एम्प्लॉयर्स को भी।

0: मदद देना, यानी नया एम्प्लॉय जुड़ा तो उसको भी मदद देने के लिए, इसीलिए मैंने बताना चाहती हूँ पूरा देश में महिला को एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए, जॉब दिलाने के लिए, यानी सरकार में जॉब दिलाने के लिए 19 क्रेंचर्स सरकार का जॉब दिलाने का रोजगार मेला हम बनाए। इसमें 11 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भारत सरकार ने दिया है।
1: सेकेंड सप्लीमेंट्री श्रीमती सीमा द्विवेदी जी।
2: माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अधिनियमित किया गया है जो 21 नवंबर 2025 से प्रवृत्त हुई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो इस अधिनियम में इसको प्रवृत्त किया गया है, इसमें महिलाओं को क्या क्या सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में माननीय मंत्री जानना चाहती हूँ।
0: माननीय चेयरमैन सर, मैं अभी बताई 29 कानूनों को हम निकाल के, तो ब्रिटिश का समय का कानून था, हमारा देश वाले नहीं बनाए थे वो कानून, हम ऐसे रखे थे, उसको हम पूरा निकाल के अभी 4 कोड में लाया है। इसी में बहुत बड़ा एंड अच्छा कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी कोड में महिलाओं के लिए हम पहले क्वेश्चन का आंसर में भी बताया सर, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते नया कोड में। एंड एक काम के लिए इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस, एंड इक्वल वेजेस देना इक्वल वर्क के लिए, ऐसा हम किया है सर। ऐसे कोई भी बोर्ड हो, सरकार कुछ भी बोर्ड गठित करे और यानी इंडस्ट्री कुछ भी बोर्ड गठित करे, इसी में 1/3 उसी में बोर्ड में मेंबर्स महिला होना चाहिए। महिला का समस्या महिला ही जानती है, इसलिए महिला होना चाहिए, ऐसे ही प्रोविजन इसी में रखा है सर। मैटरनिटी लीव 26 वीक तक हम बढ़ाए हैं सर। वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन हम रखे हैं सर। ऐसे ही महिला को कहीं इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रोविजन नहीं था, पहली बार महिला किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकती है, नई ड्यूटी भी कर सकती है, मगर उसका सुरक्षित का कायम रखना है, उसका सुरक्षा के लिए ध्यान रखना, ऐसा भी प्रोविजन हम रखे हैं सर। मेडिकल बोनस हम 3500 दे रहे हैं, नर्सिंग ब्रेक्स हम दे रहे हैं, ऐसे महिला का बच्चे के लिए क्रेश फैसिलिटी भी इंडस्ट्री के तहत और वर्किंग प्लेस में हम दे रही है। ऐसे ही सर हम स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ होम अरेंजमेंट्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वुमेन वर्कर्स सेक्टर में स्टैंडिंग कमिटी बनाने के लिए हम इसी में रखा है सर। एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल, महिला के लिए अलग से ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल रखना चाहिए, ऐसे हम नया कोड में सोशल सिक्योरिटी कोड में महिला के लिए हम लाए हैं सर।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर धर्मशील गुप्ता जी।
3: माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी महिलाएं काम करती हैं, रोजगार करती हैं, तो क्या बिहार में कितनी महिलाएं रोजगार कर रही हैं, या माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने रोजगार को बढ़ाया गया है, ये मैं जानना चाहती हूँ आदरणीय मंत्री जी से।
0: चेयरमैन सर, बिहार में ईश्रम पोर्टल में 3.2 करोड़ लोग जुड़े हैं, इसी में अलग अलग तरीके का लोग हैं। ईश्रम पोर्टल में जुड़ने वाले एग्रीकल्चर लेबरर्स है सर, विश्वकर्मी से, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, ऐसे ही सर्विस सेक्टर में कौन कौन काम करते वो है, ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन इसी में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स है, ऐसे अलग अलग तरीके का लोग बिहार में 3.23 करोड़ लोग जुड़े हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटीदार जी।
4: धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि लेबर कोड में महिलाओं के लिए क्या प्रोविजन रखा है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
0: कर दिया है, पहली बार महिला कोड में हम महिला के लिए प्रोविजन रखा है। महिला कोड देश का इतिहास में वो पहले बहुत साल से मांग था, लेबर कोड आना चाहिए। 2020 से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रयत्न किया मगर नहीं हो पाया। पहली बार हमारा सरकार पिछले साल नवंबर 21 को पूरा देश में लेबर कोड को लागू किया। ये लेबर कोड में 4 कोड में महिला का विशेष प्रावधान हम रखा है सर, एंड महिला का सिक्योरिटी करने के लिए एंड इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस देने के लिए इसी में सब प्रोविजन है। मैंने पिछले आंसर में इसका

0: सदन के नजर में लाए हैं सर. थैंक यू.
1: थैंक यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 126 श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी.
2: क्वेश्चन नंबर 126 सर.
3: प्रश्न संख्या 126. क्या विधि और न्याय मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क गत 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सहायता तथा विधिक परामर्श प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी कितनी है. ख आज की स्थिति के अनुसार देश के जिलों में स्थापित तथा कार्यरत विधिक सहायता बचाव परामर्श कार्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी कितनी है. ग उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्गत निधि तथा तत्संबंधी उपयोग का ब्यौरा क्या है. और घ उक्त अवधि के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से संवितरित मुआवजे सहित अपराध के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं.
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
3: श्री अर्जुन राम मेघवाल विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार.
4: चेयरमैन सर उत्तर सभा पटल पर रख दिया है. थैंक यू.
1: द फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी.
2: थैंक यू सर. Honorable Minister, while reply indicates that the number of beneficiaries, it does not indicate the quality of the legal assistance provided. So my pinpoint question to you, has the government undertaken any independent evaluation of the effectiveness of legal aid, including success rate, client satisfaction, or quality of representation provided to the beneficiaries?
1: Honorable Minister.
4: Dhanyavad Sabhapati ji. Mananiya Sadasya ne jo prashn kiya hai, National Legal Service Authority se sambandhit hai, aur isme कितना खर्चावार कितने लोग लाभार्थी हुए ये जवाब इनको दे दिया गया है. मैं इस स्कीम के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि समाज के गरीब और वंचित वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन कर रखा. ये जिलों में भी काम करते हैं, स्टेट में भी करते हैं. जब नेशनल लेवल पे करते हैं तो नालसा कहलाते हैं, जब राज्य स्तर पे करते हैं तो वो उस स्टेट का नाम से साथ उसको लीगल सर्विस अथॉरिटी से जोड़ देते हैं. डिस्ट्रिक्ट में वो डालसा कहलाते हैं, तालुका में भी काम करते हैं. जो संख्या ये पूछना चाह रहे हैं विगत 3 सालों में, तो 2023 और इसमें हमने 15.5 लाख इसमें लाभार्थी रहे, 24-25 में 16.5 लाख लाभार्थी रहे और 25-26 में 20 लाख लाभार्थी रहे. ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है. ये जो पूछना चाह रहे हैं कि क्या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से भी कोई आपने इवोल्यूशन करवाया है क्या, मैं ये इनको कहना चाहता हूँ कि हर जगह सीएससी है, कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पे न्याय बंधु प्रो बोनो जो गरीब हैं, दूर स्थानों पे रहते हैं, वकील कर नहीं सकते, उनको सरकार निःशुल्क ये विधिक सहायता देती है. और उसमें एक कंसेप्ट है, हक हमारा भी है, उसके तहत हम काम करते हैं और इसका इवोल्यूशन भी हम कराते हैं. इतने लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए हैं और ये बहुत अच्छी योजना है गरीबों को न्याय के द्वार तक पहुंचाने के लिए. धन्यवाद.
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सुभाषिस कुंदिया जी.
5: थैंक यू चेयरमैन सर. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ उड़ीसा के ट्राइबल क्षेत्रों के में स्थानीय भाषा में लीगल एड और लीगल अवेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए.
1: ऑनरेबल मिनिस्टर.
4: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं, अभी भाषिणी टूल हमारे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है. जितने भी हमारी भाषाएं हैं, जैसे 22 भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त है, तो संविधान भी हमने सभी भाषाओं में अनुवाद किया है. और रीजनल जो भाषाएं हैं उनका भी भाषिणी टूल के माध्यम से आप भाषाओं का अनुवाद जान सकते हैं. लोकसभा में भी राज्यसभा में भी आपने देखा होगा कि अनुवाद जो है ज्यादा भाषाओं में हो रहा है. ये जो विषय आपने रखा है ये विषय जस्टिस से संबंधित ही है कि जो भाषा नहीं जानता है, जैसे अंग्रेजी में अधिकतर हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लोग बहस करते हैं, जो भाषा नहीं जानते हैं उनके लिए क्या भाषिणी टूल उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है. और इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद तेजी से काम हुआ है. भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए हम संस्कृति का विकास भी करेंगे विरासत को भी बचाएंगे. धन्यवाद.
1: The House stands adjourned to meet at 2 p.m.
6: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे. You were listening to the proceedings during the question hour in Rajya Sabha today. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले
1: समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है और मेडिकल सीटों में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। इससे पहले डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही मामलों की जाँच 2 महीने और मुकदमे का निपटारा 3 महीने के भीतर करना होगा। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। भाजपा के ब्रजलाल ने कहा कि इस विधेयक में फास्ट ट्रैक अदालतों और विशेष कार्यबल का प्रावधान है। डीएमके के तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग की। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
2: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक बार श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जिससे परीक्षा प्रणाली मजबूत होगी। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The bill was passed by the Lok Sabha yesterday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be completed within 2 months from the date the information is recorded at the police station. The trials must be concluded within 3 months from the filing of the charge sheet. Parliament has also passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026, with the Lok Sabha approving it today. Rajya Sabha passed the legislation yesterday. The law will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jan Gan Man and make the insult to the national song a criminal offence. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine, or both. Prime Minister Narendra Modi has said government is continuously taking one step after another to build a trustworthy examination system. In a video message on social media, Mr. Modi said, "For the past several decades, every state government and the central government have faced the problem of paper leaks, and this has put the future of students at risk." He said, keeping all this in mind, reforms in the education and examination system have become essential across the country, both in the states and at the centre. The Prime Minister said today Parliament has passed the bill containing stringent legal provisions. He highlighted that a transparent, technology-driven examination system, stronger anti-paper leak laws, and tough action against exam mafias is important to protect students' hard work. Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting of the Cabinet Committee on